श्रोताओं, स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने पंकज नौटियाल द्वारा गाया राग अहीर भैरव सुना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

0: प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जाँच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France, holding bilateral meetings with leaders from Canada, United Kingdom,

भगवान गणेश बुद्धि, ज्ञान, विवेक और सफलता के देवता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके स्मरण के बिना अधूरी मानी जाती है। उनकी कृपा से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं। आइए हम सब मिलकर गणपति बप्पा का स्मरण करें और

श्रोताओं, गणेश जी का विशाल स्वरूप हमें धैर्य, विवेक और विनम्रता का संदेश देता है। उनके बड़े कान हमें सबकी बात सुनने की सीख देते हैं, जबकि उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का महत्व बताते हैं। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति बप्पा का गुणगान करें और अपने मन को भक्ति के रंग में रंग लें।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। आइए अब सुनते हैं ये शब्द।

0: भगवान गणेश हम सब की बाधाएं दूर करते रहें, इसी आशा के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: शुभ प्रभात। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता राजा राम मोहन रॉय के विचार। आलेख है संध्या रानी का और वाचन स्वर नीलम मलकानिया का।
2: राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उनका उद्देश्य एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई थी। वे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। यही कारण है कि उनको बहुत ही कम उम्र में अनेक भाषाओं का ज्ञान हो गया था। उन्होंने कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था। वहां कुछ सालों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। दरअसल

उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। समाज में अंधविश्वास, छुआछूत, जातपात, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, महिलाओं में शिक्षा का अभाव और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ उन्होंने जमकर विरोध किया था। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की भूमिका सबसे अहम रही है। उस समय समाज में

0: विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता था। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी भी अपने पति के साथ चिता पर जल गई थी। इसका प्रभाव राजा राम मोहन राय के मन पर बहुत अधिक पड़ा और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि अब इस बुराई का अंत करके ही रहूंगा, ताकि ऐसी घटना किसी दूसरी महिला के साथ ना हो। इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। इसका परिणाम ये हुआ कि अंत में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। राजा राम मोहन राय महिलाओं की शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक वे अपने अधिकारों के बारे में नहीं समझेंगी, क्योंकि वे जानते थे कि समाज में बदलाव तभी आ सकता है जब देश का हर नागरिक शिक्षित हो। इसके लिए उन्होंने अपने धन से कॉलेज खोला जहां अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई होती थी। इसके अतिरिक्त वे चाहते थे कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही वे बहुविवाह के बहुत बड़े विरोधी थे। दरअसल उस समय समाज में पुरुष कई कई विवाह करते थे। सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, क्योंकि उस समय छुआछूत और अंधविश्वास का बोलबाला था। वे देश के पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता का साधन माना था। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भी समर्थन किया था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया था और धर्म को मानवता की सेवा का श्रेष्ठ साधन बताया था। उन्होंने तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया था। उनका मानना था कि अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्ति पाने के लिए तर्क का सहारा लेना बेहद जरूरी है। राजा राम मोहन राय ने विदेशी उत्पादों के उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का समर्थन किया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सके। उनके विचारों ने सिर्फ भारतीय समाज को जागरूक ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से बालकांड का भाग 89।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध

सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं, उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

0: आइए अब सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेशमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडादेशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडादेशयोः सम्बन्धेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह मिलित्वा प्रधानमंत्री श्रीमोदी 35th दूरदृष्ट्यांतरगतं भारत यूके संबंधानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सहापि मिलितवान्। तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायी शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य कूटनीतेः अन्ताराष्ट्रियविधेः सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्त्वम् अधोरेखितम्। केन्यादेशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षासु दीर्घकालं यावत् सहभागित्वं कुर्वन्ति। जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापान देशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांसदेशस्य एवियन नगरम् अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागी देशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्वैपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखर सम्मेलनावधौ भविष्यति। 25,000 फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अंतिम वारम मेलनानंतरम उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविध क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः तथा च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम् अतिरिच्य अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय सन्तुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिकवृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री EU परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोस्टा इत्यनेन सह EU अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्ताराष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणं इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्त्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति। विश्वमेकः परिवारः अस्ति इति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिक क्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
3: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे।

0: कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi undertook extensive diplomatic outreach on the sidelines of the G summit in Avignon, France, holding bilateral meetings with leaders from Canada, United Kingdom and UAE yesterday. He also met and interacted with the leaders of several other countries on the sidelines of the G7 meeting. The Ministry of External Affairs said that during their meeting, Prime Minister Modi and his Canadian counterpart, Mark Carney, welcomed the positive momentum in India-Canada relations and reaffirmed their commitment to building a forward-looking strategic partnership. During his meeting with British Prime Minister Keir Starmer, Prime Minister Modi reviewed the progress in India-UK relations under Vision 2035. Prime Minister Modi also met UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan on the sidelines of the G7 summit. The two sides called for continued free, fair

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप ध्वनि वी श्रीवास्तव से भजन सुन रहे थे। संगत कलाकार थे प्रमोद प्रसन्ना बांसुरी पर, दानिश असलम सरोद पर, जाकिर धौलपुरी हारमोनियम पर, अकील अहमद सितार पर और तबले पर संगत कर रहे थे प्रदीप्ता महाराणा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

भई अखबार की सुर्खियों के साथ सुबह की चाय मिल जाए तो भाई तो सुबह तो सुहानी हो ही जाएगी, और दिल में कुछ अच्छा करने का इरादा अगर हम ठान ले तो और सोने पर सुहागा।

जी हाँ दोस्तों, हर सुबह हमें एक नया मौका देती है खुद से बेहतर बनने का। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत नहीं दिख रही है, हम जो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ नहीं मिल रही है, लेकिन दोस्तों कहना है ना कि कई बार क्या होता है, जब हम ज़मीन के अंदर कोई बीज डालते हैं तो वही चुपचाप मेहनत करते हैं, कभी पानी देते हैं, कभी खाद डालते हैं, तभी एक दिन पेड़ बनता है। तो उसी तरह जो लोग आज तारीफ नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और सफलता एक दिन कदम ज़रूर चूमेगी।

दोस्तों, हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। सफलता देर से मिल सकती है लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।

जी हाँ दोस्तों, यदि जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तो एक बात याद रखिए, पतंग हवा के साथ नहीं, हवा के विरुद्ध उड़ती है। अपने सपनों को इतना मजबूत बनाइए कि कठिनाइयाँ भी आपके हौसलों के सामने छोटी पड़ जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की रुकावटों को घबराते नहीं हैं उनसे, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। हौसलों की उड़ान बाकी है, अभी तो जीवन की पहचान बाकी है।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपने आज को कल से बेहतर बनाइए। इसी सोच के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों

0: से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को

0: अर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुँच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर

0: सम्मेलन और नीट यूजी पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है, क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई, जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स ऑन ऑल नेशंस टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ग्लोबल मैरिटाइम रूट्स and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase, with India participating as a partner country. all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral

0: Bihar, Kerala and Mahe. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags, seafarers' safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, Peace Without Peace writes, the announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem. The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Kishau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेर इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाक़ी राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3-1 रोज़ा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एवियन में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तिजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तिजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने बैन अलावी साझेदारी कायम करने, खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में अतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अलावी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैनुल अक्वामी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैनुल अक्वामी

0: यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन अल-अक़वामी साझेदारी में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की ज़रूरत है। फ्रांस का शहर एवियां इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बना हुआ है। वहाँ G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई हैं, जिसका काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था। ये मुलाकात सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में वाशिंगटन DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से ये पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मज़ीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेशीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज़्यादा भारत का रुख कर रही है। आलमी मामलात पर तबादले ख्याल को जहद देने में भारत के बढ़ते हुए रोल से उसका सिफारती रबते का दायरा बढ़ने और मुख्तलिफ फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ सरगम रबतों की अक्कासी होती है। कल सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रबता इजलास में वजीर आजम ने बैन अल-अक़वामी साझेदारी कायम करने और ख़ास तौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने हमेशा इंसानियत मुकद्दम का रवैया इख्तियार किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की ज़ेर कमान किए गए मुख्तलिफ इकदामात से इस बात की अक्कासी भी होती है, जिनमें बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मखलूत इत्तेहाद, आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम शामिल हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अल-अक़वामी साझेदारी के भारत के नज़रिए की बुनियाद वसुधे कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुनबा है के दायमी फलसफे में पिन्हा है। फ्रांस के शहर एवियां से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 वर्किंग इजलास में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के फायदे के लिए मुतवाजन जामे और पायदार माशी तरक्की को फ़ाल बनाना। इसके अलावा जनाब मोदी मसनूई जहानत के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के सदर वॉन देर लेन के साथ सेफरीकी मीटिंग करेंगे और जर्मनी के चांसलर फ्राइडरिख मर्ज के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा और बरतानिया के वज़राए आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा बातचीत की थी। जनाब मोदी ने केनिया मिस्र और जनूबी कोरिया के सुदूर नीज जापान की वजीर आजम से भी मुलाकात की। G7 मुल्कों ने भारत समेत कई साझेदार मुल्कों के साथ सेहत और तरक्की से मुतालिक आलमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इकदामात का ऐलान किया है। G7 के रहनुमाओं ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फिर से जोर पकड़ने के तनाजुर में तालमेल के साथ बैन अल-अक़वामी कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत मिस्र केनिया और जनूबी कोरिया ने भी इकदामात में तेज़ी लाने की अपील की, जिसमें राबते में आने वाले अफराद का पता लगाना, सरहद पर निगरानी और बेदारी पैदा करना शामिल है। इन रहनुमाओं ने इबोला वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने, तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए मदद करने का भी वादा किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने तवील अरसे से जेर इल्तवा केशाऊ कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट के मामले पर कल नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस प्रोजेक्ट का मकसद दरियाए जमुना का अहया करना है। एक बयान में उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि मस्कूरा प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करने से इत्तेफाक किया है। इसके बाद केशाऊ प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए मरकजी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात का इनाकात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने वालदेन और उम्मीदवारों से जोर

0: लेकर कहा है कि वो नीट इम्तिहानात से पहले घोटाला साजों से खबरदार रहें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि टेलीग्राम पर ये घोटाला साज कुछ चैनल चला रहे हैं जिन पर ये दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान के पर्चे फराहम करने के दावे कर रहे हैं और इसके लिए ये लोग 14,000 से 25,000 रुपये तक मांग रहे हैं। एजेंसी ने वाजे किया है कि इस दोबारा इम्तिहान के लिए कोई पर्चा इफ्शा नहीं हुआ है। उसने कहा है कि इस सिलसिले में फर्जी सबूत के वीडियोस भी गर्दिश कर रहे हैं जिनमें इम्तिहान से पहले की चैट्स दिखाई गई हैं। एनटीए ने अपने डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की वीडियो भी जारी की है जिसमें वो मुल्क में इस ऐप तक रसाई को ब्लॉक करने की वजह बता रहे हैं। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क की विरासत के तहफ्फुज और फरोग के तई हुकूमत के इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
1: जनवरी 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंजाम दी, जो सदियों से जारी एक उमंग को पूरा करने का वक्त था। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। इस राहदारी में अजीमुशान मुजस्मों, म्यूरल्स और फन तामीर के जरिए भगवान शिव की जिंदगी और रिवायतों की अक्कासी की गई है। वाराणसी में दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ राहदारी का इफ्तिताह किया गया था। इस राहदारी के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से मिलाया गया है। हमारे नामा निगार से बात करते हुए वाराणसी के एक शहरी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ राहदारी से मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफ़ी सहूलत मुहैया हुई है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: इन बड़ी तब्दीलियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के साथ साथ सकाफती जड़ों को मजबूत करने की जानिब मुल्क के अहद की अक्कासी होती है।
0: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज ज़ैली, हिमालयी, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। IMD के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक का इम्कान है। इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के हालात का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में आज गर्मी और हब्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में ICC खवातीन T20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क़यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंघम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप 1 के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप 1 में सरफहरिस्त आ गया है। इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप 1 के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में काइलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया।

0: इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाय किया है। खांसी के सिरप सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाज़त। खांसी के सिरप फरोख्त की सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाज़त, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अहमियत के साथ शाय किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है कि आने वाली नस्ल के पास मुल्क में तब्दीली लाने के लिए दरकार मुनफरिद तवानाई और नया अज़्म मौजूद है। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। अमरीका का B-52 बमबार तैयारा परवाज के फौरन बाद गिरकर तबाह, हादसे में 8 अफराद की मौत।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से ज़ोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ़ फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के अहया के लिए तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबैन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 809 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 8:45 हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम स्वरगंगा का। आइए इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनते हैं मोहम्मद साकिब से राग मियां की तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे हैं समीर खान।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजर है हरजीत कौर। अज असी काव्यमई अल्फाजा दी महफिल यानी कवि दरबार सजाया है, जिस विच गीत भी गूंजणगे, उदासी भी छाएगी ते हासा रोमांस भी होएगा। ते पंजाबी मां बोली दे जिहड़े कदरदान कवि तशरीफ लियाए ने, ओह ने रणजीत कौर जीत, परवीन कौर, अवतार सिंह आनंद ते हरभजन सिंह दियोल। सारे कवियां दा स्वागत है। दरअसल लफ्ज़ां दे धागियां नाल जो दिलां नूं जोड़ देवे ओह है कवि दरबार, जिथे खुशबू भी है, एहसास भी है ते साहित दा सच्चा शिंगार भी है। ते हुण बगैर देरी कीते सब तो पहला सद्दा देंदे हां रणजीत कौर जीत जी नूं। शुरुआत करदे हां प्यार नाल, रोमांस नाल, प्रेम भाव दी कवित्री रणजीत कौर जीत जी।
1: हां जी, मेरी कविता है तेरे नाल जिंदगी बतावां ते किस तरह।
0: वाह,
1: इस तो पहला एक शेर दो लाइना।
0: जी जी।
1: तेरे दीद दी प्यास ना बुझदी है, मेरी उम्र बीत दी जांदी है। तेरे दीद दी प्यास ना बुझदी है, मेरी उम्र बीत दी जांदी है। नैणा चों ना हंजू सुकदे ने, तेरी याद बड़ा तड़पांदी है।
0: वाह वाह वाह।
1: नैणा चों ना हंजू सुकदे ने, तेरी याद बड़ा तड़पांदी है। ते गीत है
0: जी,
1: मैं तेरे नाल जिंदगी बितावां ते किस तरह।
2: मैं तेरे नाल जिंदगी बितावां ते किस तरह,
0: किस तरह? वाँ, वाँ, वाँ,
1: मैं वाँ, तेरे नाल जिंदगी बितावां ते किस तरह, तकदीर अपने दोनों दी मिलावां ते किस तरह।
2: वाह वाह वाह वाह।
1: तकदीर अपने दोनों दी मिलावां ते किस तरह, मैं तेरे नाल जिंदगी बितावां ते किस तरह।
2: वाह।
1: छू के जो तैनू आउंदियां पौणा मस्तानियां।
2: वाह।
1: छू के जो तैनू आउंदियां पौणा मस्तानियां, मैं उन्हां च सुगंधी बण के कुल जावां ते किस तरह।
2: किस तरह? वाह वाह।
1: छू के जो तैनू आउंदियां पौणा मस्तानियां, मैं उन्हां च सुगंधी बण के कुल जावां ते किस तरह, मैं तेरे नाल जिंदगी बतावां ते किस तरह। गुलशन वीराने हो गए, बहारां ने रुस गईयां। गुलशन वीराने हो गए, बहारां ने रुस गईयां। मुड़ फुल्लां दी महक नूं मैं लियावां ते किस तरह।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: मुड़ फुल्लां दी महक

0: दो में मिलन गे
1: के फूल कंडे भी मिलन गे रास्ते है जब जिंदगी दे रास्ते। बड़ा बेहतरीन शेर अर्ज कर रहे हैं
0: जी।
1: सम्मान।

0: रास्ते
1: खुल
0: जाते अपने आप सारे रास्ते। अस करें जी, जिन थावां ते गुजारी है जिंदगी, जिन जिन थावां ते गुजारी जिंदगी, भुले नहीं अज तक सानू रास्ते, भुले नहीं अज तक वो सानू रास्ते। अस करें रंजीत जी, दिल भर बन के आए दिल दे विच कोई, दिल भर बन के आए दिल दे विच कोई, सोने फिर लगदे निसारे रास्ते, सोने फिर लगदे निसारे रास्ते, है अजब है जिंदगी दे रास्ते, जो पटक दे ही नहीं

0: रास्ते
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा
0: ले जान दे मंजिल तक उन्हां नूं रास्ते हो जांदी ने जद

0: फिर हो अलग जांदे दिलां दे
1: रास्ते। बहुत
0: रास्ते,
1: अच्छा,
0: फिर
1: बहुत अच्छा।
0: हो अलग
1: जान
0: जांदे
1: दिला
0: दिलां दे रास्ते। आखिरी शेर अर्ज करें,
1: जी।
0: खुदा

0: नाले रास्ते ना अलग होवन इना दे रास्ते है अजब ऐ जिंदगी दे रास्ते वखो वखरे ने चलन दे रास्ते। शुक्रिया जी।
1: बहुत सारे रस्ते दस दिते इन्होंने। हरभजन सिंह दियोल जी की कविता आप मुहारे सच का बयान करती है। कुछ गल्लां भी हुंदियां रहन, कुछ गीत भी गाए जान, इसे तरह कवि दरबार च कविता दे दोबारा रंग सजाए जान। ते दोबारा सदा देंदे हाँ रंजीत कौर जीत अपनी पसंद की कविता लैके आ रहे ने। जीत जी,
2: मेरी कविता है यादा ही तो जिंदगी ने
3: जी। वाह
2: वाह। यादा ही तो जिंदगी ने, जिंदगी एक याद है। यादा ही तो जिंदगी ने, जिंदगी एक याद है। यादा जदों तड़पांदियां ते दिल करदा फरियाद है।
3: वाह वाह। यादा जदों तड़पांदियां दिल करदा फरियाद,
2: यादा जदों तड़पांदियां दिल करदा फरियाद है। यादा ही तो जिंदगी ने, जिंदगी एक याद है।
3: याद है।
2: कुछ यादा ने मिठियां मिठियां दिल दी तह विच रह रहीयां। कुछ यादा ने मिठियां मिठियां दिल दी तह विच रह रहीयां। कुछ यादा ना सूर बन के हंझुआं दे संग बह
3: रहीयां।
2: कुछ यादा ना सूर बन के हंझुआं दे संग बह रहीयां। यादा दी इस दुनिया विच आबाद कोई बर्बाद है। यादा ही
3: दोबारा शेर है।
2: कुछ यादा ने मिठियां मिठियां दिल दी तह विच रह रहीयां। कुछ यादा ना सूर बन के हंझुआं दे संग बह रहीयां। यादा दी इस दुनिया विच आबाद कोई बर्बाद है। यादा ही तां जिंदगी ने, जिंदगी एक याद है। कुछ यादा अलड़ ते मासूम जियां नादान ने। कुछ यादा अलड़ ते मासूम जियां नादान ने। कुछ यादा दी हसी है खुद अपनी पहचान है।
3: खुद अपनी पहचान है।
2: कुछ यादा अलड़ ते मासूम जियां नादान ने। कुछ यादा दी हसी है खुद अपनी पहचान है। कुछ यादा ने बुलबुल जियां, कुछ यादा ने बुलबुल जियां आ पैंदा सयाद है। कुछ यादा ने बुलबुल जियां आ पैंदा सयाद है। यादा ही तो जिंदगी ने, जिंदगी एक याद है। ओ भी तो यादा ही सन जो कच्चे घड़े ते तर गईयां। ओ भी तो यादा ही सन जो कच्चे घड़े ते तर गईयां। यादा ही तो तड़प तड़ के, यादा ही तो तड़प तड़प के बिच थलां दे सड़ गईयां। यादा विच ही जिंदा ने, यादा विच ही जिंदा ने अज शीरी ते फरियाद है। यादा ही तो जिंदगी ने, जिंदगी एक याद है। जवार पाटा जदों यादा दा दिल दे वेड़े फुटदा है। जवार पाटा जदों यादा दा दिल दे वेड़े फुटदा है। लख रोको दीवारा कर लो कद रोके यह रुकदा है। लख रोको दीवारा कर लो कद रोके यह रुकदा है। जीत यादां ते किसदा कब्जा है किसदा अधिकार है। जीत यादां ते किसदा कब्जा है किसदा अधिकार है। यादां ही तां जिंदगी ने, जिंदगी एक याद है। यादां ही तां जिंदगी ने, जिंदगी एक याद है। यादां जदों तड़पांदियां ते दिल करदा फरियाद है। यादां ही तां जिंदगी ने, जिंदगी एक याद है। थैंक यू जी।
1: दिल दे जज्बातां नूं बयान करदी कविता पढ़ी रंजीत कौर जीत जी ने। ते हुण प्रवीण कौर जी अपने

0: जज्बातों नूं अल्फाजां दा जामा पवा के मुड़ हाजिर हो रहे ने
1: जी। धन्नवाद जी। मेरी कविता दा नाम है तकदीर
0: जी।
1: नी तकदीरे नी तकदीरे तू कानू मेरे पिछे पै गई, लुट के मेरा सीना लै गई। नी तकदीरे तू कानू मेरे पिछे पै गई, लुट के मेरा सीना लै गई। काफिर ओह वक्त लंघाया, जबलां मैनू सीने लाया। उन्हां दे तन दी भैड़ी छो कर मैनू बर्बाद गई ए। हासे सारे खो गए ने, बचपन सारा रुल गया ए। बंद कोठड़ी सुनिया कंधां, हुण गम ही मेरा हो गया ए। नौकरां वांग मैं कंबदी रहिंदी,
2: अच्छा जी।
1: नौकरां वांग मैं कंबदी रहिंदी, हर महीने तो डरदी रहिंदी। हाय तकदीरे तू की मेरे नाल करदी रहिंदी, हाय तकदीरे तू की मेरे नाल करदी रहिंदी। मापिया बद्दी नाल सिदक दे, मापिया बद्दी नाल सिदक दे, मेणिया दे मैं सहंदी बोल। पठ चोकना जिंदगी मेरी, पठ चोकना जिंदगी मेरी, पै गए लाले होर रिजक दे, मासूम भी हुण होए खलो। पै गए लाले होर रिजक दे, मासूम भी हुण होए खलो। कली बह बह रोग हिजर दे, कली बह बह रोग हिजर दे, दिन ब दिन वधाए होर। ना ही जगते कोई अपना मिलिया, ना ही मिलिया नाल संजोग। ना ही जगते कोई अपना मिलिया, ना ही मिलिया नाल संजोग। नी तकदीरे की तू कीता कानू मेरे पिछे पै गई, बिछड़ बिछड़ के मिलदे मैनू मेरे गम दे गहरे चोल। बिछड़ बिछड़ के मिलदे मैनू मेरे गम दे गहरे चोल। हुण अक गई हाँ थक गई हाँ, हुण अक गई हाँ थक गई हाँ। खुशियां मेरी चोली पा दे,
3: खुशियां
1: मेरी चोली पा दे, जिंदगी नूं कोई दे दे मोड़, जिंदगी नूं कोई दे दे
3: मोड़। धन्नवाद
0: जी। प्रवीण जी, खामोशियां नूं भी आवाज़ दे दित्ती तुहाडी कविता ने, ते हुण शब्दां च लुके भावां दी डूंघाई दा आनंद देण लई आ रहे ने आनंद जी।
3: अज साडे आल इंडिया रेडियो दा 90वां साल है, 90 साल हो गए ने। उसी खुशी विच मैं अपनी कविता दा नाम रख्या रेडियो।
2: बड़े मौके दी आ जी।
3: इहदा नां है मन दा रेडियो। अज मन दा रेडियो जद मैं खोलिया, अज मन दा रेडियो जद मैं खोलिया, ते ओ बड़े प्यार नाल बोलिया। ध्यान नाल सुनो मेरियां बातां, ध्यान नाल सुनो मेरियां बातां। चार दिन दी जिंदगी हस खेल के गुजार लो, फिर तेने अनेरियां रातां। चार दिन दी जिंदगी हस खेल के गुजार लो, फिर तेने अनेरियां रातां। रल मिल के रिहा करो भैन भरावां विच, रल मिल के रिहा करो भैन भरावां विच। सुख माणिया करो माँ बाप दियां ठंडियां छावां विच, सुख माणिया करो माँ बाप दियां ठंडियां छावां विच। ए बड़ी खुश नसीबी नाल नसीब होंदे ने, ए बड़े खुश नसीबी नाल नसीब होंदे ने। पुछो उन्हां कोलों जिन्हां कोल ए नहीं हैगे, किंज ओ मुस मुस रोंदे ने।
0: बहुत अच्छा।
3: पुछो उन्हां कोलों जिन्हां कोल ए नहीं हैगे, किंज ओ मुस मुस रोंदे ने। दो वेले तां कटो कट रब दा शुक्र गुजारो, दो वेले तां कटो कट रब दा शुक्र गुजारो। देश कौम दा कर्ज उतारो, देश कौम दा कर्ज उतारो। जद बन आवे देश कौम ते अपनी जिंद जान वारो, जद बन आवे देश कौम ते अपनी जिंद जान वारो। अज मैं जद मन दा रेडियो खोलिया, देश प्रेम दा गीत जद ओ बोलिया, मेरे कन्ना नू इंज लगिया जिवें मेरे कन्ना विच किसी ने शहद घोलिया। मैनू इंज लगिया जिवें मेरे कन्ना विच किसी ने शहद घोलिया। कहन लगा शहीदां नू प्रणाम करो, कहन लगा शहीदां नू प्रणाम करो। धरती मां नू सलाम करो, जिस देश दा दित्ते खांदे हो, जिस देश दा दित्ता खांदे हो, उस देश नू ना बदनाम करो। जिस देश दा दित्ता खांदे हो, उस देश नू ना बदनाम करो। मन दे रेडियो नू रोज चलाया करो, कुछ सुनिया करो, कुछ सुनाया करो। मन दे रेडियो नू रोज चलाया करो, कुछ सुनिया करो, कुछ सुनाया करो।
0: बहुत अच्छा, मन दा रेडियो। कविता लिखण दा कमाल दा हुनर है अवतार सिंह आनंद जी विच। ते हुण प्रोग्राम दे अखीर च हरभजन सिंह दियोल जी अपने दिल दी गल कविता राहीं कहणगे।
2: जी जी जी। नफर

0: आंसू किसी दे वेख के क्यों मुस्कुरांदे हो। आंसू किसी दे वेख के क्यों मुस्कुरांदे हो, आंसू किसी दे वेख के क्यों मुस्कुरांदे हो, आंसू किसी दे वेख के क्यों मुस्कुरांदे हो, तुहाडे भी आंसुआं ते हसिया करन गे लोग, तुहाडे भी आंसुआं ते
1: हसिया
0: करन गे लोग, जे किसे दा साथ ना देवोगे सोच लो, जे किसे दा साथ ना देवोगे सोच लो, जे किसे दा साथ ना देवोगे सोच लो, फिर तुहाडे नाल भी नचलिया करनगे लोग, फिर तुहाडे नाल भी नचलिया।

0: बहुत अच्छा।
1: हरभजन जी तुहाड़ी कविता वाकई दिल नूं छू गई। समय दा पता ही नहीं लगा कदों फुल दी खुशबू वांगू हवा विच घुल गया। अज दे कवि दरबार च पेश कीतियां कवितावां दीआं यादां हमेशा नाल रहणगीआं। अज दे प्रोग्राम च सद्दे गए कवि सन रणजीत कौर जीत, परवीन कौर, अवतार सिंह आनंद ते हरभजन सिंह दिओल। असीं सारे ऊर्जा नाल भरे कवियां दा धन्नवाद करदे हां। इस दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा है। अगले प्रोग्राम च फिर मिलांगे। हुण हरजीत कौर नूं इजाजत दिओ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों

0: Sahib Deoras on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said that Bala Sahib Deoras dedicated his life to the national service, social harmony and the character building of the youth and considered untouchability to be the greatest curse. World Day to Combat Desertification and Drought is being observed today globally. The theme for this year is Ranged Lands, Recognize, Respect, Restore, which calls for greater recognition of the economic, ecological and cultural value of range lands, respect for their traditional stewards and stronger investment in restoring degraded range lands. Domestic equity benchmarks traded flat in morning session today after a three-day rally driven by lower crude oil prices and optimism over a US-Iran peace deal. Sensex was trading at 76,817.58, up 8.58 points or 0.01%, while Nifty was at 23,988, down 1 point in early trade. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के विशेष फोन कार्यक्रम में बात फूलों की। बात फूलों की होती है तो खुद ही खुद हम मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि मुस्कुराते गुदगुदाते ये प्यारे से फूल कहते हैं भाई हमें कैसे आप सजा सकते हैं अपनी बगिया में, कैसे आप हमारा ध्यान रख सकते हैं। तो हमने कहा भाई हम तो रखते ही हैं, लेकिन अगर विशेषज्ञ साथ हों तो फिर और बात बन जाती है। और कैसे रख रखाव करना है, कैसे उनका ध्यान रखना है, कैसे कीटों के प्रकोप से उन्हें बचाना है, इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। जी, मैं आपके साथ प्रीति, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर कृष्ण सिंह तोमर। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण विभाग बांदा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बरसों से जुड़े हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर कंवर पाल सिंह। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद मैडम।
1: डॉक्टर साहब एक अरसे से प्रधान वैज्ञानिक रहे पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं और बात फूलों की करेंगे। और जब बात फूलों की होती है तो खुद ब खुद मुस्कुराहट आ ही जाती है। और आज का जो हमारा विषय है डॉक्टर साहब वो है ग्रीष्म ऋतु में सजावटी पौधों एवं पुष्पों के प्रवर्धन की तकनीक क्या है और कैसे हम उन्हें सजा सकते हैं, कैसे हम इन्हें और बेहतर खूबसूरत बना सकते हैं, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सिर्फ हम नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब तो हमारे साथ है ही, मैं आपके साथ प्रीति, और स्टूडियो के कंसोल पे राजेश जी बिल्कुल है आपके टेलीफोन कॉल्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे श्रोता कैसे जुड़ेंगे, उन्हें जुड़ने के लिए हमें कॉल करना होगा। बात फूलों की विशेष फोन इन प्रोग्राम है, ये आपके लिए है। 11 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे और हमारा STD कोड है 011, ये ज़रूर लगाइएगा जहाँ से भी आप कर रहे हैं, दिल्ली NCR या बाहर से कहीं से भी। और हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो है 2342-1082, और दूसरा नंबर एक और आपके लिए है 2342-1083। इन दो नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे शुरुआत करते हैं, डॉक्टर कंवर पाल सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब हम सजावटी पौधों की बात करते हैं तो सोचते हैं कि कैसे सजाया जाए, कैसे उनकी देखभाल की जाए, तो क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए सजावटी पौधों की अगर हम बात करें और ये टॉपिक की बात करें
1: जी,
3: बहुत ही रिलेवेंट सा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो सजावटी पौधे हैं ज़्यादातर हम, वैसे तो सारे सजावटी होते हैं फूल वाले भी बिना फूल वाले भी,
1: हाँ।
3: लेकिन मुख्यतः सजावटी हम उनको कहते हैं, फूल नहीं आता, पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं,
1: बहुत खूबसूरत लगती
3: हैं, इंडोर प्लांट इनको हम कहते हैं, ठीक है, जैसे रबड़ प्लांट है, डिफेनबेकिया है, एग्लोनीमा है, इस टाइप से तमाम पौधे हैं। और ये जो गर्मी का मौसम है जो हम टॉपिक में रखा हुआ है खासकर इसको इंडिकेट करने के लिए, गर्मी में उनकी खास देखभाल रखनी पड़ती है,
1: बहुत जरूरी। हम ही मुरझा जाते हैं तो बेचारे क्या करेंगे।
3: कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बाहर इतनी लू पड़ रही थी, आदमी बाहर निकल नहीं सकता था, निकले तो मुंह पे ऐसे लगती हवा गर्म बिल्कुल। तो ऐसे में हम नाजुक पौधों को कैसे बचाएं, जैसे इनके नाम से पीते तो इंडोर प्लांट, इंडोर मतलब घर के अंदर रखने हैं ये, या घर की बालकनी में रखने, तो इनको बाहर अगर हम एक्सपोज कर देंगे ऐसी गर्म हवा में तो ये मर जाएंगे। तो इनकी देखभाल इस समय करना बहुत जरूरी होता है
1: जी। और साथ में थोड़ा सा पहले अगर हम

0: जाए 2-4 दिन पहले तो दिल्ली
1: जी
0: एनसीआर में अलर्ट आया था, बहुत तेज हवाएं,
1: जी
0: और सब हम तो बहुत परेशान थे
1: बहुत
0: क्योंकि हम
1: परेशान थे। जी
0: 24th फ्लोर पे रहते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: वैसे में पौधे भी मैंने देखा सारे हिल रहे थे
1: सारे
0: बिल्कुल,
1: हिल, सही कह
0: तो
1: रहे
0: क्या
1: आप।
0: उन पे कोई इम्पैक्ट आता है इसका, इस तरह
1: इम्पैक्ट
0: से कुछ
1: होता आता
0: जैसे
1: है
0: मौसम
1: कि
0: में
1: असल में
0: परिवर्तन
1: ज़्यादातर
0: होता है?
1: पौधे जो है ना उनको
0: जी
1: माइल्ड क्लाइमेट चाहिए,
0: जी
1: और वो ज़्यादा जाए 30-35 डिग्री तक टेम्परेचर झेल लेते हैं, और इस समय में टेम्परेचर भी बढ़ता है और जो हवा चलती है वो भी गर्म होती है राजस्थान की तरफ से, खासकर दिल्ली में, तो उसमें तो स्कॉर्चिंग हो जाती है, पत्तियां ना जलने लगती हैं किनारों से बीच में से, तो ऐसे में उनको बचाया नहीं जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। उनको बचाने के लिए उनको थोड़ा शेड प्रोवाइड करिए, अगर आपकी बालकोनी में आधे दिन धूप आती है आधे, क्योंकि धूप भी ज़रूरी है, सुबह के टाइम धूप दीजिए जहाँ शाम की तरफ छाया आती है उधर को उनको ऐसी जगह रखिए, और अगर छत पे हैं तो उनके ऊपर फिर ग्रीन नेट शेड नेट आती हैं
0: जी
1: अलग अलग 25%, 50%, 75%, उसको शेड नेट लगा दीजिए, थोड़ी आपकी लाइट कट जाएगी,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ऐसे करके इनको बचा सकते हैं। और भी
0: जी
1: ज़्यादा दिक्कत है थोड़ा सा स्प्रिंकलर आजकल आते हैं, थोड़ा ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो
0: कर
1: हवा
0: सकते
1: गर्म है वो
0: हैं।
1: ठंडी हो जाएगी, तो वो भी कर सकते हैं, इस तरह
0: जी
1: से हम इन पौधों को बचा सकते हैं गर्मियों
0: जी
1: में।
0: तो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और डॉक्टर तोमर हमारे साथ है, और डॉक्टर साहब की जो एक्सपर्टीज़ है वो गेंदे में है, तो मैं चाहूँगी थोड़ी सी बात हम गेंदे की भी कर लेते हैं। गेंदे की खेती में अगर हम सोच रहे हैं या हमारे जो किसान मित्र सोच रहे हैं, वो नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं उसकी?
2: बहुत अच्छा मैडम टॉपिक है। इस समय जैसे जो रेनी सीजन आने वाला है,
0: जी
2: अभी हम लोग जून के महीने में, मिड जून चल रहा है, तो अभी हम
0: अब
2: अभी
0: बरसात
2: बरसात, हाँ
0: आएगी,
2: बरसात
0: जी
2: ऋतु की जो,
0: तैयारी चल
2: हाँ
0: रही है।
2: तैयारी करने के लिए हम गेंदे की फसल के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम, बेहतर तरीका है दो तरीके से नर्सरी करते हुए, तो सीड बेड में हम बना के तैयार कर सकते हैं, या जो प्रो ट्रे प्लग ट्रे आते हैं उसमें हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में बारिश ज़्यादा होती है, तो हम यदि डायरेक्ट मतलब सॉइल में सीड डालेंगे तो थोड़ा सा बर्बाद होने का ज़्यादा चांस रहता है, तो 100% जर्मिनेशन रहे तो उसके लिए बेहतर है कि हम प्रो ट्रे में, प्लग ट्रे जो आती हैं उसमें, क्योंकि 100% जर्मिनेशन होगा उसमें,
0: जी
2: कोकोपीट है, परलाइट है, बर्बिकुलाइट है, ये हम मटेरियल लेके उसमें प्रो ट्रे में डालेंगे, और सीड को जो बहुत सारी रेनी सीजन में ग्रो करने वाली जो वैरायटीज है, कुछ हाइब्रिड भी हैं, कुछ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की भी वैरायटीज हैं, जैसे पूसा श्वेताव है जो रेनी सीजन में फ्लावर देती हैं, तो उनको हम सीड को लेके और इसमें सोइंग कर सकते
0: जी
2: हैं।
0: डॉक्टर साहब आपकी बात और सुनेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में भी चल रहे हैं, लेकिन
1: जी
0: हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशेष फोन इन प्रोग्राम है ये, क्या
1: जी
0: कहना चाहते हैं उनकी बात सुन ले।
1: जी
0: हेलो,
1: हेलो
0: स्वागत है आपका, अपना नाम बता दीजिए।
1: जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ दिल्ली
0: सुनील,
1: से,
0: कहाँ से कॉल किया आपने हमें?
1: दिल्ली से, दिल्ली बुराड़ी से
0: दिल्ली से। ओके, दिल्ली बहुत बड़ी है,
1: जी, बुराड़ी से मैं फोन कर रहा हूँ
0: बुराड़ी से। ओके, और आपका प्रश्न क्या है सुनील जी?
1: जी। मैं कार्यरत हूँ आपको बेसिल में, प्रश्न ये है कि क्या कहते हैं, बेसिल का मैंने कुछ प्लांट लगाया है और कुछ प्लांट में वो वैसे है, तो जैसे बारिश का सीजन है जिसमें वाटरिंग करता हूँ प्लांट में, तो अगर बारिश हो जाता है तो किस हिसाब से पानी देना चाहिए? क्या
0: बहुत
1: काफी
0: बढ़िया,
1: गमले
0: बहुत बढ़िया
1: हैं
0: तुमने बात
1: मेरे
0: तुम्हारी।
1: उसमें।
0: किस चीज़ का पौधा लगाया आपने?
1: आप
0: बेसिल का है उन्होंने ना?
1: बेसिल का प्लांट
0: जी
1: है, कुछ फूलों के हैं, गुलाब है, ये सब तरह के
0: देखिए,
1: जो गार्डन
0: बारिश में
1: हैं।
0: मैं एक सिंपल फंडा सभी प्लांट्स के लिए बता देता हूँ, पानी की कमी भी पौधे को नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। वो जो जहाँ भी हम गर्मी की बात कर रहे थे, तो पौधा गर्मी में कई बार बच जाता है, लेकिन ज़्यादा पानी हम जब लगाते हैं ना तो उसमें उसकी जड़ सड़ जाती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा पानी भरता है तो गमलों में एक तो पूरी तरह से मिट्टी भर कर रखिए, ऊपर से करीब 3-4 इंच ही उसको खाली रखिए गमले को, और ताकि उसमें कम पानी ठहरे, क्योंकि आप डेली पानी लगाएंगे, अगर बारिश नहीं भी हो तो आप ज़्यादा पानी उसमें भरते रहेंगे, जब आदमी की तसल्ली नहीं होती, हम भी करते हैं कई बार, जब पानी जब तक ऊपर नहीं आ जाएगा तब तक मन नहीं मानता, तो उसका इलाज यही है कि उसमें मिट्टी भरें, ऊपर 2-3 इंच खाली रखें, ताकि उसमें पानी उतना ही आए जितना एक दिन में यूज हो जाए, फिर अगले दिन फिर लगाएं। और अगर
1: पानी ना
0: बारिश कई
1: दे
0: बार
1: तो
0: लगातार
1: सूख भी
0: होती
1: जाता
0: है
1: है।
0: तो उनको गमले को तिरछा कर दें, तिरछा करके एक तरफ उसके कंकड़ लगा दीजिए परमानेंट, जब लगातार बारिश चलती है, और जब बारिश बंद हो पत्थर को हटा दीजिए, तो पानी अपने आप ही नीचे गिरता अच्छा,
1: रहेगा,
0: थोड़ा सा टिल्ट कर
1: तिरछा कर
0: देना।
1: दीजिए, हाँ टिल्ट कर दीजिए, तो अपने आप निकलता रहेगा, क्योंकि बार बार आपको निकालना फिर सीधा करना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है जब लगातार बारिश चलती है, और जब एक आध बार चलती है तो बिना उसके पत्थर के कर दीजिए हाथ से, फिर सीधा कर दीजिए, तो
0: यही
1: वाटरिंग
0: इसका
1: सर
0: इलाज है
1: मॉर्निंग में करना अच्छा होता है या इवनिंग में?
0: जी। पानी कब देना चाहिए, सुबह या शाम?
1: नहीं, पानी देने की बात कर रहे हैं, जी,
0: पानी अगर शाम को दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी अगर शाम को देते हैं दिन छिपने से पहले, या आप घर में रहते हैं तो सफाई रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नाइट वाइट में भी दे सकते हैं, तो पूरी रात पौधा ना पौधे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, दिन में देते हैं पानी तो वो उड़ जाता है, काफ़ी पानी उसका उड़ जाता है, कुछ पौधा पानी कम पौधा ले पाता है। रात को देखें तो मैक्सिमम पानी जो है पौधा लेता है, पूरी रात पी लेता है, फिर दिन में उसको स्वस्थ रहता हूँ पानी पी।
3: बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई, हम भी सुबह सुबह प्लांट्स में पानी डालते हैं कि सुबह हो गई है प्लांट्स को पानी चाहिए, तो
0: बहुत शाम को डाले तो अच्छा है, और नहीं तो सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग डालिए अगर कई बार भूल जाते हैं शाम को, तो शाम का बेस्ट है।
3: ठीक है सुनील जी,
4: थैंक यू
3: सो मच। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो
5: हेलो, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, अपना परिचय दे दीजिए हमें।
5: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
3: शिमला, देखिए ठंडी हवाओं में पहुंच गए हम गर्मी के मौसम में। जी राकेश बताइए।
5: जी, मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर साहब से कि जैसे कि ज्यादा बरसात होती कई बार जो है ओलावृष्टि हो जाती है, तो ओलावृष्टि से फूलों को कैसे बचाया जाए?
0: ओला
3: बहुत, हाँ जो पत्थर गिरते हैं ना उससे कैसे फूलों को बचाएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताया इन्होंने। पीछे हम मसूरी घूमने गए थे और वहां पर बारिश हुई तो बिल्कुल पत्थर गिरने लगे जोर जोर से, कुछ ऐसा ही हिल स्टेशंस पे होता है, अनप्रेडिक्टेबल सा मौसम होता है।
0: ओले के लिए तो वही आपको पोली हाउस में ही करना पड़ेगा, अगर आप घर पे गमला कर रहे हैं तो उनको तो आप बचा ही सकते हैं, बालकोनी में रख के या कमरे के अंदर रख के अगर इंडोर प्लांट्स हैं तो, और अगर ओपन खेत में खुले खेत में आप खेती करते हैं तो ओले का तो कोई निदान ओपन में तो है नहीं, किसी भी क्रॉप के लिए नहीं है, फूलों की क्या बात है। लेकिन हॉर्टिकल्चर में जरूर सक्सेस मिली है कि हम प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कर सकते हैं पोली हाउस के अंदर, ग्लास हाउस तो महंगे पड़ते हैं, पोली हाउस ज्यादा चल रहे हैं, ये एक हॉर्टिकल्चर का एडवांटेज है। जैसे आप धान गेहूं मक्का नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो उनकी कॉमर्शियल इतना वैल्यू कम है, जो हाई वैल्यू क्रॉप हैं फ्लोरिकल्चरी क्रॉप्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनको आप उसके अंदर पोली हाउस के अंदर करेंगे, तो वो बनाया इसलिए इस कंसेप्ट इसलिए है कि उसमें एनवायरमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो, जब बारिश हो गर्मी हो ओला हो सबको उसमें प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन भी कहते हैं, संरक्षित खेती।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।
3: थैंक यू राकेश जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और थोड़ी सी ठंडी हवाएं वहां से हमारे पास और भेज दीजिएगा क्योंकि वैसे मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा है, और हम थोड़ी सी बारिश की भी बात करें क्योंकि आने वाले मौसम की तैयारी भी करनी होती है पौधों के लिए, हम भी अपना देखते हैं अच्छा बारिश आने वाली है हमें अम्ब्रेला लेना है रेनकोट लेना है, जिसको जैसे ट्रैवल करना है उसे उनको देखना है, ऐसे प्लांट्स के लिए भी सोचना पड़ता है। तो गुलदौदी की नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं डॉक्टर साहब? की
2: ये गुलदाउदी का बड़ा उपयुक्त समय है मैडम, आपने सही प्रश्न किया। इस समय हम गुलदाउदी के जो मदर प्लांट हमारे पास हैं, जहाँ भी जो हमारे किसान भाई या जो ग्रोवर्स अपने गमलों में गुलदाउदी उगाया होगा, तो उसमें से हम उसके जो एपिकल पोर्शन है उसमें से हम 8-10 सेंटीमीटर लंबाई का कटिंग ले करके उसको ले लें, और उसके बाद उसमें 2 या 3 मैक्सिमम लीव रखें, बाकी लीव्स को हम वहाँ से हटा दें, और हम एक मिक्सचर तैयार कर लें बालू का और मिट्टी का और खाद का बर्मी कंपोस्ट डाल के, और उसमें हम ये कटिंग लगा दें, और हम रूट हार्मोन ले सकते हैं, रूट हार्मोन से डिवो करके उसमें यदि हम लगा देंगे तो क्या होगा हमारी 3 हफ्ते में हमारी रूटिंग तैयार हो जाएगी, तो अगस्त में हम जो है प्लांटिंग कर सकेंगे। तो ये गुलदाउदी का बहुत उपयुक्त समय है प्रवर्धन करने का। तो ये किसान भाई अब इस समय अब छोटा सा सेड नेट बना के पॉली हाउस बना के अपना ये नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
3: जी एक बार पुनः अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, बात फूलों की हो रही है, विशेष फोन इन प्रोग्राम, बुधवार का दिन हम आपके साथ हैं, और आज का जो विषय है ग्रीष्म ऋतु में सजावटी पौधों एवं पुष्पों के प्रवर्धन की तकनीक, ये हमारा आज का विषय है। बाकी आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसके लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 011 हमारा दिल्ली का कोड है, और 2342108 एक नंबर ये है, और दूसरा नंबर है 2342108 3, और राजेश जी बिल्कुल तैयार हैं और फोन कॉल के फ्लिक होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके साथ प्रीति, स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण सिंह तोमर और डॉक्टर कंवरपाल सिंह, दो एक्सपर्ट्स हैं, फूलों को कैसे हम खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे सजा सकते हैं, उसकी तैयारी में हम बिल्कुल लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम इंडोर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उनके रखरखाव के लिए कोई विशेष सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए, मैं चाह रही थी उस पर भी थोड़ी सी चर्चा।
0: अभी पानी की गर्मी की बात तो हमने कर ली थी, उसके अलावा जो अन्य चीजें हैं, सबसे पहले मैं पानी की बात करूंगा, यू कुछ एक सज्जन हमारे पानी के बारे में पूछ भी रहे थे। तो पानी जैसे कि मैंने पहले बताया, पानी एक्सेस कम तो दिक्कत करता ही है, लेकिन कम में पौधा जल्दी नहीं मरता, विल्टिंग होगी धीरे धीरे मरता है, और ज्यादा में वो जल्दी मरता है क्योंकि पानी हम डेली लगाते हैं घर में, तो एक तो पौधे को पानी उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है, उतने का
1: कोई मेजरमेंट का तो लोगों के पास है नहीं कि नाप के डालना, इतना तो पॉसिबल भी नहीं है।

0: तो उसका यही तरीका है कि गमले में मिट्टी सफिशेंट भरें, ऊपर से 2 या 3 इंच खाली रखें और पानी डेली, बस फिर आपका कम ही पानी लगेगा गमले में। और एक ही बार अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे पीछे मई के महीने 2 बार लगा सकते हैं सुबह शाम, अदरवाइज 1 बार लगाएं। और जाड़ों में 1 बार भी जरूरत नहीं, अल्टरनेट डे भी चलता है। पौधे को थोड़ी सूखने दें, वो चीज़ जो उसकी
1: ड्राई होना
0: गमले की जो
1: जरूरी
0: हल्का
1: है
0: सा
1: ही।
0: चितकबरा सा हो जाता है ना वो मिट्टी, तो मुझे जब तब डालें, जब गीला बनाओ तो उसको अवॉइड करें। तो ये देखभाल, पानी लगा नहीं तो उसमें रोटिंग हो जाती है धीरे धीरे। और उसको, और नीचे उसके होल होना चाहिए। एक देखना आपको गमलों के हरे के नीचे छेद होता है,
1: जी
0: और छेद पे हम कंकड़ पत्थर रखते हैं, वो इसलिए

0: आती है उसमें,
1: वो जो पत्तों के ऊपर
0: हाँ
1: डस्ट आ
0: डस्ट
1: जाता
0: आता
1: है, अरे
0: है
1: बहुत
0: उसको,
1: महत्वपूर्ण, मैंने
0: बहुत
1: भी देखा बहुत
0: आप
1: बार ऐसा
0: बहुत
1: होता
0: हल्के कपड़े, हल्के हाथ से कपड़ा लेके हल्के हाथ से उसको साफ
1: जी
0: करते रहें तो उसमें चमक भी अच्छी लगेगी आपको, देखना एकदम चमकेगा वो।
1: जी
0: और उसको जो पौधे की जो अपनी प्रक्रिया है वो नहीं रुकती है उसकी, भोजन बनाने की जो प्रकाशन है
1: जी जी
0: तो
1: एक
0: बाकी।
1: कॉलर हमारे
0: हाँ
1: साथ
0: बाद
1: जुड़
0: में
1: गए
0: कर
1: हैं,
0: जी
1: उनकी
0: जी
1: बात सुन लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते
1: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
2: जी। अच्छा हूँ, मैं बहुत नियमित सुनाता हूँ, भूल गया था आप लोगों को।
1: कहाँ चले गए थे आप?
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
1: हाँ जी, क्या नाम बताया?
2: डॉक्टर सितारे।
1: डॉक्टर सितार,
0: सितारे
1: जी जी
0: सितारे
1: जी
0: सितारे
1: जी
0: बताइए डॉक्टर साहब।
2: फूल के बारे में जानना चाहता हूँ, जारे वाली फूल के बारे में।
0: कौन सी फूल के बारे में?
2: जारे में जो तैयार होती है, जारा में,
1: जाड़े
2: अच्छा
1: में। अच्छा, ये और थोड़ा
0: जाड़े के लिए।
1: आगे।
0: चलिए कोई बात है, अच्छे एडवांस चल रहे हैं आप,
3: जी, बहुत
0: बढ़िया।
3: अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब। जाड़े में हमारे सीजनल फूल के बारे में आप बात कर रहे हैं कि कौन से सीजनल फूल लगा सकते हैं, तो
2: जी
3: बहुत सारे सीजनल फूल हैं।
0: ये तो आती
3: आप
0: है
3: मेरी
0: इसमें,
3: गोल्ड भी लगा, गेंदा भी लगा सकते हैं उसमें,
0: ठीक है बिल्कुल।
3: आपके जो है हॉली हॉक है उसमें, आपका जो है डाइमोरफोटिका है उसमें, आपका पेंजी है, आपका कैलेंडुला है, इस तरह के जो एनुअल्स हैं, विंटर सीजन एनुअल्स हैं, करीब 25-30 तरह के विंटर एनुअल्स हैं। और उसको आप अक्टूबर के महीने में कहीं से सीड कलेक्ट करके, सीडलिंग तैयार कर लीजिए, और सीडलिंग करके उसको आप बेड में, गमलों में और लगा सकते हैं, जिससे पूरा सीजन आपको फूल देंगे। साल्विया है, तो इस तरह के बहुत सारे फूल हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं।
2: सही सही राय के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
3: धन्यवाद,
0: धन्यवाद धन्यवाद सर जी। हाँ
1: बहुत
0: जी
1: बहुत शुक्रिया, ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, हमें अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी। और हमारा टेलीफोन नंबर एक बार पुनः आपको बता देते हैं, 2342-1082, और दूसरा नंबर है 2342-1083। और स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर तोमर, डॉक्टर सिंह, और
0: जी
1: बातचीत कर रहे हैं फूलों के रख रखाव की, सजावटी फूलों की बात कर रहे हैं। हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम बरसात, जाड़ा सभी कुछ कवर कर रहे हैं। और मुझे
0: जी
1: लगता है
0: जी
1: कि जो प्रश्न हमारे
0: जी जी
1: श्रोताओं के दिमाग में होता है, वो आगे
0: जी
1: की तैयारी तो
0: तैयार
1: करते ही
0: करते
1: हैं
0: हैं
1: सभी, तो
0: नेचुरली।
1: ये तो हम
0: जी जी
1: देखते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: जैसे हमने
0: जी जी
1: एक लॉन बनाना है, तो
0: जी
1: लॉन बनाना हो तो उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है इस मौसम में? जैसे अब बरसात आने वाली है, तो तैयारी कैसे कर लें उसकी?
3: हाँ मैडम, ये लॉन के लिए हमको सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम साइट सिलेक्शन करें कि
1: जी
3: कहाँ पे लॉन बना रहे हैं। यदि वो ज़मीन यदि थोड़ी सी नीची है तो उसको पहले हम लेवल करें और थोड़ा सा उसका स्लोप दें। यदि
1: अच्छा
3: हम उसका इसको हम प्रिपरेशन के तौर पे यदि हम प्रॉपर तरीके से ढलान नहीं देंगे तो पानी उसमें भरेगा, तो ये हमको विजुअली देखना पड़ेगा कि कहीं ये ढलान तो कहीं से पानी रुक तो नहीं रहा है। तो जब पूरी तरीके से लेवल करें, और उससे पहले लेवल करने से पहले हमको अच्छे से खुदाई करनी पड़ेगी, जो उसमें कंकड़ पत्थर और जो बहुत सारे रूट्स रहते हैं वीड्स के, वो हमको अच्छे से हटाने पड़ेंगे। ये लॉन का बहुत मुख्य मतलब तरीका है तैयार करने का, क्योंकि एक बार लॉन जब तैयार हो जाती है तो वीड्स को हम पर हटा नहीं पाते हैं। तो ये अच्छी प्रॉपर तरीके से डिगिंग हो, वो जो ये महीना जून का है इसमें हम डिगिंग कर लें अच्छे से,
1: जी
3: और जितनी भी साफ सफाई है उस कंकड़ पत्थर डेब्रिस मटेरियल वो हटा लें। उसके बाद उसमें हम उसको लेवल कर लें, उसमें जो है आप FYM सड़ी हुई गोबर की खाद उसको अवॉइड करें। जिस गोबर की खाद से क्या होता है कि बहुत सारी वीड्स आते हैं, तो हम उसमें वर्मी कंपोस्ट और उस तरह की मेन्यू डालें। और उसके बाद फिर हम जो भी दूब घास लगाना चाहते हैं या सिलेक्शन वन या हम टर्फिंग करना चाहते हैं वो लेकर के हम प्लांटिंग कर सकते हैं। तो ये इस टाइम में लगाने से ये होता है कि बहुत फास्ट मतलब जो है हमारी लॉन तैयार होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और ये रेनफॉल होगी तो बरसात में क्या होगा कि आपको टाइम कम लगता है और पानी भी कम देना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल रेनफॉल भी होगी तो लोग लॉन लगाते भी हैं इस सीजन में। तो इस तरह से हम लॉन तैयार कर सकते हैं। और जिनकी पुरानी लॉन पहले से है तो
1: जी
3: उनको उनको देखना पड़ेगा कि बहुत पानी रुक तो नहीं रहा है वहाँ पे, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, प्रॉपर उसकी मोविंग होनी चाहिए, तो बहुत सारी फंगल डिजीज वगैरह भी लगने का डर रहता है। तो उसके लिए हम जो है फंजीसाइड वगैरह का भी स्प्रे करते हैं।
1: जी अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, टाइम बाय स्टूडियो क्लॉक 10:30, यानी आधा घंटा आपके पास और है हमें कॉल करने के लिए। 11 बजे तक हमारी ये जो टेलीफोन लाइन्स है वो खुली रहेंगी, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न एक्सपर्ट से, विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया है डॉक्टर
0: जी
1: तोमर ने कि कैसे हम लॉन को तैयार कर सकते हैं। कुछ
0: जी
1: बिन बुलाए मेहमान भी है जो आ जाते हैं, जिनको हम
0: जी
1: खरपतवार कहते हैं,
0: जी
1: तो वो
0: जी
1: बरसात में कुछ ज़्यादा दिखते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: कैसे उसका

0: थोड़ा सा कर सकते हैं कि कम आ जाए, आएंगे तो जरूर मुझे लगता है, बता दें जी।
1: खरपतवार की जो आपने सही कहा है, मेजर समस्या होती है इसमें लॉन्स में, बाकी क्रॉप में तो हम क्रॉप ख़त्म होती है, सीजनल जुट जाती है तो निकल जाते हैं, और लॉन है बता दें परमानेंट बनता है, काफ़ी सालों तक चलता है,
0: काफ़ी सालों तक।
1: और वो क्योंकि
0: कॉलर को ले लेती हूँ फिर हम बात करते हैं। हेलो हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम संजय कुमार है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी संजय जी, क्या प्रश्न है आपका?
2: ये जैसे अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो

0: हल्का पार्शियल शेड रहेगी बरामदे में, तो इस तरह से फूल आप लगा सकते हैं। बल्बस प्लांट भी रहेंगे और कुछ इंडोर प्लांट्स रहेंगे।
1: अच्छा, अच्छी क्वालिटी का प्लांट कहाँ लें, क्योंकि ये जो अमान नर्सरी में लेते हैं वो उतना सही नहीं हो पाता है, बहुत जल्दी वो सूख जाता
0: अमान नर्सरी, अब जैसे दिल्ली में बहुत सारी नर्सरी हैं, जैसे आप कृषि विज्ञान केंद्र जाइए जो नज़दीक हो, और कृषि विश्वविद्यालय नज़दीक हैं वहाँ पे, जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ से भी जा सकते हैं, और दिल्ली के बहुत सारे रिप्यूटेड नर्सरी हैं जहाँ से आप ले सकते हैं।
2: कुछ महंगा वाला कह रहे हैं क्या, कॉस्टली वाला, बढ़िया वाला, ऐसा कुछ कहा आपने?
1: नहीं, मैं जैसे सामान्य नर्सरी से अगर हम लाते हैं
2: लेते
1: प्लांट
2: हैं
1: तो
2: तो जी।
1: वो बहुत जल्दी सूख जाता है,
2: अच्छा,
1: तो
2: नहीं
1: मैं
2: नर्सरी
1: कुछ
2: इसमें एक काम कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से जो घर में भेजते हैं ना उनसे लेते होंगे, क्वालिटी की बात
0: जी,
2: कर रहे
0: आप
2: हैं,
0: नर्सरी में
1: तब
0: जाइए।
1: नर्सरी
2: हाँ,
1: में
2: क्वालिटी
1: जाइए।
2: के
1: बहुत
2: हाँ,
1: नर्सरियां हैं, या हम जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ पे भी हम कुछ
2: जो
1: पौधे देते
2: आसपास
1: हैं।
2: नर्सरी होती है वहाँ भी गए हैं, वहाँ से भी लाए हैं, लेकिन वो उसकी क्वालिटी उतनी सही नहीं हो पाती है।
1: नहीं, वैरायटी आप देख के लेते हैं ना, तो देख के लेते तो वैरायटी अच्छी ली होगी आपने, पौधा लेते हैं ना वहाँ तो।
2: वहाँ सही रहता है, लेकिन जैसे घर में लाते हैं तो 5-10 दिन के
0: तो
1: बाद
0: केयर
2: फिर
0: नहीं हो
2: मुझे
0: पाती,
2: लगता है
0: नहीं
2: थोड़ा
1: घर
2: सा
1: में लाते हैं
2: मेंटेनेंस
1: ना,
2: की
1: घर में
2: प्रॉब्लम।
1: लाते हैं तो वो उस क्वालिटी की दिक्कत नहीं है, वो
0: तो
1: मेंटेनेंस की
0: केयर
1: दिक्कत
0: मेंटेनेंस
1: है।
0: दिक्कत है आपकी।
1: जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत
2: हाँ
1: देखने में बड़ी माइनूट लग रही हैं, पानी कम लगाना है, शेड रखना है, लेकिन इन्हीं का ही रोल है पौधे को ज़िंदा रखना। एक बार कई बार ये होता है कि कई बार वो जो नर्सरी वाले होते हैं ना, वो बिल्कुल ताज़ा पौधा दे देते हैं, जैसे वो अभी 10-15 दिन में रूटिंग कराया और तुरंत दे दिया, तो उसकी एक तो रूट कम होती है कई बार, और जब हम पौधे को लगाते हैं ना अपने गमले में शिफ्ट करते हैं, उसकी जो मिट्टी में वो इंटैक्ट बंधा होता है वो टूटना नहीं चाहिए। आपको पॉलीथीन बहुत लाइट स्लाइटली उसको हटाना है, और वो टूटनी नहीं, उसको एक्सेस
2: टेक्निक है
1: उसको
2: उसकी
1: लगाना है।
2: जी।
1: अगर वो टूट गई और उसकी डिस्टर्ब होगी तो रूट एक्सपोज हो जाएगी, तो फिर वो बचाना मुश्किल होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे तो भी वो चलेगा, और
2: बहुत
1: एक आध
2: शुक्रिया।
1: महीने अगर स्टेबलिश हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 दिन की शुरू की वो रहती है, मैक्सिमम 1 मंथ। हाँ
2: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, हम खरपतवार की बात कर
1: जी
2: रहे
1: जी
2: थे,
1: जी जी
2: बीच
1: जी
2: में
1: जी
2: बात रह गई थी, आगे कुछ और
1: हाँ,
2: बताना
1: तो
2: चाहेंगे?
1: खरपतवार में जो है, जो एक तो जैसे अभी तोमर साहब ने बताया कि उसमें जो खाद, गोबरी खाद जो होता है वो हमेशा हम
2: प्रॉपर होनी चाहिए
1: रिकमेंड करते हैं क्रॉप्स
2: जी।
1: में, लेकिन इसमें लॉन के केस में हम इसलिए थोड़ा अवॉइड करते हैं कि उसमें कई बार वो खरपतवार बहुत आ जाते हैं, कि पशु घास खाते हैं और वो सीड उनका गोबर में जाता है तो उससे बनता है वो, तो उसमें वर्मी कंपोस्ट एक डालें ताकि मिनिमम आए। उसके अलावा लॉन लगाने से पहले जून वगैरह, जून में अच्छी जुताई करें उसकी, ताकि बीज और खाद जो भी है सब सूख जाएगा तब लगाएंगे। उसके बावजूद भी अगर उसमें आता है तो उसमें मैन्युअली उसको निकालना पड़ता है, छोटी खुरपी बनाते हैं बहुत छोटी सी,
2: जी
1: ताकि जो बाकी जड़ें घास के नुकसान ना हो उनको, और उनको निकालते रहना चाहिए बीच बीच में, और उनको तुरंत निकालें, शुरू में ये ना लगे कि थोड़ा है भी छोड़ देते हैं, तो कुछ दिन बाद लगेगा कि घास दब जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल है। आप साथ साथ निकालते रहेंगे तो घास डोमिनेंट घास रहनी चाहिए वीड पे, वीड डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, उल्टा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है,
2: बहुत मुश्किल
1: फिर
2: होता
1: उसको
2: है
1: कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि वीड भी नीचे मल्टीप्लाई करता रहता है, उसकी रूट रहती हैं,
2: जी।
1: तो वो इसको करें तो भी वो मेंटेन रहेगा। जी,
2: जी डॉक्टर साहब, मैं एक बात और सोच रही थी कि जब सारी चीज़ें सही से होती है, जैसे पानी कैसे देना है, रख
1: जी
2: रखाव कैसे करना है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई कि कैसे आप उन्हें वापस दूसरे गमले में जब लगाते हैं तो अगर गलती हो जाती है तो वो सही से नहीं, और 15-20 दिन आपको बहुत बढ़िया से उन्हें देखना है, उसके बाद वो इस्टैब्लिश हो जाते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, स्पॉइल नहीं होते, क्योंकि आप प्यार से खरीद के लाते हैं, फिर वो नई पनपता है तो दुख तो होता है। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे खूबसूरत चीज़ होती है तो कीट पतंगे भी आ जाते हैं, तो कीट प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। वैसे जब हम इंडोर प्लांट्स की बात करते हैं तो ड्राइंग रूम में जैसे मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं तो उसमें आ जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं अरे थोड़ा नीचे ही होगा, मैट वगैरह डालो तो आ तो नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ हम ध्यान कैसे रखें कि इस तरह की चीज़ों से बचा सकें उन्हें, और प्लांट्स के लिए भी थोड़ा सा कभी हार्मफुल होता
0: हार्मफुल
2: है
0: ना हो, तो
2: जी।
0: इसलिए जो इंडोर गार्डनिंग में या अपने घरों में जो एमेच्योर ग्रोवर्स हैं, जो हम लोग शौकीन हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि हम कोई बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का ना यूज़ करके हर्बल तरीके से, जैसे आपका नीम ऑयल है तो उसको ले लें, 5 मिलीलीटर नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में घोल करके, और उसके
2: ऑर्गेनिक,
0: साथ ऑर्गेनिक, और उसके साथ हम क्या करें डिश वॉश सॉप का सोल्यूशन डाल के, जिससे क्या
2: अच्छा
0: होगा, और बेहतर तरीका है हम शाम को स्प्रे करें उसमें, जब हम शाम को स्प्रे करेंगे तो बढ़िया रहता है, और हम इसको 15 दिन के अंतराल पे करते रहें तो बहुत सारे जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उसको हम

0: बचा ले जाते हैं। तो ये बहुत कारगर तरीका, जिससे हमारा कोई हमारे, क्योंकि बहुत ही हाईली हम जो इंसेक्टिसाइड डालेंगे और इनऑर्गेनिक, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि
1: हमारे लिए भी
0: हम प्लांट्स
1: हार्मफुल है,
0: के टच में
1: प्लांट्स के
0: रहते
1: लिए
0: हैं।
1: भी
0: तो
1: हार्मफुल है
0: बेहतर
1: जी।
0: तरीका यही है कि हम जो हर्बल को यूज करें, और जो फंजीसाइड है तो ट्राइकोडर्मा से हम ट्रीट करें। तो जैसे कोई सीड हम लगा रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें ट्राइकोडर्मा मिक्सर डाल दें, तो आजकल ये तरीका ज़्यादा बेहतर है।
1: जी। और एक कॉलर हमारे से कुछ पूछना चाह रहे हैं, मतलब आपसे पूछना चाह रहे हैं,
2: जी
1: हम तो
2: जी
1: सिर्फ
2: ठीक है
1: माध्यम है
0: जी
1: जी। जी
0: जी
1: हेलो हेलो,
3: हेलो नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
3: बस बढ़िया हूँ मैम, आपका शो सुन रही हूँ।
1: ओह वाह, थैंक यू सो मच। अपना नाम भी बता दीजिए।
3: मैम मैं सुषमा बोल रही हूँ दिल्ली से।
1: ओके सुषमा,
3: मैम
1: दिल्ली बहुत बड़ी है, कहाँ से?
3: दिल्ली यमुना विहार।
1: ओके गुड, वैसे आप एड्रेस ना बताएं, हम पहुंचेंगे नहीं। हाँ प्लांट्स देखने के लिए आ सकती हूँ, ये मेरा तो बिल्कुल रहता है कि प्लांट्स अच्छे से लगे हैं तो बिल्कुल मन करता है जाने
3: मैम
1: का।
3: आप आ सकती हैं हमारे घर पे, का हम मतलब एक मिनी गार्डन ही हमने एक तरह से तैयार कर रखा है
1: ओ वाह,
3: ऑलरेडी।
1: दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। क्योंकि फूलों से मोहब्बत मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ना हो, है ना? और महिलाओं को तो बहुत होता है, क्योंकि कभी हम 24 आवर्स ऑन कॉल घर पे भी रहते हैं, तो हमें लगता है अरे फूल है तो हम
2: जी
1: मुस्कुरा रहे हैं। जी सुषमा
3: मैम
1: जी, बातें तो हो गई, आपका प्रश्न क्या है?
3: एक तो मैं जानना चाह रही थी कि हमारे फिलहाल तो क्योंकि गर्मी का मौसम है, सारे फूल के पौधे जो हैं वो सारे एक तरह से खराब ही हो रहे हैं। तो पिछले दिनों भी मैंने कोशिश की कि एक दो फूल के प्लांट्स लाई थी मैं, तो वो नहीं चल पाए। तो अभी आज के इस गर्मी के मौसम में हम कौन से फूल लगा सकते हैं और कौन से नहीं, बताएंगे आप?
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न है। गर्मी के मौसम में मैडम, पहले तो जो खराब हो गया उसके बारे में बता दें कि थोड़ा सा आप यदि छत पर रखी होंगी तो आपको सैड नेट वगैरह यूज करना चाहिए था, जैसे 25% सैड आता, 50% जैसे सर ने पहले बताया था, तो हम थोड़ा बचा ले जाते, क्योंकि इतनी डायरेक्ट अपने यहाँ जो दिल्ली की हीट स्कॉर्च है उसको पौधे नहीं झेल पाते हैं। दूसरा, अभी जो बरसात का सीज़न आ रहा है, जिसके लिए अभी हम सनफ्लावर ले सकते हैं, जीनिया ले सकते हैं, बालसम की सीड ले सकते हैं, और जो है इस तरह के कॉस्मोस का भी है, जो है इस तरह के हम इन फूलों को जो समर सीजन, रेनी सीजन एनुअल्स हैं, इनको हम ले करके, अभी बेहतर है कि आप कहीं नर्सरी में जाएं तो सीडलिंग मिलती है इनकी, पौधे ऑलरेडी रेडीमेड, उन पौधों को ले आइए, पोर्चुलाका है, इन इन सबको ले आइए और गमलों में बढ़िया सा तैयार करके, मिक्सचर तैयार करके गमलों का, उसमें आप प्लांटिंग कर दीजिए। कुछ दिन उनको थोड़ा सा पार्शियल शेड में रखिए, डायरेक्ट धूप में न रहें, शाम को फिर धूप में, शाम को निकाल दीजिए 4 बजे के बाद, और उसके बाद फिर जब धीरे धीरे उनको जब एस्टेब्लिश हो जाए फिर आप परमानेंट धूप में रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर बरसात भी आ जाएगी। तो ये आप रेनी सीजन एनुअल्स को लगा सकती हैं मैडम अच्छे से। हाँ
3: सर थैंक यू सो मच। पर एक और साथ ही फूलों से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है।
0: जी
3: अच्छे से मेरे घर पे जैसे डहरिया का भी प्लांट था, वो तो चलिए अभी खराबी हो चुके हैं।
0: जी
3: गुड़हल का एक हमारा बहुत बड़ा पेड़ है, लगभग 10 साल हो गए होंगे। मैंने उसे जितने भी यूट्यूब पे मुझे उपाय दिखे कि कॉफी पिलाओ ये करो, मैंने सब कर दिया, पर उसको फूल ही नहीं आते हैं। गमला थोड़ा छोटा पड़ गया है लेकिन पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, पर आज से कभी फूल नहीं आए उसमें।
1: देखिए, कॉफ़ी भी पिला दी उन्हें मैं। वाह क्या बात है, तो उन्हें मिली है तो हमें तो कॉफ़ी ज़रूर मिलेगी आपके यहाँ।
0: अब वो मैडम ये है कि आपने जो वो प्लांट कहाँ से लिया, वो डिपेंड करता है कि वो जो गुड़हल का कौन सा मतलब जो प्लांटिंग मटेरियल है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो कहाँ से लिया हो, या तो उसका जो जो जुनून मटेरियल है वो उस पर डिपेंड करता है। ये कहीं ना कहीं ये खरीदने में या सप्लायर के देने में भी कहीं वो रही होगी, नहीं तो गुड़हल में इतने दिन तक तो इंतजार करने की बात ही नहीं आती है, गुड़हल में इतने दिन तक फूल ही ना आए जो है।
3: मैंने तो सारे उपाय कर डाले पर हुआ नहीं उसमें। शायद हो सकता है उसकी प्लांट भी, उसकी ब्रीड अच्छी नहीं
0: हाँ वही
3: होगी।
0: मैं कह रहा हूँ
2: कितना
0: कि
2: साल पुराना है?
0: दस साल बोल रही हैं,
2: दस
0: सर
3: 10 साल हो
0: हाँ,
3: गया। हाँ जी सर,
0: तो इससे तो बेहतर है कि आप इतना इंतजार करने जगह पे
1: एक नया
0: दूसरा
1: ले
0: नया आप ले लेती
1: लीजिए।
0: जो है
2: अब नया ले लीजिए, अभी सीजन आने वाला है, बरसात में आप लगा
0: और
2: सकते हैं
0: 3 महीने
2: उसको।
0: में ही फूल देने लगते हैं गुड़हल वाले। आप
3: सर वो मैं कोशिश करूंगी, पर वो सारे प्लांट इतने पुराने कि हमारा उनसे एक इमोशनल
1: मोहब्बत हो
3: कनेक्शन
1: गई
3: हो रहा है।
1: है,
2: नहीं
1: ओल्ड
2: उसको मोहब्बत रखिए, आप कहीं उसमें लॉन में लीजिए, गार्डन के घर के आसपास गार्डन वहां लगा
0: जी,
2: दीजिए,
0: उसको
2: मोहब्बत ही बनी रहेगी।
0: स्पेसमैन बना दीजिए
2: उसको
0: उसको।
2: किसी को डोनेट कर दीजिए, उसमें नीचे उसको कम्युनिटी में लगा दीजिए और उसमें लगा दीजिए।
3: और सर एक फाइनल क्वेश्चन और, आईसीआर से सर मैंने एक फूलों का पूरा मिक्स फूलों का एक पाउच लाई थी मैं बीजों का, क्या उन फूलों को हम आजकल बो सकते हैं?
0: वो कब सीजन क्या लिखा था उन्होंने, कब क्या बताया था मैडम, कब लाई थी
3: मुझे चेक करना पड़ेगा।
0: आपने कब ली थी, कब परचेज किया था मैडम आपने?
3: सर वो तो मैं दिसंबर के आसपास

0: दिसंबर के आसपास, तो उसमें लिखा होगा मैडम ये समर सीजन का है कि रेनी सीजन का
1: कहाँ से
0: है।
1: लाई?
0: आईसीआर से, आईआरआई से लाई थी, पूसा से मैडम।
2: यस सर, यस सर।
0: तो
1: कौन से
0: दिसंबर,
1: फ्लोरिकल्चर डिवीजन से लाए?
2: जी सर,
1: नहीं, एक तो हमारे यहाँ सीड प्रोसेसिंग यूनिट है, एक फ्लोरिकल्चर डिवीजन है।
2: फ्लोरिकल्चर जो डिवीजन है वहां से लाई थी।
1: फ्लोरिकल्चर में तो गेंदा ही देते हैं भैया, सीजनल फ्लावर्स देते हैं।
2: सर मैंने शायद इतना नोटिस नहीं, ध्यान नहीं दिया
0: तो
2: होगा,
0: विंटर
2: बट अभी
0: सीजन
2: मेरे
0: का
2: पास
1: दिया
2: पाओ।
1: विंटर
2: जी
1: सीजन का हम देते हैं, वो अक्टूबर में लगेगा।
2: सर, ठीक है
0: हाँ
2: सर, मैं उसे इस बार बोलूंगी
0: हाँ
2: सर।
0: अक्टूबर में बोइएगा
1: जी
0: मैडम
1: जी
0: आप।
1: जी
0: हाँ
1: अक्टूबर में लगाइए, लगता है आप काफ़ी शौक है आपको, विंटर के लिए रखा है, समर की बात कर रहे हैं। और समर का जैसे तोमर साहब ने बताया, कुछ क्रॉप ऐसे हैं जो समर में बहुत तेज़ी धूप में चलती हैं,
0: जी
1: पोर्चुला का है, सनफ्लावर है, कोचिया है, तो आप उनको लगाइए, टेंशन नहीं रहेगा गर्मी में। आप थोड़ा एक हफ्ते तैयार करके लगाइए, बस धूप में रख दीजिए, कोई टेंशन
0: जी
1: नहीं। ठीक है? नहीं
2: जी जी थैंक यू सो मच
1: जी
2: सर,
1: जी
2: थैंक
1: वेलकम जी,
2: यू मैम,
1: थैंक यू
0: थैंक
1: थैंक यू
0: यू।
1: सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः अपने श्रोताओं को बता दे कि घड़ी टिकटॉक करती हुई आगे बढ़ रही है और लगभग लगभग 16 मिनट आपके पास और हैं हमें कॉल करने के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1082, और दूसरा नंबर है 2342-1083। और हमारा आज का विषय है ग्रीष्म ऋतु में सजावटी पौधों एवं पुष्पों के प्रवर्धन की तकनीक। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में, डॉक्टर कृष्ण सिंह तोमर और डॉक्टर कंवर पाल सिंह, मैं आपके साथ प्रीति, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है तुषार प्राशर, और इसका संयोजन किया है शिवनंदन लाल ने। और स्टूडियो में अगर हम बात करें तो कंसोल पर राजेश जी हैं, आपकी कॉल्स हम तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और एक कॉल हम तक पहुंच गई है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: हेलो मैम, नमस्ते। हाँ
1: नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए। हेलो हेलो,
3: हेलो, आवाज आ रही मैम?
1: हाँ जी, हमको आ रही है, अपना
3: क्या
1: नाम
3: हाल
1: बता
3: है?
1: दीजिए। मुझे लगता है आप अपना रेडियो अगर ऑफ कर देंगे तो आप हम तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। अपना नाम बता दीजिए हमें।
3: मैं शिक्षा प्रजापति बात कर रहा हूँ मैम।

0: फूल है मैम, नींबू का पौधा भी है, अनार का पौधा भी लगा रखा है, करेले का भी है उसमें,
1: सब्जियां भी
0: उसमें डहरिया भी लगा रखी
1: जी
0: है। तो
1: हाँ
0: और उसमें मैम जैसे अभी डीएपी डाला था तो एक मैम फूल आ रहा है मोतिया का। मोतिया का कि पहले सीजन में तो वो मतलब बिल्कुल सूख गया था, उसमें पानी कम था, उसके
1: जी
0: बाद ऑटोमेटिक वो नई पत्ती आने के बाद फूल भी दे रहा है वो सही से। और जो फ्लावर लगे हुए हैं मगर उसमें किसी में फ्लावर नहीं आ रहे हैं। और गुड़ाई कितने टाइम तक करनी चाहिए हमारे को, पानी कितनी मात्रा देना चाहिए?
1: पानी की मात्रा वैसे डॉक्टर साहब लगातार बता रहे
2: देखिए,
1: हैं।
2: इसमें जो है आप सही है, आपका पूरा मैनेजमेंट आपको पानी का भी करना है, न्यूट्रिशन का भी करना है, ठीक
0: सर
2: है।
0: एक एक सवाल हो रहा है मेरा, जैसे मैंने सर गुड़ाई कम से कम साल भर से ज्यादा हो गया, मैंने गुड़ाई अभी तक भी है तो।
2: हाँ वो बता रहा हूँ मैं आपको, गुड़ाई का भी जो आपने डीएपी की बात करी ना, तो डीएपी तो चलो डाल दिया आपने, वैसे जनरली हम उसमें जब फसल लगाते हैं ना तभी डालते हैं, लेकिन कि गमले में तो एक बार लगता है, कई साल तक चलता है, उसमें डीएपी थोड़ा गहराई में डालिए, क्योंकि वो मूव नहीं करता, ऊपर से नीचे नहीं जाता, थोड़ा सा जड़ के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो वो साल में 2 बार से ज़्यादा नहीं डालना है, बेटर है कि आप उसमें स्प्रे करें, एक पानी में घुलने वाला आता है, एक नाइट्रोजन फास्फोर पोटास का सोल्यूशन, ठीक है।
0: सर मैंने 19-19 भी लाया
2: हाँ
0: था
2: 19-19
0: बाजार से
2: उसका
0: वो
2: स्प्रे करते रहिए, ठीक है, उसमें
0: जी।
2: डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डीएपी ना जनरली जड़ के नीचे डालना पड़ता है।
0: तो सर 19-19 हमें कितना टाइम देना पड़ेगा, मतलब महीने के अंदर?
2: 19-19 आप दे दीजिए, 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालिए।
0: जी। और सर और जैसे 12 इंच के गमले भी है, 10 इंच के भी गमले मेरे पास, और उसमें खाद हमने जैसे घर में जैसे होती है ना फल पेड़ों की जो पत्तियां सूख जाती है
2: हाँ
0: उनको
2: बहुत
0: मैं रख
2: बढ़िया,
0: लेता
2: उसको
0: हूँ
2: सड़ा के डालिए, बहुत अच्छी
0: जी।
2: बात है।
0: और जैसे सर सब्जियां भी जो होती है मैं उसको सारी इकट्ठी कर लेता हूँ, जितनी भी होती है उनको खाद बना के वही डालता हूँ सर
2: हाँ
0: मैं सही रहेंगे
2: बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप।
0: जी। सर थैंक यू सर।
2: और पानी का जो मैंने बताया ना, पानी आपको कम डालना है, और उसमें मिट्टी सफिशियंट डाल के रखनी है, ऊपर से 2-3 इंची गमले खाली रखना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है,
0: जी सर थैंक यू सर।
2: करेले आपके लगे कि नहीं?
0: सर अभी तो नहीं सर, नींबू आए थे, और नींबू सर कभी कभी तो सर जैसे दवाई डाली थी तो गिर के ना फट गए थे, ज्यादा बड़े हो गए थे वाले।
2: दवाई वो गर्मियों में थोड़ा
0: और
2: सा फ्लक्चुएशन होता है, दिक्कत आती है, दवाई कम डालिए। आपने जो सारी चीज़ें घर में खाने के लिए हैं या देखने के लिए हैं, इंसेक्टिसाइड मिनिमम करिए, जैसे भी बता रहे थे, या तो नीम ऑयल डालिए, ठीक है, ऐसी नेचुरल तरीके जो हैं, प्राकृतिक तरीकों से
0: तो सर
2: आपको उनको
0: अनार अनार अनार भी आए थे लास्ट सीजन मगर इस सीजन आए नहीं है, और वो छोटे आए थे अनार
2: आएंगे। अभी आपने गुड़ाई की बात करी थी ना कि साल में एक बार कर, साल में एक बार नहीं, गुड़ाई तो आप हर हर महीने भी कर सकते हो, हल्की हल्की गुड़ाई,
0: अनार का साइज सर बड़ा हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें
2: उसकी
0: क्या क्या
2: गुड़ाई
0: कमी
2: बताया ना,
0: है?
2: गुड़ाई आप उसके करते रहिए महीने में कम से कम एक बार, अच्छी सी जड़ों को हवा लगनी चाहिए, नहीं करते हैं तो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, हवा नहीं लगती जड़ों को, वो भी सांस लेती है हमारी तरह से जड़ें भी।
0: ओके ठीक
2: हाँ
0: है सर
2: सर ने
0: थैंक यू
2: बताया,
0: सर।
2: नींबू का सर ने बताया कि जैसे उसमें जब फूल आते हैं नींबू में ना, तो थोड़ा पानी ज़्यादा मन देना चाहिए उस समय,
0: जी सर
2: थोड़ी
0: थैंक
2: सी
0: यू
2: हाँ
0: सर।
2: उस समय पानी थोड़ा सा सप्लाई रुकी रुकी जाती है, नहीं तो नींबू फिर फूल झड़ते हैं।
1: झड़ता
2: हाँ
1: ठीक है, समझ गए। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएं तो फिर हमें बुलाइएगा, हम आके लेके जाएंगे।
2: ओके अच्छे लगा
1: करेला क्या
2: रखना
1: बात है,
2: जी
1: मतलब
2: जी जी
1: ऐसे बाजार से खरीदना
2: जी
1: और घर का करेला तो
2: जी
1: बात ही
2: जी
1: कुछ और है। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो।
2: कट गया।
1: हाँ कॉल शायद ड्रॉप हो गई राजेश जी, फिर से ट्राई करेंगे, थोड़ा इंतज़ार नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आपने वो मुझे बताया था ना कि नीम का पानी उसमें अगर डाले तो थोड़ा
2: नीम
1: हमकी,
2: का
1: तो
2: नीम
1: उसकी
2: ऑयल
1: फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा
2: 15 दिन
1: था
2: में अंतराल में मैडम
1: कि डाल
2: डाल
1: सकते हैं।
2: सकते हैं, 15 डेज, क्योंकि ये तो हर्बल है, इसमें कोई आजकल मार्केट में मिलता है नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट, तो कोल्ड प्रेस होता है तो आजकल कंपनियां बेचती हैं, तो
1: जी जी
2: उसको हम 15 दिन के अंतराल में डाल सकते हैं, क्योंकि ये मतलब हेल्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है
1: बहुत जी
2: जी
1: जी जी और आपके लिए सही भी है, और मुझे लगता है पौधों के लिए भी
2: जी
1: सही है ना।
2: जी जी
1: एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनकी बात सुन ले। हेलो
3: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं।
1: हेलो
4: हेलो नमस्कार
1: जी।
4: जी
1: जी आपने हमें होल्ड पे डाल दिया, हमें तो बड़ा दुख हो गया वैसे। जी जी बताइए कौन बोल रहे हैं।
4: मैं
1: हेलो।
4: धर्मवीर गांधीनगर से
1: ओ
4: बोल रहा हूँ।
1: धर्मवीर जी कैसे हैं?
4: ठीक हूँ, आपकी आवाज़ सुनी तो और अच्छा हो गया।
1: थैंक यू सो मच धर्मवीर जी, थैंक यू सो मच। और क्या
4: और डॉक्टर साहब जय हिंद
2: जय हिंद जय हिंद रवि धन, बहुत जय हिंद,
0: जय हिंद
2: बहुत
0: जय
2: दिन
0: हिंद।
2: बाद मुलाकात हो रही है आपसे आज
4: हमारे गेंदे के पितामह आए हैं आज प्रोफेसर साहब। डॉक्टर
1: जी
4: साहब एक तो अलग से सवाल ये है कि जो आप बता रहे हो जो उसके ऊपर हमें जाल लगाना चाहिए जिससे धूप कम आए, तो बरसातों में जाल लगा रहने देना चाहिए कि हटा देना चाहिए, ये तो अलग सवाल है।

0: नहीं,
1: मेरा ये
0: बरसात में
1: कहना
0: हटा
1: है
0: सकते हैं उसको।
1: जो पेड़ लगाने की बात कर रही है सरकार, तो ऐसा पेड़ कौन सा लगाया जाए जो सबसे लंबी उम्र तक रहे और फलदायक भी हो और हमारे लिए हेल्दी भी हो, और दूसरा साथ में ये जड़ी बूटी का भी काम करे, नीम तो होता ही है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, जैसे कि अपने पास फुटबॉल लिली है, तो ये फुटबॉल लिली ज्यादा टाइम तक मेरे पास रह नहीं पाता, इसको लंबे टाइम तक चलाने के लिए मुझे फुटबॉल लिली को क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने एक पौधे से 10 पौधे इसके बना लिए और 10 फूल आज की तारीख में मेरे पास आए हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। धन्यवाद।
0: सुनाई नहीं आ रही मुझे।
2: इन्होंने एक साथ बहुत सारे प्रश्न किए हैं तो
3: फुटबॉल लिली के लिए तो बहुत लंबे समय तक चलने का, क्या फुटबॉल लिली का एक लाइफ साइकिल होता है
2: जी
3: धर्मवीर जी, क्योंकि वो लाइफ साइकिल ऐसी है कि पहले इसमें फ्लावर आएगा, उसके बाद उसमें फिर लीफ आएंगे, ये आपने देखा होगा। तो ये जो समर और स्टार्टिंग रेनी सीजन है, यही इसका फुटबॉल लिली का टाइम होता है। इसमें फूल खिले होंगे आपके शायद जो है, तो इसको बहुत लंबा समय तक, तो क्या ये है, एक लाइफ साइकिल को आप बदल नहीं सकते। ये कुछ बल्बस प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां और फूल एक साथ खिलते हैं। ये ऐसा बल्बस प्लांट है जिसमें फूल पहले आता है और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बाद में होती है। तो ये इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते, ये चूँकि इसका नेचर है। तो आप इसका प्लांटिंग मटेरियल रखिए और आप उसको मल्टीप्लाई करिए बेड में और गमलों में, तो ज़्यादा आपके खिलेंगे। एक साथ मास प्लांटिंग में आप लगाइए तो सुंदर लगेगा। और रही बात है कि बहुत लंबे समय तक बड़े वृक्ष वाली जो बात कर रहे हैं, उसमें तो आपके जितने भी हमारे जो देसी वृक्ष हैं उनमें हम आप कोई भी लगा सकते हैं। आम है जो फल देता है, जो फलदार आपको चाहिए तो वो इस तरह के हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे लोकल क्लाइमेट में हमारे सूट करते हों वो हमको लगाने हैं, यदि आप फल की बात करते हैं तो।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है। डॉक्टर
3: जी
1: जैसे कि आप ये फूल हमारे रजनीगंधा के भी आते हैं, तो
3: जी
1: उनको हम अपने गमलों में लगाते हैं, अपने कमरों में लेके घर के,
3: जी
1: तो उनकी लॉन्ग लाइफ फूलों की, मोतिया की और इसके अलावा, और ये फूल कैसे लंबे टाइम तक हम उसकी घर में अपनी, क्योंकि गमले में रहेंगे तो कोई तो हम फायदा नहीं ले पाते, अपने पास रहने चाहिए।
3: हाँ, रजनीगंधा जैसे आप घर में अंदर रखेंगे उसकी, मतलब आप बात कर रहे हैं कि जो फूल को हम हार्वेस्ट
0: कट
3: करके,
0: फ्लावर।
3: कट फ्लावर्स को ना, तो उसमें हम अपने जैसे वास है, फ्लावर वास है जो हमारा गुलदान होता है, उसमें भी हम फूल को रखेंगे रजनीगंधा वगैरह, तो नॉर्मल तरीके से भी रजनीगंधा 7-8 दिन आ जाता है। यदि उसको और बढ़ाना है तो हम उसमें 2% 3% सुक्रोज सोल्यूशन यूज करके और उसकी हम वास लाइफ को और एक्सटेंड कर सकते हैं।
0: उसमें एक ध्यान रखना, पानी में रखेंगे ना
3: जी
0: तो उसका नीचे का जो पोर्शन है डंडी सड़ने लगती
3: हाँ, वो
0: है,
3: कट्स कर सकते
0: तो
3: हैं।
0: उसको 2 दिन बाद निकालिए, और एवरी डे निकाले तो बहुत बढ़िया, थोड़ी सी 1 मिलीमीटर काट दीजिए, पानी को बखेर के नया पानी डाल दीजिए और फ्रेश तो ना ताज़ा करते रहिए, तो सड़ेगा नहीं, नहीं तो सड़ जाता है तो फिर पौधा जल्दी सूख जाता है फूल उसका।
2: और ऐसे मतलब कितनी दूर तक,
0: इतना
2: कितने रह
0: इतना एक एक
2: सकता है?
0: मिलीमीटर
2: नहीं,
0: काटना,
2: कितना रह सकता है अगर हम
0: वो
2: ऐसे?
0: बढ़ेगा 4-5 दिन तो बढ़ ही जाएगा आपका,
2: ओ
0: नहीं तो उसमें
2: वाह,
0: बदबू हो जाती है, रोटिंग हो जाती है, सड़ जाता है सारा, पानी
2: क्या
0: नहीं जा
2: बात है।
0: पाता ऊपर को।
2: देखिए, स्टेबल करने के लिए उन्होंने कितना अच्छा तरीका बताया
1: थैंक
2: है ना?
0: ठीक है धर्मवीर जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
2: ठीक
0: जी।
2: धर्मवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था बल्बस प्लांट्स का, तो मैं सोच रही थी कि और कौन कौन से उसमें हो सकते हैं, प्लांटिंग कैसे कर
3: जी
2: सकते हैं? आपने जिक्र
3: इस
2: किया तो
3: समय,
2: मैं सोच रही थी ये
3: जी
2: प्रश्न लेते चलते हैं
3: जी
2: साथ साथ
3: इस
2: जी।
3: समय मैडम जैसे हमारे जो बरसात का सीज़न आ रहा है और समर मतलब ख़त्म हो रहा है सीज़न, तो हमारा जैसे फुटबॉल लिली है, जेफर लिली है, एमरेलिडिस है, इसके जो एमरेलिस लिली बोलते हैं, तो ये बहुत बढ़िया खिलते हैं, बहुत कम इनकी केयर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। एक बार गमलों में या क्यारी में हमने इन बल्ब को लगा दिया तो ये कहीं से जो नियरेस्ट किसी नर्सरी से, किसी प्लांट सप्लायर से हम बल्ब खरीद लें, उन बल्ब खरीद के और अच्छे से बेड तैयार करके और गमलों को तैयार करके उसमें हम प्लांटिंग कर दें, और ये एक बार हमारा प्लांट लगा दिया, ये बल्ब लगा दिए और फ्लावर खिलेंगे, फिर हमको नेक्स्ट ईयर फिर हमको ख़रीदना भी नहीं है, क्योंकि ये बल्बस प्लांट से जो उसकी ज़मीन के अंदर रहते हैं, इनको हम जियोफाइट भी कहते हैं बॉटनी की भाषा में, तो ये अंदर रहेंगे और हमारा प्लांटिंग मटेरियल अगले बार हमारे जो ग्रोवर्स हैं, जो प्लांट लवर्स, उनको फिर किसी नर्सरी पर डिपेंड नहीं रहना है और इनके अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जेफर लिली जिसको बोलते हैं, जेफरेंथस, वो उसमें सफ़ेद कलर की, येलो कलर की मार्केट में खूब मिलती है और हम इसको लगा सकते हैं, तो ये बहुत मतलब जिसके कम देखभाल करनी है, ज़्यादा केयर नहीं करनी है, पानी भी ज़्यादा नहीं देना है, और पूरे बरसात आपको खिलेंगे।
2: क्या बात है, तो इस तरह से हम उनकी देखभाल कर सकते हैं और उनका ध्यान रख सकते हैं।
0: उनकी खास बात ये कि जब फूल नहीं आता है ना
2: जी,
0: तो उनकी पत्तियाँ हरी रहती हैं सिर्फ जाड़ों को छोड़ के, तो वैसे हरियाली रखती हैं, अच्छे लगते हैं वो पत्तियाँ इनकी। जी जी
2: डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रही थी कि जैसे हम थोड़ा बाहर का भी काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं, प्लांट्स देखने का भी मन करता है, लेकिन फिर हम सोचते हैं अरे ये तो मुरझा रहा है। जैसे समर में तो बहुत ही प्रॉब्लम है, तो हम सोचते हैं कोई माली मिल जाता तो कर लेता, तो माली की आवश्यकता हमें ना पड़े, एक लेमैन अगर उसको कर रहा है तो कौन कौन से टिप्स आप स्पेशल देना चाहेंगे? क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, माली नहीं आता कभी तो अरे ये क्या हो गया, बात फूलों की कर रहे हैं और हमारे फूल मुरझा क्यों रहे हैं। जी
0: नहीं, वो तो यही है जो हम सब चीज़ें अभी बात कर रहे थे, पानी पानी का
2: ध्यान
0: रखना
2: है,
0: खाद का ध्यान रखना है, गुड़ाई का ध्यान रखना है। खास तौर पर जैसे एक सज्जन ने पूछा था, जब पौधा नया लाते हैं वो बहुत मेजर समस्या है, आदमी लेके आता है और वो पता लगा वो 10 दिन में मर गया जी, उसको आपको प्रॉपरली रखना, वो टूटने नहीं चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि बीच बीच में, तो अगर आप दिल्ली में हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इतना बड़ा संस्थान है, बीच बीच में वहाँ आप जाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल देखिए, कुछ सीखिए, कभी कभी हम ट्रेनिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग लीजिए, तो उससे थोड़ा आपका ये प्रैक्टिस करने से ही आता है, तो जितना आप करेंगे उतना आप अच्छा उसको संभाल पाएंगे।
2: बहुत सही कहा आपने, आपने ट्रेनिंग की बात की, प्रशिक्षण की बात की है, तो मैं सोच रही थी कि इस पे एक प्रश्न भी आपसे पूछते चलूँ कि जैसे कोई नया सोच रहा है कि हमें प्लांट्स पे कुछ तो घर के होते हैं जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली करना चाहते हैं उसको अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण लेना ज़रूरी होता है तभी वो कर सकते हैं? जैसे गेंदे की बात करें, गेंदे का करना हो, उन्हें व्यवसाय शुरू करना हो, तो
3: उसके लिए मैडम ये है कि हम जब हम कहाँ पर रह रहे हैं उस लोकलिटी में, जैसे दिल्ली के लोगों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है, वहाँ के पुष्प कृषि विज्ञान संभाग से जाकर, पुष्प जो विभाग है पुष्प विज्ञान विभाग, वहाँ जा कर के हम सब वहाँ के विभाग अध्यक्ष संपर्क करके हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, और जो नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय नज़दीक है, जैसे नज़दीक यहाँ मेरठ कृषि विश्वविद्यालय है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय वहाँ पे, तो ये हमें जो भारतीय कृषि संस्थान है, एग्रीकल्चर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, केवीके है, उन के माध्यम से हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। वहाँ विषय विशेषज्ञ की दिशा निर्देशन में जो हमको प्रशिक्षण प्राप्त होता है तो वो हमेशा हमारे जो है लाभदायी होता है। तो ये उनके 1 वीक के ट्रेनिंग कोर्स भी चलते हैं और उनके कोर्स चलते भी रहते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं, यदि हम उनके संपर्क में रहेंगे तो हम ट्रेनिंग कर लेंगे और ट्रेनिंग करके हम अपना जो है उद्देश्य पूरा कर सकते हैं।
2: जी अब हमारी स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि लगभग लगभग जाने का समय हो रहा है, तो जो हमारा आज का विषय है उस पर हमारे किसान भाइयों को या हमारे जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैसेज यही देना चाहेंगे, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा था उस पर हमने चर्चा करी कि कैसे हम पौधों की देखभाल करें, और मैं अब आगे ये कहना चाहूँगा कि अभी समर जो बरसात की फसल है वो आने वाली है
2: जी, जी, जी।
0: और समर जाने वाली है, कभी कभी बूंद पड़ रही भी है, ह्यूमिडिटी आप देखो बैटर में थोड़ा थोड़ा ह्यूमिडिटी में फ़र्क थोड़ा पड़ा है
2: जी, जी, जी।
0: तो अगली फसल की तैयारी शुरू कर दें, जिन भाइयों को गेंदे की खेती करनी है वो अभी नर्सरी डालने का समय आ गया है, उचित प्रजाति का बीज खरीद के अच्छी जगह से ले लें और नर्सरी की बेड बना दें, अभी बना के 10-15 दिन रही खाद गोबरी खाद डाल के छोड़ दें, जैसी बरसात होगी 1 जुलाई में आप सीड की बिजाई कर सकते हैं। और दूसरी फसलें हैं जो उनका प्रोपोगेशन की हम बात कर रहे थे, बरसात में ही इनका प्रवर्धन बहुत अच्छा होता है बरसात में, तो उनको आप बेस्ट टाइम है, तो उनको जैसे कुछ गुच्छों में होते हैं ना पौधे, उनको अलग अलग करके लगा देते हैं, सेपरेशन उसको बोलते हैं, कुछ कटिंग से लगते हैं, तो उनको आप ये सही समय लगाने का है, तो उसके लिए अब आपने तैयारी कर लें, जो भी उनका मीडिया है आपको ट्रे में करना है या ज़मीन में करना है उसकी तैयारी कर लें, जैसे ही मौसम बारिश होगी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरा किसान भाइयों को या फूल जो उत्पादक हैं उनके लिए अभी मेरी तरफ से सुझाव है।
2: आपके अनुभव के हिसाब से आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब, आप चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी मैं कहना चाहूँगा जैसे सर ने बताया, उसके बाद बहुत सारे पौधे हैं जैसे हमारे क्लाइंबर्स हैं, श्रब्स में जैसे बोगनविलिया है, बोगनविलिया बहुत लगाते हैं हमारे किसान और जो प्लांट ग्रोवर्स हैं, उसमें ईयर लेयरिंग का बड़ा अच्छा समय है जुलाई में, उसमें हम ईयर लेयरिंग गुटी बांध करके प्रोपेगेट कर सकते हैं। जैसे कामनी का पौधा होता है जिसको हम मनोकामनी कहते हैं मुराया, वो सेंटेड फ्लावर देता है सर, उसमें भी हम गुटी, तो ये जो समय है कटिंग्स का, बहुत सारे हमारे इंडोर प्लांट्स हैं जैसे एग्लोनिमा है, ये आपका डिफेनबेकिया है, इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं आपकी, ये हमारी कटिंग तैयार कर सकते हैं, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं।
2: जी जी जी, तो तैयारी हो गई, अब आपको करना है और उसके बाद हमें अगली बार कॉल करना है, अब जाने का समय हो गया। डॉक्टर कृष्ण सिंह तोमर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कंवरपाल सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
2: और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे, बात फूलों की। कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंब कम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
5: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन्डर लाइन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इसमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका और इसराइल के सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The French city of Evian remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life. Highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia, Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Union Home Minister Amit Shah has paid tributes to the third Sar Sangh Chalak of the Rashtriya Swam Sevak Sangh, Bala Saheb Deoras, on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said that Bala Saheb Deoras dedicated his life to national service, social harmony and the character building of the youth and considered untouchability to be the greatest curse. Lok Sabha Speaker paid tributes to the valiant hero Maharana Pratap on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Birla said that the life of Maharana Pratap is an immortal saga of unwavering self-respect, self-esteem, freedom and national devotion. He added that even in the most adverse circumstances, Maharana Pratap never compromised on his principles, culture and the honour of motherland. The Lok Sabha Speaker underlined that from the battlefield of Haldi Ghati to the impenetrable hills of Devar and Aravali, the life of Maharana Pratap stands as a unique example of sacrifice, patience and indomitable willpower. World Day to Combat Desertification and Drought is being observed today globally. The theme for this year is Rangelands, Recognize, Respect, Restore, which calls for greater recognition of the economic, ecological and cultural value of rangelands, respect for their traditional stewards and stronger investment in restoring degraded rangelands. On this occasion, Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav urged all to remember that land is the foundation of all ecosystems and the source of our nutrition and energy cycles. The price for a barrel of Brent crude fell 5.4% to $78.66. With this, the oil prices dipped below $800 per barrel for the first time since March this year. The dip comes amid optimism continuing that a tentative US-Iran deal on their war will reopen the Strait of Hormuz at the end of the week and get the global flow of oil going again. In the wake of US and Israeli strikes on Iran beginning 28th of February, crude oil prices skyrocketed, climbing up to nearly $120 per barrel. In men's cricket, India A were 115 for 1 in 14.4 overs against Afghanistan A in Tri-Nation A series at the Rangiri Dambola International Stadium in Sri Lanka when reports last came in. Earlier, Afghanistan A won the toss and opted to field first. Tilak Verma-led Indian side have managed to win only one out of three matches in the series. In their last encounter, India A faced a dramatic defeat by Sri Lanka A. And that is the end of this news bulletin.
8: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरमंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित राजीव वर्मा द्वारा सितार वादन राग जौनपुरी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना पंडित राजीव वर्मा द्वारा सितार वादन, राग था जौनपुरी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNH राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

घर आंगन। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है और हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। बस जरूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की, जो अक्सर हमारी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। तो आइए कुछ पल निकालते हैं अपने लिए और सजाते हैं इस महफिल को प्रेरणा, मुस्कान, जानकारी और मधुर गीतों के रंगों से। मैं हूं आपके साथ इस सफर के रेडियो हम सफर सोनाली और आप सुन रहे हैं, जी हां, कार्यक्रम घर आंगन। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे गीत से जो यकीनन आपके मन को छू जाएगा।

फिल्म मिलन में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। और देखिए परदेसी तो हम आपको बिल्कुल होने नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, कहाँ जी हाँ घर आंगन में। और आप हमारे साथ जुड़ते कैसे हैं? आप हमारे साथ जुड़ते हैं एक ईमेल के ज़रिए जो है fmgold@gmail.com। तो बस आप हमारे साथ और दूर ना रहिए, अपनी बातें, अपनी सारी जो भी शिकायतें हैं, जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी हमारे लिए प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप जाहिर कर सकते हैं अपने ईमेल के माध्यम से। तो इंतजार रहेगा आपकी ईमेल्स का। दोस्तों आज है 17 जून 2026, दिन है बुधवार। तो ये तो हुआ कैलेंडर के हिसाब की तारीख, लेकिन आज हिंदू पंचांग के अनुसार एक ऐसी तिथि है जिस दिन को हम बहुत ज़्यादा फख्र से और गर्व से याद करते हैं। दोस्तों इतिहास केवल बीते समय की घटनाओं का संग्रह नहीं होता, इतिहास हमें यह भी बताता है कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति कैसे निर्णय लेता है, अपने बुलियों की रक्षा कैसे करता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी मिसाल छोड़ता है। जी हाँ, भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप ऐसा ही एक नाम है जिनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हिंदू पंचांग की तिथि अनुसार आज शूरवीर महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती है और आज उनकी इस जयंती पर राष्ट्र उन्हें शत शत नमन करता है। और उनके लिए कुछ मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ रखना चाहूँगी। सूर्य झुका झुक गए कलाधर, सूर्य झुका झुक गए कलाधर, झुके गगन के तारे, निखिल विश्व के शीश झुके न झुके प्रताप तुम प्यारे। जी हाँ, हम यहाँ से महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और आशा करते हैं उनके कार्यों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की मिट्टी ऐसी है जिसने हमेशा बहुत अलग अलग उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। भले ही शूरवीरों की बात हो, तो वहाँ की जो वीरांगनाएं हैं वो भी किसी से कम नहीं है। वो भी हमेशा अपने जीवन में ऐसे ऐसे अदम्य, ऐसे ऐसे साहसिक और ऐसे ऐसे काम करती हैं जो समाज के लिए एक प्रेरणा और एक उदाहरण बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही महिला की जिनके बारे में मैं आपके साथ अब यहाँ पर कुछ बातें साझा करना चाहूँगी। क्योंकि कहते हैं कि सपनों को उड़ान देने के लिए बड़े साधनों की नहीं, बड़े हौसलों की ज़रूरत होती है। राजस्थान की जो रुमा देवी हैं, उन्होंने सुई धागे को सिर्फ रोज़गार का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे हज़ारों ग्रामीण महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की डोर बना दिया। राजस्थान के बाड़मेर जिले की रुमा देवी का जीवन भी किसी साधारण ग्रामीण महिला की तरह ही शुरू हुआ था। कम उम्र में विवाह हुआ, सीमित शिक्षा और जीवन की कई चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी अपने हुनर का साथ नहीं छोड़ा। उन्हें कढ़ाई और हस्तशिल्प का काम आता था और यही हुनर आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। रुमा देवी ने अपने हाथों की कला को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने गाँव की दूसरी महिलाओं को भी साथ जोड़ा और उन्हें कढ़ाई व हस्तशिल्प के काम से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका ये जो प्रयास है वो एक कारवा बन गया दोस्तों, और जिन महिलाओं की दुनिया कभी घर की चौखट तक सीमित थी ना, वे अपने हुनर के दम पर नई पहचान बनाने लगी। शायद रुमा देवी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिन हाथों से वे रंग बिरंगी कढ़ाई करती हैं, वही हाथ एक दिन हजारों महिलाओं के सपनों में भी रंग भर देंगे। आज उनके साथ जुड़कर राजस्थान की हजारों महिलाएं अपने हुनर को देश और दुनिया तक पहुंचा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2018 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि उन महिलाओं के चेहरे की मुस्कान है जिन्होंने अपने हुनर पर भरोसा करना सीखा। रुमा देवी की कहानी दोस्तों हमें ये भरोसा दिलाती है कि बदलाव हमेशा बड़े मन

से नहीं शुरू होता, कई बार एक सुई, एक धागा और एक महिला, इनका हौसला ही हजारों जिंदगियों में उम्मीद के नए रंग भरने के लिए काफी होता है।

फिल्म गहरी चाल। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। अब देखिए, हम राजस्थान से तो हो आए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखिए, हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और आजकल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। हम भले एक्सरसाइज करें, और आजकल लेकिन एक चीज़ का सबसे ज़्यादा चलन है, और वो है योग। दोस्तों, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया नहीं होता, बल्कि जीवन में संतुलन बनाने की एक सुंदर कला है। खासकर महिलाओं के लिए जो एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती हैं, योग उनको खुद से जुड़ने का एक सरल और सहज रास्ता बन सकता है। घर हो या ऑफिस, महिलाएं अक्सर परिवार, काम और रिश्तों के बीच अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाती हैं, लेकिन इस भागदौड़ में कई बार वे अपनी ज़रूरतों और अपने स्वास्थ्य को सबसे आखिर में रख देती हैं। ऐसे में योग हमें याद दिलाता है कि दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अब देखिए, योग का जो मतलब होता है वो सिर्फ व्यायाम नहीं होता, ये अपने मन को शांत करने, अपनी सांसों पर ध्यान देने और कुछ पल अपने लिए निकालने की एक प्रक्रिया है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में लोग योग को सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि बेहतर जीवन शैली का हिस्सा मान रहे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है दोस्तों कि नियमित योग और ध्यान तनाव को कम करने, मन को शांत रखने और जीवन में पॉजिटिविटी लाने में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। शायद योग की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह हमें कुछ देर के लिए रुकना सिखाता है, अपनी सांसों की आवाज़ सुनना सिखाता है, और यह एहसास दिलाता है कि जीवन के व्यस्त राहों में खुद के लिए कुछ पल निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मन संतुलित होता है तो जीवन की चुनौतियाँ भी थोड़ी आसान लगने लगती हैं। और शायद यही योग का सबसे बड़ा संदेश है, खुद से जुड़िए ताकि जीवन से बेहतर जुड़ सकें।

0: देविका, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
1: हरिओम, मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है। मैं एक योग शिक्षक और एक योग विद्यार्थी हूँ।
0: तो देविका, सबसे पहले ये बताएं, आजकल जो बच्चे हैं, देखिए सवेरे उठे, दूर स्कूल है, तैयार हुए, स्कूल चले गए, आए, थोड़ा बहुत कुछ खाया, नहीं खाया, हाथ में लिया कुछ ना कुछ स्क्रीन, या चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन हो। तो क्या ये लाइफस्टाइल सही है?
1: स्क्रीन टाइम बच्चों का हो, मैं मना नहीं कर जाता है, उनको पता ही नहीं होता उनको करना क्या है।
0: तो
1: तो
0: ये सब चीज़ें ना हो तो क्या दिनचर्या होनी चाहिए बच्चों की?
1: बच्चों की लाइफ में मैं ये नहीं कहूँगी आप स्पोर्ट्स जोड़िए, क्योंकि बच्चे योगा की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। उनका यही सोचना है सांस लेना सांस छोड़ना, इट्स टू बोरिंग। तो नो,
0: लेकिन
1: उनको
0: सांस लेने से ही जिंदगी चलती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: अभी वो इतने नहीं समझदार, तो आप उनको योगा कराएं, आप उनको उनके तरीके से योगा कराएं,
0: किस
1: पर
0: तरीके
1: योगा
0: से योगा
1: कराएं
0: कराए?
1: ज़रूर, इंटरेस्टिंग बनाइए योगा को,
0: जी
1: स्पोर्ट्स के नज़रिए से कराइए। स्कूल में उनको पार्टिसिपेट दिलवाइए योगा कंपटीशन में, ताकि वो कॉम्पिटिशन्स के लिए सही, पर वो योगा करना शुरू करे, उनका इंटरेस्ट बन जाएगा, वो अपने लाइफ में उसको उतार लेंगे। धीरे धीरे वो समझने लगेंगे कि योग क्या है, वो खुद ब खुद लाइफ में उतार लेंगे। बहुत बच्चों का योग में इंटरेस्ट नहीं होता, आप उनको स्पोर्ट्स करवाइए। आप उनको, मैंने देखा है पेरेंट्स को
0: क्रिकेट खिलवाएं, वॉलीबॉल
1: बिल्कुल
0: खिलवाएं, फुटबॉल

0: कोई ना कोई ऐसा होता ही है, पेरेंट या कोई ना कोई ऐसे टीचर भी कई पार्कों में जुड़े हुए हैं जो कि योग करवा रहे हैं बच्चों को,
1: बिल्कुल,
0: चाहे उसका रूप बदल कर हो।
1: बच्चों के लिए आपको योग का रूप थोड़ा तो बदलना ही पड़ेगा।
0: जी
1: आप उन्हें समझाएंगे कि बेटा योग ये है, बेटा योग ऐसे बेनिफिशियल है, योग में ये चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली बोर हो जाएगा।
0: और पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बहुत सारे स्कूलों में
1: बिल्कुल
0: योग पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है, जो कि वाकई बच्चों के लिए बहुत ही कारगर है। और हम देखते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ही पहले से बेहतर होता है।
1: बिल्कुल
0: एक समस्या जो आती है कि हम देखते हैं कभी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं पर बच्चों का ध्यान कहीं और है। आप उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कूल का काम करे, लेकिन देख रहे हैं कभी बच्चा यहाँ देख रहा है, कभी वहाँ देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है,
1: बिल्कुल
0: एकाग्रता नहीं है। तो एकाग्रता के लिए योग किस प्रकार बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है?
1: एकाग्रता के लिए बच्चों को योग तो कराना ही है। दूसरी चीज, उनको एक अलग से छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए आपको उनका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
0: जी
1: कोशिश कीजिए स्क्रीन टाइम कम हो, सबसे बड़ा रीजन। दूसरा, खाने में कुछ चीजें ऐसी दीजिए जो वो खुशी से खाएं, क्योंकि तोरी और टिंडे देख के हमें भी दिक्कत हो ही जाती है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ पार्ट खाने का ऐसा रखिए, अगर पॉसिबल है तो, कि वो खुश होके खाएं, तो वो फोन भूल जाएंगे उसके आगे
0: मुझे
1: पसंद
0: लगता है
1: है।
0: जो बच्चे सुन रहे हैं वो बड़े खुश होंगे कि मैम कह रही है तोरी टिंडे में उन्हें भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं ये बता दूं वो खुद तोरी टिंडे अच्छे से खाती हैं,
1: नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि
0: टिंडे।
1: पनीर जो

की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय

और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पहुँचते ही ना देवदार के ऊंचे पेड़, पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा और पार्वती नदी का मधुर संगीत आपका स्वागत करते हैं। और यही वजह है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। अगर आप भी कसोल घूमने का मन बना रहे हैं ना, तो कुछ बातें आपके काम आ सकती हैं। मसलन कसोल जो है वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में स्थित है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। फिर ना सबसे नज़दीक इसका जो हवाई अड्डा है वह भुंतर एयरपोर्ट, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। दिल्ली और चंडीगढ़ से बस या निजी वाहन द्वारा आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। घूमने का जो सबसे अच्छा समय है वो मार्च से जून, मतलब जून बस ख़त्म होने वाला है, तो अभी भी आपके पास वक्त है, तो ज़रूर अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो एक तो मार्च से जून का समय

फिल्म जाग उठा इंसान में आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा डाकघर जो ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता हो। सुनने में भले ही यह किसी कहानी जैसा लगे लेकिन भारत में ना एक ऐसा डाकघर सच में मौजूद है। कश्मीर की खूबसूरत डल झील में स्थित यह तैरता हुआ डाकघर दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। डल झील में बने इस अनोखे डाकघर की शुरुआत 2011 में की गई थी। एक पुराने हाउस बोट को डाकघर का रूप दिया गया था और आज ना ये कश्मीर की पहचान का एक खास हिस्सा बन चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले पर्यटक सिर्फ डाक टिकट नहीं खरीदते हैं बल्कि अपनी प्रियजनों को पोस्ट कार्ड भी भेजते हैं। सोचिए किसी को ऐसी चिट्ठी मिले जिस पर डल झील के तैरते हुए डाकघर की मोहर लगी हो तो वह कितनी खास याद बन जाएगी ना। और अगर आप कभी कश्मीर जाएं तो इस अनोखे डाकघर को अपनी यात्रा सूची में ज़रूर शामिल करें क्योंकि ना एक तो ये यहाँ की प्रसिद्ध डल झील में स्थित है और ये दुनिया के अनोखे और चुनिंदे तैरते हुए डाकघरों में गिना जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक छोटा सा डाक संग्रहालय भी है जहाँ पुरानी डाक टिकट इतिहास से जुड़ी उनकी रोचक जानकारियाँ ये सब आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप जाकर विशेष स्मारक डाक सामग्री भी खरीद सकते हैं और पोस्ट कार्ड तो खैर खरीद ही सकते हैं। तो आज भले ही दोस्तों संदेश कुछ ही सेकंड में मोबाइल पर पहुँच जाते हों लेकिन हाथ से लिखी गई चिट्ठियों का अपना एक अलग ही आकर्षण था और है और रहेगा। शायद यही वजह है कि डल झील का यह जो तैरता हुआ डाकघर है ना कि आज भी लोगों को चिट्ठियों के उस खूबसूरत दौर की याद दिलाता है जब शब्दों के साथ इंतज़ार भी भेजा जाता था।

बेमिसाल फिल्म से आप सुन रहे हैं ये गाना जिसे गाया सुरेश वाडकर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। अब दोस्तों ये घड़ी जो है ये हमें और अनुमति नहीं देती कि आपके साथ बातों का सिलसिला और जारी रखें, तो बस इस कार्यक्रम से आज मुझे यानी आपके रेडियो हमसफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के

0: आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लु और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Avignon in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. This will be the first face-to-face interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in February 2025. During the talks, both sides are expected to deliberate on ways to further strengthen India-US bilateral cooperation across multiple sectors, along with discussions on key regional and global issues of mutual interest. The Prime Minister will also attend a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All. The session will include G7 member countries, partner nations, as well as representatives from the International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and Development. Besides his meeting with the US President Donald Trump, Mr. Modi will participate in a working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting will bring together G7 leaders, partner countries and chief executive officers of leading artificial intelligence companies to discuss the future of digital innovation and responsible AI development. On the sidelines of the summit, PM Modi is also scheduled to hold bilateral meetings with European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Friedrich Merz. Later, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as part of his visit to France. Tomorrow morning, Prime Minister Modi is scheduled to hold meetings with leading chief executive officers. Later, he will participate in the WeaverTech Summit. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. The Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land, advanced indigenous technologies. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called on Prince Albert II of Monaco. In a social media post, Mr. Goyal said that during their meeting, they discussed expanding the India-Monaco partnership in sectors such as sustainability, the blue economy, innovation and emerging technologies. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan and Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level inter-ministerial meeting in New Delhi to review stubble management measures and discuss long-term solutions to crop residue burning. During the meeting held yesterday, Mr. Chauhan highlighted the role of active monitoring by the Stubble Protection Force across 70 tehsils in 14 districts of the National Capital Region. In Puducherry, 3 new ministers were inducted into the cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kolundhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. In FIFA World Cup 2026, Austria won its first World Cup victory in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Earlier defending champions Argentina also began their World Cup campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है आपके और हमारे हम सभी के मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। और आज मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सिनेमा के उस सुनहरे दौर की एक और अनकही अनसुनी दास्तान। दोस्तों, साल था 1963, उस दौर में जब पर्दे पर प्यार और संगीत की नई परिभाषाएं लिखी जा रही थी, तब एक ऐसी फिल्म आई जिसने दर्शकों को हंसाया भी और रुलाया भी और साथ ही साथ गुनगुनाने पर मजबूर भी कर दिया। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ राज कपूर और नूतन की फिल्म क्लासिक फिल्म दिल ही तो है की। लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी, उतने ही दिलचस्प इसके बनने के पीछे के किस्से हैं। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं इस फिल्म की लाजवाब स्टार कास्ट और इसकी कहानी की ओर। साथियों, फिल्म में मुख्य भूमिका में थे बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर और उनके साथ थी अपनी संजीदा अदाकारी के लिए मशहूर हीरोइन नूतन। जी हाँ साथियों, कहानी है यूसुफ यानी राज कपूर की, जो एक अमीर घराने के लड़के हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर एक शायर और कव्वाल चांद बनकर रहते हैं।

दोस्तों, चांद को मोहब्बत हो जाती है जमीला नाम की एक लड़की से जो कि नूतन है। झूठी पहचान, गलत फहमियाँ और फिर उस प्यार को पाने की जद्दोजहद। रावलपिंडी के बैकड्रॉप पर बनी यह एक मुकम्मल म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी।

दोस्तों, राज कपूर का ओल्ड मैन लुक, क्या आप जानते हैं? इस फिल्म में राज कपूर ने सिर्फ एक कव्वाल का ही नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी का भेष भी बदला था। उनका यह गेटअप इतना परफेक्ट था दोस्तों कि सेट पर जब वो पहली बार गए तो उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाया था।

साथियों, मन्ना डे और शास्त्रीय संगीत का जादू। दोस्तों, इस फिल्म का एक गाना जो अभी हमने आपको सबसे पहले सुनवाया था, लागा चुंदरी में दाग, संगीतकार रोशन साहब ने जब मन्ना डे को यह गाना ऑफर किया तो मन्ना डे पहले घबरा गए थे, क्योंकि यह एक बेहद कठिन शास्त्रीय बंदिश पर आधारित था गाना। लेकिन अब उन्होंने गाया तो यह गाना एक इतिहास बन गया। साहिर लुधियानवी की शायरी, इस फिल्म के गीत महान शायर साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का टाइटल जो है दिल ही तो है, असल में मिर्ज़ा गालिब की एक मशहूर गज़ल से प्रेरित था।

साथियों, अमूमन देखा गया है कि प्राण साहब का जो फिल्मों में किरदार होता है वो थोड़ा सा खतरनाक विलेन का होता है, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में उन्होंने शेखू का ऐसा किरदार निभाया जो थोड़ा सा कॉमिक था और थोड़ा बहुत विलेनियस भी था। राज कपूर और प्राण की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इस फिल्म में देखने लायक थी।

तो दोस्तों, अगर आपने 1963 की यह मास्टरपीस फिल्म दिल ही तो है अब तक नहीं देखी है तो आप ज़रूर इसे देखिएगा। इसमें राज कपूर की मासूमियत और नूतन की सादगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी।

दोस्तों आज के सफ़र में बस इतना ही, तो इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमनदीप। पहला चुनावियां खबरां। G7 शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप नाल मुलाकात करनगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दहाके विच भारत दीआं रक्षा समर्थाओं विच महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्तीय साल 2025-26 विच भारत दा सालाना रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ रुपए दे सब तो उच्चे पद्धर ते पहुंच गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 12 सालों में नागरिकों की सुरक्षा से दुश्मन की तबाही लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाया गया है। ICC महिला 2020 विश्व कप क्रिकेट मैच में आज भारत का नीदरलैंड से मुकाबला होगा। G7 शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप नाल मुलाकात करनगे। इस मुलाकात ते सब दियां नजरां ने भारत G7 सम्मेलन विच इक भाईवाल देश है। श्री मोदी ते श्री ट्रंप विचकार आखिरी मुलाकात पिछले साल फरवरी च अमरीका च होई सी। अज दी मीटिंग विच दोवें धिरां विचकार कई खेतरां विच सहयोग नूं मजबूत करन ते आपसी हित दे खेतरी ते आलमी मुद्दयां ते व्यापक चर्चा होण दी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज एक होर G7 सैशन विच भी हिस्सा लैणगे। इसका विषय सारयां दे लाभ लई संतुलित समावेशी अते निरंतर आर्थिक विकास नूं मुड़ शुरू करना। ओह मुद्रा फंड नूं सुरक्षित तेज अते प्रभावशाली ढंग नाल लागू करन ते एक वर्किंग लंच विच भी शामिल होणगे। कल शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री ने कैनेडा

0: प्रधानमंत्री मार्क कारने, बरतानिया के प्रधानमंत्री कीर स्टामर अते यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन नाल मुलाकात की। उन्होंने केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिसर के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग नाल भी मुलाकात की। श्री मोदी अज शामी फ्रांस की राजधानी पैरिस पहुंचणगे। साडे पत्रकार ने खबर दिती है कि भारतीय भाईचारा प्रधानमंत्री की बेसबरी नाल उड़ीक कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले दहाके विच भारत दी रक्षा समर्थावां विच आत्म निर्भरता ते नवीनता ते तकनालोजी ते स्वदेशी निर्माण की सहायता नाल महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मां ते माई गोव तों एक पोस्ट सांझी करदिआं प्रधानमंत्री ने इस गल ते चानणा पाया कि किवें भारत ने उन्नत स्वदेशी तकनालोजियां की सहायता नाल जमीन, समुंदर ते हवा विच अपनी रक्षा समर्थावां नूं मजबूत कीता है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव स्पष्ट तौर पर दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्तीय साल 2025-26 में भारत का सालाना रक्षा उत्पादन 178,000 करोड़ रुपए के सब तो उच्चे पद्धर पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह प्राप्ति पिछले वित्तीय साल में 154,000 करोड़ रुपए के उत्पादन के मुकाबले 15% के प्रभावशाली वाधे नूं दर्शाउंदी है। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्तीय साल 2013-14 में 4,746 करोड़ रुपए के मुकाबले 4 गुणा वध गया है। राष्ट्रीय महत्ता की एक प्रमुख संस्था पंजाब ने फुटवेयर डिजाइन एंड डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI नाल एक रणनीतिक समझौता पत्र ते दस्तखत करके अपने खेडां दे समान, जुत्तियां ते चमड़े दे समान दे खेतर नूं मजबूत करन वाले एक महत्वपूर्ण कदम चुक्या है। पंजाब दे उद्योग ते वणज विभाग वल्लों हस्ताक्षर कीते गए समझौते दा उद्देश इन्हां खेतरां विच उद्योगां नूं आधुनिक टैस्टिंग बुनियादी ढांचे, हुनरमंद मनुखी शक्ति, डिजाइन ते नवीनता सहायता ते मजबूत बाजार संबंधां तक पहुंच प्रदान करना है। इस साझेदारी नाल पंजाब आधारित सूखम, छोटे ते दरमियाने उद्यमां दी मुकाबलेबाजी दे वधण दी उम्मीद है, जिस नाल ओह राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेनां नाल जुड़ सकणगे। इस नाल उन्हां नूं बरामद वधाउण दी वी उम्मीद है। इस समझौते ते उद्योग अते वणज विभाग दे डायरैक्टर जसप्रीत सिंह अते FDDI दे प्रबंध निर्देशक विवेक शर्मा ने दस्तखत कीते। इस पहलकदमी नाल सूबे विच सनअती विकास नूं हरारा मिलन, नवीनता नूं उत्साहित करन अते रुजगार अते बरामद लई नवे मौके पैदा होण दी उम्मीद है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुण रहे हो। भारत ने पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूर अंदेश अगवाई हेठ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांतों राही संचालित एक शानदार तब्दीली की है। इस समय दौरान मोदी सरकार ने गरीबां, किसानां, औरतां ते नौजवानां दी भलाई अते शक्तिकरण लई कई प्रमुख पहलकदमियां कीतियां ने। आकाशवाणी खबरां वल्लों तुहाडे लई पिछले 12 सालां विच मुख खेत्रां विच सरकार दीआं कोशिशां ते इक विशेष कड़ी पेश कीती जा रही है। अज असीं देश दे विरसे दी संभाल ते प्रचार लई सरकार वल्लों चुके गए कदमां बारे गल करांगे।
1: पिछले 12 सालां विच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दी अगवाई हेठ भारत ने अपनी सभ्यता दे विरसे नूं सांभण, प्रचार करन अते इस दा जश्न मनाउण लई कई महत्वपूर्ण पहलकदमियां कीतियां ने, जिस नाल लखां नागरिकां विच माण दी भावना पैदा होई है। सब तो महत्वपूर्ण पलां विचों इक जनवरी 2024 विच आया जदों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या दे विशाल श्री राम मंदिर विच राम लला दी प्राण प्रतिष्ठा कीती, जो कि इक सदियां पुरानी इच्छा दी पूर्ती नूं दर्शाउंदी है। आकाशवाणी खबरां नाल गल्लबात करदिआं इक शरधालु कच जरिया ने, जिसने हाल ही विच मंदिर के दर्शन किए ने, अपना अनुभव साझा किया।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन विच महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला पड़ा अक्टूबर 2022 विच राष्ट्र नु समर्पित।

0: बहुत से शोबों में भारत अमेरिका दोतरफा तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों और बाहमी मफाद के कलीदी नौइयत के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादलाए ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म एक वर्किंग जलसे में भी शिरकत करेंगे जिसका मौजू है सभी के मफाद के लिए मुतवाजन सबकी शमूलियत वाली और पायदार इकतसादी तरक्की को फ़रोग देना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के अलावा जनाब मोदी एक वर्किंग लंच में भी शिरकत करेंगे जिसका मौजू है मस्नूई जहानत से महफूज तेज़ रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुँचेंगे। भारतीय बिरादरी के अरकान उनकी आमद के मुंतजर हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ जारी हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई साजो सामान की सालाना तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान
1: अभी तक का 1.78 लाख करोड़
0: रुपए का इजाफा हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इस अहम हुसूलियाबी से पिछले साल की 1.54 लाख करोड़ रुपए की पैदावार के मुकाबले 15.6% तरक्की का इजहार होता है। ये तरक्की माली साल 2020-21 से अब तक की 110% है जब ये तरक्की महज 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क ही में तैयार किए गए दिफाई साजो सामान की मकदार में माली साल 2013-14 के मुकाबले तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है जो महज 4,746 करोड़ रुपए था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों तक से भारत ने एक वाज़े पैगाम भेजा है कि उसकी खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में इसकी कौमी सलामती के ताने बाने में एक तारीखी तब्दीली आई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता के लिए मुल्क के अज़्म से मुल्क की सलाहियतों को इस्तेहकाम मिला है। फौजें जदीद बनी हैं और जमीन समंदर फजा साइबर और खला के शोबों की तैयारियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वजीर दिफा ने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल के सफर से एक मजबूत तर महफूज तर खुद कफील और मजीद पुरेतमाद भारत की अक्कासी होती है जो अपने कौमी मफादात की हिफाजत के लिए तैयार है और एक कायदाना आलमी ताकत के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि पिछली दहाई के दौरान भारत की दिफाई सलाहियतों में खातिर खा इजाफा हुआ है। ये इजाफा खुद किफालत के नज़रिए की रहनुमाई में हुआ है जिसे इख्तिरा टेक्नोलॉजी और साजो सामान को मुल्क ही में तैयार किए जाने से तकवियत मिली है। जनाब मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माइक ऑफ के जरिए पैगाम भेजते हुए वजाहत की है कि मुल्क ने किस तरह फजा जमीन और समंदर में अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत किया है, मुल्क ही में तैयार की गई टेक्नोलॉजीज को जदीद तरीन बनाया है और खुद इन्हिसारी और कौमी सलामती के लिए एक मजबूत तर बुनियाद की तामीर की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की तरक्की की एक झलक मिलती है जो उसने पिछले 12 साल में दिफा के शोबे में हासिल की है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। ज़राती और डब्बा बंद ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में इजाफे से मुतालिक तंजीम के चेयरपर्सन अभिषेक देव ने बताया कि अमरीका ब्राज़ील चीन और यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े आलमी बरामदकारों से मुकाबले के बावजूद भारत की ज़रई बरामदात आज 5,000 मसनूआत पर मुश्तमिल हैं जो एक दहाई कबल तकरीबन 280 मसनूआत पर मुश्तमिल थीं। जनाब देव ने बताया कि मुल्क की ज़राती बरामदात गुज़श्ता साल 53 अरब डॉलर तक पहुंच गईं और भारत ज़राती मसनूआत बरामद करने वाले टॉप 10 मुल्कों में शामिल रहा। नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की 8वीं ब्रिक्स मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत वर्चुअल वसीले से मुनक्किद की गई। नशीली अशिया के कंट्रोल के ब्यूरो एनसीबी ने बताया कि भारत चीन इथियोपिया इंडोनेशिया रूस जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के मंदुबीन ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान मंदुबीन ने नशीली अशिया की कौमी सूरतेहाल से मुतालिक रिपोर्ट्स एक दूसरे के सुपुर्द की और नशीली अशिया से लाहिक खतरात पर बातचीत की। जमीन के बंजर होने और खुश्कसाली की रोकथाम का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन जमीन के बंजर होने की रोकथाम और खुश्कसाली के असरात से निमटने के लिए बैनुल अक्वामी तआवुन से मुतालिक बेदारी में इजाफे के मकसद से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है सरसब्ज जंगलाती जमीन, तस्लीम कीजिए, एहतराम कीजिए और बहाली कीजिए। इस मौजू के तहत सरसब्ज जंगलाती जमीन की इक्तिसादी, माहौलियाती और सकाफती कदर को और ज्यादा तस्लीम किए जाने, इसके रिवायती फवायद की बुनियाद पर इसका एहतराम किए जाने और जो जमीन बंजर हो गई है उसकी बहाली में काफी ज्यादा सरमाया लगाए जाने की बात कही गई है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी से ये याद रखने को कहा है कि जमीन तमाम तर माहौलियाती निज़ाम की बुनियाद और हमारी ग़िज़ा नीज तवानाई का असल वसीला है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: भारत ने मजीद 5 टन जरूरी दवाइयां काबुल को भेजी हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इंसानी मदद फराहम करने के तई मुल्क के मुस्तकिल अज़्म की दोबारा तस्दीक होती है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 4 से 5 दिन के दौरान जनूब मगरबी मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। क्रिकेट में लखनऊ में भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैनुल अक्वामी मुकाबले में 6 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल की क्यादत में भारतीय टीम मस्कूरा सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है और आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने का इरादा रखती है। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसलाकुन कार्रवाइयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो साल 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा ODI भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And now the news in detail. The G7 leaders have adopted a series of declarations focusing on global stability, security cooperation, and efforts to counter transnational organized crime. In their statement, the leaders welcomed the deal between the United States and Iran under US President Donald Trump. The leaders emphasized the importance of safe maritime passage through the Strait of Hormuz and support

0: power. Defense Minister Rajnath Singh has highlighted that India's annual defense production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21, when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in financial year 2013-14. Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed a significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land and sea, advanced indigenous technologies and built a stronger foundation for self-reliance and national security. Home Minister Amit Shah has said that over the past 12 years, under the government led by Prime Minister Narendra Modi, India has been rebuilt as a bastion of security that shields the citizens and unleashes destruction upon its enemies. In a social media post, Mr. Shah underlined that whether it is responding to enemies across border with the firepower of surgical strike, airstrike and Operation Sindoor, abrogating Article 370, eradicating Naxalism or fortifying internal security with over 12 accords in the Northeast. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that India has already brought 21.76 million hectares of land under restoration efforts against its target of restoring 26 million hectares by 2030. He said this while addressing the event to commemorate World Day to Combat Desertification and Drought 2026 in New Delhi. Speaking on the theme of this year's observance, Rangelands Recognize, Respect, Restore, Mr. Yadav cited India's desertification and land degradation atlas and said that around 29% of the country's geographical area is affected by land degradation and desertification.
1: We fully reaffirm our ministry's commitment declared by the Honorable Prime Minister during the COP 2014 Delhi Declaration, where it was pledged that we would work toward the restoration of 26 million hectares of land by the year 2030. Under the Government of India's Green India Mission, we have already carried out work on approximately 1.7 lakh hectares of land. Furthermore, with the support of CAMPA, we have also successfully undertaken forestation effort across 3.2 lakh hectare of land over the past 5 years.
2: हम लोगों ने forestation करने का काम किया है.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today said India has emerged as a major electronics manufacturing hub and is now the world's sixth largest exporter of electronics. He was speaking after inaugurating the new manufacturing facility of US-based company Jabil at Ranjangaon MIDC in Pune. Mr. Vaishnav said that under the leadership of PM Modi, India has transformed into a global electronics manufacturing destination and is exporting products to markets across the world. Three new ministers were inducted into the Puducherry cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shivkulandhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. Lieutenant Governor K. Kailash Nathan administered the oath of office and secrecy. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. It clarified that there is no leaked paper for the re-exam. It said that fake proof videos showing chats from before the exam are also being circulated. NTA also shared a video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country.
3: See, NTA is committed 100% to ensure that no malpractice will happen. Every question paper has been made in a complete secure manner. We have added layers of security to what is normally done. We have taken every single precaution to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers or translating them or printing them or moving them or storing them till the date of the examination is compromised in any manner.
0: In Manipur, security forces intensified counterinsurgency and law enforcement operations across the state, arresting 3 militants and destroying 26 illegal bunkers in separate operations, said the officials today. The militants were arrested from different locations in Imphal West District. Police said they were allegedly involved in multiple violent and criminal activities. U.S. President Donald Trump has criticized Israel's military campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Early, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
5: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
4: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
7: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
4: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
4: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राज्य से गड़बड़ी के संपन्न हो।
8: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
4: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
9: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन

0: में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, आज का यह पूरा घंटा, आधा घंटा समर्पित है भारतीय सिनेमा के उस कलाकार को जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और प्रतिज्ञा के दम पर करोड़ों दिलों में जगह बनाई। साथियों, वह कलाकार जिसने डांस को एक नई पहचान दी, जिसने एक्शन किया, रोमांस किया, कॉमेडी की और गंभीर अभिनय से राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपन सभी के मनपसंद एक्टर यानी मिथुन चक्रवर्ती की, मिथुन दा की। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं उनका ये गीत।

दोस्तों, कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में जन्म हुआ गौरांग चक्रवर्ती का, जिन्हें दुनिया आज मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानती है। दोस्तों, बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने असाधारण। युवावस्था में उनका जीवन कई उतार चढ़ावों से गुजरा, लेकिन परिवार की परिस्थितियों और जीवन की सच्चाइयों ने उन्हें एक नई दिशा दी। साथ ही उन्होंने अभिनय को अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। दोस्तों, फिर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहां से अभिनय की बारीकियां सीखीं, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। मुंबई में संघर्ष उनका इंतज़ार कर रहा था।

साथियों, मुंबई में मिथुन दा के शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। कई निर्माताओं ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि उनका लुक पारंपरिक हीरो जैसा नहीं है। कई बार उन्हें छोटे मोटे रोल मिल जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि संघर्ष के दिनों में उन्होंने भूख और असफलता दोनों को बहुत ही करीब से देखा है, लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना।

श्रोताओं, साल 1976 में आई फिल्म मृगया, यह फिल्म भारतीय सिनेमा के महान निर्देशक मृणाल सेन ने बनाई थी। मिथुन दा ने इसमें इतना शानदार अभिनय किया कि पहली ही फिल्म में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। जरा सोचिए दोस्तों, जहां अधिकांश कलाकार पहली फिल्म में पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं मिथुन ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया। यहीं से शुरू हुआ एक नए सितारे का सफर।

दोस्तों, 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक घटना थी। फिल्म ने भारत में तो रिकॉर्ड बनाया ही, साथ में रूस, चीन और कई देशों में इस फिल्म ने धूम मचा दी। मिथुन दा का जिमी किरदार घर घर में मशहूर हो गया। रूस में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें देखने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। उनकी तस्वीरें लाखों घरों में लग गईं। कहा जाता है कि उस दौर में रूस में भारतीय फिल्मों का मतलब ही मिथुन चक्रवर्ती था।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार में मिथुन चक्रवर्ती को। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त है कार्यक्रम मैथनी मेलोडीज़ का। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो दिल को इतने पसंद आते हैं कि उनके बारे में बोलना ही क्या। और कहते भी हैं ना साथियों कि ओल्ड इज गोल्ड। तो शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

0: ये फिजाए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। लीजिए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, प्यार ऐसे करो कि हद ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतज़ार इतना करो कि वक्त ना हो, प्यार ऐसे करो कि कभी नफरत ना हो।

दोस्तों, नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। तुझे देखा है इस नज़र से, जिस नज़र से तुम्हें नज़र ना लगे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। लीजिए, अब सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, उलझने दो इन जुल्फों को कि इनमें कैद होना भी एक सुकून है। सुना है सुलझे हुए लोगों की दुनिया में अक्सर इच्छाएं दम तोड़ देती हैं।

दोस्तों, किसी से दिल लग जाए वो प्रेम नहीं, हाँ किसी के बिना दिल ना लगे वो प्रेम है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज़। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: सामईन की खिदमत में फरीन इकबाल का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम अक्से अदब। सामईन, उर्दू अफसाना एक मुख्तसर मगर जामे अदबी सिनफ है। अफसाना अपने इख्तसार और जामियत की वजह से आरईन में बेहद मकबूल है। यह ज़िंदगी के किसी एक पहलू वाक़या किरदार को मरकज़ बनाकर पेश किया जाता है। मुख्तसर ये कि अफसाना ज़िंदगी का एक तराशा हुआ टुकड़ा है जिसे फनकाराना महारत से पेश किया जाता है। आइए सामिन सुनते हैं अफसाना। पेश कर रही हैं मोहतरमा मुसर्रत जहां। अफसाने का उन्वान है निगाहों की अजियत।
1: लीजिए पेश है निगाहों की अजियत। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोस्तों के असरान ने मुझे घेर रखा था। कई दिनों से मैं इस प्रोग्राम को टालती चली आ रही थी, कभी तबीयत का बहाना, कभी मसरूफियत का उजर। मगर इरम, वही इरम जो मेरी ज़िंदगी में खुलूस की एक रोशन लकीर की मानिंद थी, आज कुछ ज़्यादा ही बजित थी। फबीहा, आज तो तुम्हें आना ही होगा, मेरी कसम इनकार मत करना। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी अपनाइत, एक मानूस सी ज़िद थी जिसने मेरे तमाम बहानों को बेअसर कर दिया। मैंने हल्की सी एक थकन ज़दा आवाज़ में कहा, ठीक है इरम, आऊँगी मगर ज़्यादा देर नहीं रह सकूँगी, तबीयत कुछ नासाज है। उधर से उसकी खुशी झलक पड़ी, बस तुम आ जाओ, बाकी हम संभालेंगे। इतवार की शाम सुस्त रवि से ढलती हुई रोशनी और एक बेनाम सी उदासी मेरे अंदर बसी हुई थी। ठीक 4:30 बजे इरम की गाड़ी दरवाजे पे आकर रुकी। मैं महज एक मुस्कुराहट ओढ़े बैठी थी। रेस्तरां की रोशनियाँ आंखों को खैरा कर रही थी। दोस्त पहले से मौजूद, हंसी कह कहे जिंदगी की हलचल, हम कोने की मेज़ पर जा बैठे जहाँ से दुनिया साफ दिखाई देती थी, मगर शायद हम खुद दुनिया की नज़रों से कुछ ओझलते। बातों का सिलसिला चल निकला और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इस फिजा

0: मैं घुलने लगी थी कि अचानक एक एहसास ने मुझे चौंका दिया, जैसे किसी की निगाहें मुसलसल मुझे छू रही हों। मैंने बेख्तियार सर उठाया। सामने एक अजनबी बैठा था, बज़ाहिर वजीह मगर अंदाज में एक अजीब से बहरारा फिर झलक रही थी। बिखरे हुए बाल, कान में झूलती बाली, हाथ में सुलगती हुई सिगरेट और आंखें, वो आंखें जो पूरी लड़ाई के साथ मुझे घूर रही थी। मैंने फौरन अपनी नजरें चुरा ली, मगर दिल में एक अनजानी सी कराहट जाग उठी। खुद को समझाया, ये दुनिया है, यहाँ ऐसे लोग भी होते हैं। मैंने बातों में खुद को उलझाने की कोशिश की, मगर कुछ देर बाद वही एहसास, वही चुभन। मैंने दोबारा नज़र उठाई, वो अब भी वहीं था, उसी बेनियाजी, उसी गुस्ताखी, और अब उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, ऐसी मुस्कुराहट जो रुख को जख्मी कर दे। अब उसकी नज़रें सिर्फ देख नहीं रही थी, जैसे ताकुब कर रही थी, और इशारे, बेबाक बेहुदा इशारे, मेरे अंदर एक सराब सा भर गया। मैंने नज़रें झुका ली, मगर दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। फबीहा, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, इरम की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कुछ कुछ नहीं, मैंने बमुश्किल कहा, मगर कुछ नहीं मेरे अंदर एक तूफान को छुपा रहा था। दोस्तों की हंसी अब मुझे शोर महसूस हो रही थी, और वो अजनबी, वो अब भी मेरी खामोशी को चीरती हुई निगाहों से मुझे घूर रहा था। आखिरकार सब्र की हद टूट गई, मैं यकायक उठ खड़ी हुई, जैसे उस फिजा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया, और तेज़ी से बाहर निकल आई। पीछे से आवाज़ें आती रहीं, मगर मैंने मुड़ कर ना देखा। घर आकर भी वो निगाहें मेरा पीछा कर, वही बेबाक बेहया और रूह को मुजमहिल कर देने वाली निगाहें। क्या वाकई मसला मुझ में है, मैंने खुद से सवाल किया। आज भी वही सवाल मेरे साथ है। अगले दिन शहर के धुंधलकी में पार्क की राहों पर निकल आई, कि शायद ये ताज़ा हवा मेरे दिल की बेकरारी को कुछ सुकून बख्श सके। पार्क की ठंडी हवा भी इस बेचैनी को कम ना कर सकी। मैं खामोश बैठी रही, जैसे खुद से लड़ रही हूँ। अचानक एक आवाज़ आई, बेटा यहाँ बैठ सकती हूँ। मैंने चौंक कर देखा, एक उम्र रसीदा खातून थी, चेहरे पर सुकून, आँखों में नरमी। जी ज़रूर, मैंने जगह बनाते हुए कहा। वो बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी आँखें बहुत कुछ कह रही हैं। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा, क्या मतलब, वो धीरे से बोली, यही कि तुम किसी बोझ तले दबी हुई हो, और ये बोझ अंदर का नहीं बाहर का है। मेरे पास जवाब नहीं था। बेटा, दुनिया की नज़रें कभी नहीं बदलती, हम मगर हम सीख सकते हैं कि किन नज़रों को दिल तक आने देना है और किन को नहीं। उनकी बातें सीधे दिल में उतर गईं। मैं कुछ कहती इससे पहले वो उठ गई, अपना ख्याल रखना, और चली गई। मैं देर तक उन्हें जाते हुए देखती रही। उसी लम्हे मेरे अंदर कुछ टूटा और बनने लगा। वापसी के रास्ते में फिर वही एहसास हुआ, कोई देख रहा है। मैंने पलट कर देखा, एक शख्स खड़ा था नज़रें जमाए हुए, मगर इस बार मेरी नज़रें नहीं झुकाई, मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। चंद लम्हों की खामोश जंग थी, फिर उसने नज़रें हटा ली। मेरी धड़कन तेज़ थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे कि मैंने खुद को पा लिया हो। मैं बेंच पर बैठी उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये तो हर उस लड़की की कहानी है जो हर रोज़ इन नज़रों की अजियत से गुजरती है। मुझे नेहा याद आ गई, वो हमेशा पूरे एतमाद रहने वाली लड़की थी, मगर एक दिन बस में सफ़र कर रही थी, रश ज़्यादा था। वो खिड़की के पास खड़ी थी कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मुसलसल उसका पीछा कर रही हैं। उसने कई बार इधर उधर देखा, मगर वो शख्स हर बार नज़रें चुरा लेता। आखिरकार वो अगले स्टॉप पर उतर गई, हालांकि उसे अभी बहुत आगे जाना था। बाद में उसने बस इतना ही कहा था, कभी कभी रास्ता छूट जाने का दुख नहीं होता, खुद का सुकून छिन जाए उसका होता है। मैंने आंखें बंद कर ली, ये वाकयात जैसे एक लड़ी में जुड़ते जा रहे थे। फिर नमीरा का ख्याल आया, वो एक ऑफिस में काम करती, पहनती बासलाहियत, मगर एक दिन उसने कहा, मेरी काबिलियत से ज़्यादा लोग मेरी शक्ल को नोटिस करते हैं। उसकी आवाज़ में तलखी थी, मीटिंग में जब मैं बात करती हूँ तो कुछ नज़रें मेरी बात नहीं, मुझे देख रही होती हैं, अब तब मुझे लगता है जैसे मेरी मेहनत कहीं पीछे रह गई हो। मैंने उस दिन उसके चेहरे पर पहली बार थकन देखी थी। और फिर एक और वाकया, एक छोटी सी बच्ची शायद 12 साल की स्कूल से वापस आ रही थी। मैंने उसे सड़क के किनारे चलते देखा, वो बार बार अपने दुपट्टे को संभाल रही थी, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये उम्र तो बेफिक्री की होनी चाहिए थी, फिर ये झिझक क्यों? इन सब वाक़यात ने मेरे दिल पर जैसे एक नक्श बना दिया था। ये सिर्फ चंद कहानियाँ नहीं थीं, ये एक मुश्तरक एहसास था, एक खामोश अजियत जो हर जगह मौजूद थी। मैंने आँखें खोली, पार्क वैसा ही था, लोग वैसे ही थे, मगर अब मैं बदल रही थी। मैंने खुद से कहा, अगर ये सब सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा तो फिर खामोश रहना हल नहीं है। उसी लम्हे वही उम्र रसीदा खातून की बात याद आई कि नज़रों को दिल तक आने देना है, ये तुम्हारे इख्तियार में है। मैंने एक फ़ैसला किया, मैं खुद को छुपाऊंगी नहीं, मैं खुद को बदलूंगी भी नहीं, मैं खुद को समझूंगी, क्योंकि मसला मेरा वजूद नहीं, मसला वो नज़रें हैं जो देखना नहीं जानती। मैं उन नज़रों से डरूंगी नहीं, मैं उन्हें पहचानूंगी और ख़ुद को उनसे आज़ाद रखूंगी। ये कहानियाँ शायद अलग अलग थीं, मगर दर्द एक ही था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कोई इसे बयान कर देता है, कोई खामोशी से सह लेता है। काश इन निगाहों के लिए भी कोई कानून होता, उनकी हदबंदी भी मुमकिन होती, ताकि लड़कियां महज देखी ना जाएं, बल्कि ख़ुद को महफूज महसूस कर सकें।
1: सामईन, अभी आप अफसाने से महसूस हो रहे थे। पेश कर रही थी मोहतरमा मुसर्रत जहां, उनवान था निगाहों की अजियत। आइए सामईन चलते हैं मौसीकी की तरफ। वफा की राह में ये तो ज़रूर होना था, वफा की राह में ये तो ज़रूर होना था, तेरी तलब में मुझे तुझसे दूर होना था। फ़कत खराज सी आई थी शीशे दिल पर, फ़कत खराज सी आई थी शीशे दिल पर, मगर उसी से मुझे चूर चूर होना था। ऐसा मैं सुनते हैं खूबसूरत गज़ल, कलाम है नसीम सहर का, आवाज़ दी है हरिहरन ने।

ऐसा बिखरा कि खुद को चुन न सका, ज़िस्त के ताने बाने बुन न सका, ऐसा बिखरा कि खुद को चुन न सका। रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, मुझ में वो शोर था कि सुन न सका। रात मैंने कहा था कुछ लेकिन, मुझ में वो शोर था कि सुन न सका। और एक गज़ल के कुछ शेर पेश हैं कि अर्ज़ किया है कि गर तुम आमाल की बुनियाद यकीं पर रख दो, गर तुम आमाल की बुनियाद यकीं पर रख दो, फिर ये मुमकिन है कि आकाश ज़मीं पर रख दो। गर तुम आमाल की बुनियाद यकीं पर रख दो, फिर ये मुमकिन है कि आकाश ज़मीं पर रख दो। और घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। और एक दो शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि गुमशुदा अहद की तस्वीर दिखाती है मुझे, गुमशुदा अहद की तस्वीर दिखाती है मुझे, एक मानूस सी आवाज़ बुलाती है मुझे। गुमशुदा अहद की तस्वीर दिखाती है मुझे, एक मानूस सी आवाज़ बुलाती है मुझे। और मैंने अहबाब को आईना दिखाना चाहा, मैंने अहबाब को आईना दिखाना चाहा, वज़ादारी मगर आईना दिखाती है मुझे। मैंने अहबाब को आईना दिखाना चाहा, वज़ादारी मगर आईना दिखाती है मुझे। और इतनी शिद्दत से तुझे मैंने तो चाहा भी नहीं, इतनी शिद्दत से तुझे मैंने तो चाहा भी नहीं, जितनी शिद्दत से तेरी याद सताती है मुझे। इतनी शिद्दत से तुझे मैंने तो चाहा भी नहीं, जितनी शिद्दत से तेरी याद सताती है मुझे। गुमशुदा अहद की तस्वीर दिखाती है मुझे, एक मानूस सी आवाज़ बुलाती है मुझे। और एक मतला और दो तीन शेर देखें कि मुख्तसर बहर के गज़ल के ये शेर हैं। अर्ज़ किया है कि आंसू बिखर रहे हैं, आंसू बिखर रहे हैं, कर्ज़े उतर रहे हैं, आंसू बिखर रहे हैं, कर्ज़े उतर रहे हैं, और सदियां गुजारने पर, सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं, सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं। ये शेर बतौर ख़ास है, ऐ काश वो न आए, ऐ काश वो न आए, हम याद कर रहे हैं, ऐ काश वो न आए, हम याद कर रहे हैं। एक गज़ल के कुछ शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि खाक जब जवान हो गई, खाक जब जवान हो गई, एक हसीं मकान हो गई, खाक जब जवान हो गई, एक हसीं मकान हो गई, और रास जब मशक्क़त आ गई, धूप सायबान हो गई, रास जब मशक्क़त आ गई, धूप सायबान हो गई। और बूढ़े बागबाँ के सहन में, बूढ़े बागबाँ के सहन में फिर कली जवान हो गई, बूढ़े बागबाँ के सहन में फिर कली जवान हो गई। और मेरी छोटी सी वो दिल की बात, मेरी छोटी सी वो दिल की बात बढ़ के दास्तान हो गई, मेरी छोटी सी वो दिल की बात बढ़ के दास्तान हो गई। और मैं किसी का दर्द बन गया।

0: मैं किसी का दर्द बन गया, वो किसी की जान हो गई। मैं किसी का दर्द बन गया, वो किसी की जान हो गई। हादसों के तीर यूं चले, हादसों के तीर यूं चले, जिंदगी कमान हो गई। हादसों के तीर यूं चले, जिंदगी कमान हो गई। खाक जब जवान हो गई, एक हंसी मकान हो गई। एक गज़ल से कुछ शेर और मुलाहजा कर लें। अर्ज़ किया है कि बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, हमारी आँखों में रंगे मलाल थोड़ी है। बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, हमारी आँखों में रंगे मलाल थोड़ी है। और ये मसलहत का ताल्लुक है दरमियाँ वरना, ये मसलहत का ताल्लुक है दरमियाँ वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। ये मसलहत का ताल्लुक है दरमियाँ वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। और ये शेर बतौर ख़ास आप हजरात की नज़र कर रहा हूँ। उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा, ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा। हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है, ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा। हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है। और ये शेर भी देख लें कि किसी को याद में रखना कमाल होता है, किसी को याद में रखना कमाल होता है, किसी को भूलना कोई कमाल थोड़ी है। किसी को याद में रखना कमाल होता है, किसी को भूलना कोई कमाल थोड़ी है। तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में ज़िंदा हैं, तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में ज़िंदा हैं, जवाब है ये हमारा सवाल थोड़ी है। तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में ज़िंदा हैं, जवाब है ये हमारा सवाल थोड़ी है। और एक गज़ल के कुछ शेर और पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए। अर्ज़ किया है कि उसकी मजबूरियों को ध्यान में रख, उसकी मजबूरियों को ध्यान में रख, मत गलत फहमियाँ गुमान में रख। उसकी मजबूरियों को ध्यान में रख, मत गलत फहमियाँ गुमान में रख। और जाने अपनों में कौन दुश्मन हो, जाने अपनों में कौन दुश्मन हो, आखिरी तीर तो कमान में रख। जाने अपनों में कौन दुश्मन हो, आखिरी तीर तो कमान में रख। एक दिन आसमां तेरा होगा, एक दिन आसमां तेरा होगा, बस ज़रा हौसला उड़ान में रख। एक दिन आसमां तेरा होगा, बस ज़रा हौसला उड़ान में रख। और मैं के एहसास हूँ तेरे गम का, मैं के एहसास हूँ तेरे गम का, मुझको पलकों के साएबान में रख। मैं के एहसास हूँ तेरे गम का, मुझको पलकों के साएबान में रख। उसकी मजबूरियों को ध्यान में रख, मत गलत फहमियाँ गुमान में रख।
1: सामईन, अभी आप जनाब इरफान आज़मी से उनका ये कलाम सुन रहे थे। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्सी अदब।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में यानी 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने संबंधी विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में भाग ले रहे हैं। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की आज शाम को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। बैठक के दौरान परस्पर सहयोग को मजबूत करने संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हो सकता है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में मुलाकात हुई थी। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। नेताओं ने इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल बढ़ाने और तस्करी रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ गया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्यभर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 34 ओवर में 2 विकेट पर 276 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन शतक लगाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: gains of almost 0.5%. Sensex rose 347 points to close at 77,156, while Nifty advanced 97 points to settle at 24,086. And in football, Austria won its first World Cup match in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Jordan defender Yazan Al-Arab's own goal in the 76th minute put Austria ahead 2-1 before Austria's Marko Arnautovic converted a stoppage-time penalty to seal the result. And that's the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर. इस वक्त शाम के 4:10 हुए हैं. आइए आपको गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी देते हैं. थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है विशाखा. अंतिम बार इन्हें ग्राम मैनापुर में देखा गया. इनकी आयु 22 वर्ष. शरीर की बनावट सामान्य. कद 5 फीट 2 इंच है. बाएं हाथ पर मॉम डैड के नाम का टैटू बना हुआ है. बिना बताए ये घर से कहीं चली गई हैं. किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वे थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में संपर्क करें. अगली जानकारी थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से प्राप्त हुई है. गुमशुदा व्यक्ति का पूरा नाम है शालू. इनको अंतिम बार 2 मई 2026 को करीब शाम के 5 बजे देखा गया. इनकी आयु 32 वर्ष. शरीर की बनावट सामान्य. कद 5 फुट 3 इंच है. किसी को भी इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो वे थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में संपर्क करें. अगली जानकारी थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से प्राप्त हुई है. खोए हुए व्यक्ति का नाम है कमलेश कुमार. खोए हुए व्यक्ति का नाम है रंभा, जो कमलेश कुमार की पत्नी है. इनकी आयु 45 वर्ष है. कद 5 फुट 4 इंच. घर से बिना बताए ये कहीं चली गई हैं. इनको कहीं देखा जाए तो वे थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में संपर्क करें. थाना कवि नगर कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है आरती. इनकी आयु 22 वर्ष. शरीर की बनावट इकहरा. कद 4.5 फुट. अंतिम बार इन्हें 6 मई 2026 को शाम 4 बजे देखा गया. किसी को इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो वह थाना कवि नगर कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में संपर्क करें. थाना कविनगर कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है जितेंद्र प्रकाश. इनको अंतिम बार 1 जनवरी 2025 में देखा गया था. इनकी आयु 45 वर्ष. कद 5 फीट है. घर से बिना बताए ये कहीं चले गए हैं. कहीं भी इनको देखा जाए या कोई सूचना प्राप्त हो तो वे थाना कविनगर कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में संपर्क करें. थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है अनु यादव, जो अजय यादव की पुत्री है. घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं. इनकी आयु 21 वर्ष है. कद 5 फुट 3 इंच. किसी को इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वह थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में संपर्क करें. थाना नंदग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है घनश्याम जायसवाल. अंतिम बार इन्हें अपने घर पर ही देखा गया. इनकी आयु

30 वर्ष है, कद 5 फुट 6 इंच। इनके बारे में कोई सूचना मिली तो वे थाना नंदग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। थाना नंदग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है अजय बंसल। इनकी आयु 50 वर्ष है, कद 165 सेंटीमीटर। किसी को जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना नंदग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करिए। तो श्रोताओं, ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी। अब 4:15 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम युवा वाणी का।

0: मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के लोकप्रिय युवा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त खुशी।
1: और मैं हूं आपका दोस्त भव्य। हम दोनों की ओर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत।
0: दोस्तों, जिंदगी हर दिन में कुछ नया सिखाती है। कभी एक अनुभव, कभी एक चुनौती और कभी एक छोटी सी घटना भी हमें बड़ा सबक दे जाती है।
1: और यही तो युवावस्था की सबसे खूबसूरत बात है खुशी। यह वह समय है जब सपने भी बड़े होते हैं और उन्हें पूरा करने का जुनून भी, जब हर दिन कुछ नया सीखने और कुछ नया करने की चाह होती है।
0: बिल्कुल सही भव्या, और इसी बात पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है। कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाइए, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर मंजिल के करीब जाइए।
1: बहुत सुंदर। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो उम्मीद और आत्मविश्वास का संदेश देता है।
0: इसी बात पर

0: खुशी, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक क्या हो सकती है?
1: यदि मैं अनुमान लगाऊं भव्या, तो शायद पानी की कमी, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन।
0: बिल्कुल सही दोस्तों, 17 जून पूरे विश्व में वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का भी आधार है। हम जो भोजन खाते हैं, जो पानी पीते हैं और जिस हवा में सांस लेते हैं, वह सब प्रकृति की ही तो अमूल्य देन है।
1: लेकिन दुख की बात यह है कि आधुनिक जीवन शैली और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रकृति पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में जल स्तर कम हो रहा है, भूमि की उर्वरता घट रही है और हरियाली कम होती जा रही है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को गंभीरता से समझ रही है।
0: दोस्तों, जब हम डिजर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसका अर्थ केवल रेगिस्तान का फैलना नहीं होता, इसका अर्थ है उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे अपनी उत्पादकता खो देना। इसका असर खेती, जल स्रोतों, पशु पक्षियों और अंततः मानव जीवन पर भी पड़ता है।
1: ये केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि मानव जीवन और भविष्य का भी प्रश्न है भव्या।
0: बिल्कुल सही, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा छोटा सा प्रयास भला क्या बदलाव ला सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं।
1: बिल्कुल सही। यदि हम पानी की बर्बादी रोक दें, बिजली का जिम्मेदारी से उपयोग करें, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें और अधिक से अधिक पौधे लगाएं, तो हम प्रकृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, एक और महत्वपूर्ण बात है जल संरक्षण। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन कई बार हम इसके महत्व को नहीं समझ पाते। नल खुला छोड़ देना, जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग करना, बारिश के पानी का संरक्षण ना करना, ये छोटी छोटी लापरवाहियां भविष्य में बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं।
1: सही बात है, आने वाले समय में पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, इसलिए अभी से जागरूक होना और दूसरों को भी जागरूक करना आवश्यक है।
0: दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण में पेड़ों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तापमान को संतुलित रखते हैं और भूमि को सुरक्षित बनाए रखने में भी मदद करते हैं। एक पेड़ केवल एक पौधा नहीं, बल्कि जीवन का आधार है।
1: और यदि हर युवा साल में केवल एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो कल्पना कीजिए कि हमारे देश में कितनी हरियाली बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल सही, आज का युवा अधिक जागरूक है, तकनीक से जुड़ा हुआ है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की

0: क्षमता रखता है। सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जा सकता है।
1: भव्या, डू यू नो, एक छोटा सा संदेश, एक जागरूक पोस्ट या किसी पर्यावरण अभियान में भागीदारी भी समाज के सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
0: हाँ बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण केवल सामाजिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एक उभरता हुआ करियर क्षेत्र भी है। एनवायरमेंटल साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट रिसर्च जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए संभावनाएं मौजूद हैं।
1: यानी प्रकृति की रक्षा और करियर निर्माण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ये वास्तव में प्रेरणादायक बात है।
0: इसी बात पर मुझे एक सुंदर विचार याद आता है। हम पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाते बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। यह विचार हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है।
1: बहुत खूबसूरत विचार है भव्या। आज का हमारा छोटा सा प्रयास आने वाले कल का बड़ा बदलाव बन सकता है।
0: इसी के साथ सुनते हैं फिल्म स्वदेश का मधुर संगीत, ये जो देश है तेरा।
1: गीत से पहले आज के दिन की एक और वजह से खास है, क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं वीरता, स्वाभिमान, राष्ट्र प्रेम के प्रतीक महाराणा प्रताप जी को।

0: कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा की। आज भी वे भारतीय इतिहास में वीरता का प्रतीक माने जाते हैं।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत गाने की ओर।
0: कर हर मैदान फतेह फ्रॉम संजू।

0: दोस्तों, युववाणी के इस विशेष अंक में अब समय है हमारे प्रेरणादायक खंड मन से माइक्रोफोन तक का। इस खंड में हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने सपनों, मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता की नई मिसाल कायम की है।
1: और आज जिस व्यक्तित्व की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे वैज्ञानिक थे, शिक्षक थे, दूरदर्शी विचारक थे और सबसे बढ़कर युवाओं से प्रेरणा स्रोत थे। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की।
0: डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन आर्थिक चुनौतियों से भरा था, परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन उनके सपने हमेशा से ही बहुत बड़े थे।
1: भव्या, कहा जाता है कि बचपन में वे अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार भी बांटते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी मंजिल के रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया।
0: बिल्कुल, उन्होंने हमेशा ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर भारत के अंतरिक्ष एवं रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: भारत के मिसाइल कार्यक्रम के नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा।
0: लेकिन क्या तुम्हें पता है खुशी कि उनकी सबसे बड़ी पहचान केवल उनका वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था। वे युवाओं को मार्गदर्शन देते थे। उन्हें देश के बच्चों और युवाओं से विशेष स्नेह था।
1: जहां भी जाते, युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। भव्या, क्या तुम जानते हो, उनका एक प्रसिद्ध विचार है, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यही वाक्य आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है।
0: दोस्तों, डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के लिए संसाधनों से ज्यादा जरूरी है संकल्प। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं हो सकती।
1: तो दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें यह संदेश देती है कि सपने देखिए, मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं।
0: तो चलिए, इसी प्रेरणादायक विचार के साथ अब समय है एक ऐसे गीत का जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देता है।
1: सुनते हैं फिल्म दंगल का गीत धाकड़।

0: दोस्तों, अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट क्विक बज का, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी जानकारियां जो आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होती हैं।
1: जी भव्या, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं की जिनके बारे में हर युवा को जानकारी होनी चाहिए।
0: तो खुशी, क्या तुमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सुना है?
1: जी हाँ, इस योजना के तहत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे नौकरी पाने या अपना काम शुरू करने के लिए तैयार हो सके।
0: आज के समय में डिजिटल नौकरियां भी बहुत जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया है, जिससे लोगों तक ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें।
1: भव्या, इससे पढ़ाई, बैंकिंग और कई सरकारी सेवाएं पहले से अधिक आसान हुई हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत योजना। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है।
0: स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण आधार हैं, इसलिए ऐसी योजनाओं की जानकारी रखना भी बेहद जरूरी है। खुशी,
1: तो दोस्तों, आज का हमारा छोटा सा संदेश यही है, जानकारी रखिए, जागरूक रहिए और उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठाइए।
0: और अब समय है हमारे अगले गीत का।
1: सुनते हैं एक प्रेरणादायक गीत जो हमें अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाता है। तू कभी हार के

0: तो दोस्तों, अब समय हमारे कार्यक्रम के उस खंड का जिसका इंतजार हर जिज्ञासु श्रोता को रहता है। खंड का नाम है टुडे इन हिस्ट्री। आइए जानते हैं कि 17 जून के दिन इतिहास के पन्नों में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं।
1: जी भव्या, इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं है, बल्कि वो हमें वर्तमान को समझाने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है।
0: तो चलिए शुरू करते हैं।
1: 17 जून 1930 को हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म हुआ था।
0: अपनी अलग अभिनय शैली, ऊर्जा और शानदार व्यक्तित्व के कारण उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक विशेष पहचान बनाई।
1: 17 जून 1885 को फ्रांस द्वारा उपहार स्वरूप भेजी गई स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क पहुंची थी। आज ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों से एक है और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है।
0: सही कहा, यह प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर और सुनते हैं एक खूबसूरत गीत
0: फिल्म रंग दे बसंती से रूबरू।

0: तो दोस्तों, आज के युववाणी के इस विशेष अंक में हमने बात की पर्यावरण संरक्षण की, युवाओं की जिम्मेदारी की, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की और उन अवसरों की जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं।
1: कि उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि कल का दिन आज से बेहतर हो सकता है।
0: बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ और इसी सकारात्मक सोच के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। मैं हूं आपका मित्र भव्य
1: और मैं हूं खुशी। आप सुन रहे थे आकाशवाणी का युवा कार्यक्रम युववाणी। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए उत्साह के साथ।
0: नमस्कार।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये युवावाणी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगी कार्यक्रम लेके ठीक शाम के 4:15 पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन

0: तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार।
1: वंदा बहन
0: जी, लोकेंद्र भाई
1: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और हमारे इस कार्यक्रम का हमारे जो श्रोता हैं बेसब्री से इंतजार करते हैं।
0: जी हाँ, इसमें हम उनको प्यारे प्यारे लोकगीत सुनवाते हैं जो उनकी पसंद के होते हैं और घरेलू भी होते हैं और नोकझोंक भरे वाले भी होते हैं।
1: तो सबसे पहले हम अपने भाइयों का कराते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं पुष्पा गोसाई से ये प्यारा सा लोकगीत।

0: लोकेंद्र भाई, अभी हमारे भाई सुन रहे थे पुष्पा गोसाई और उनके साथियों की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत
1: और
0: चरखा चले लुढ़कनी चाल।
1: बिल्कुल, और अगला लोकगीत सुनवाते हैं सविता शर्मा की आवाज में।
0: जी

0: लोकेंद्र भाई, अभी हमारे भाई सुन रहे थे सविता शर्मा की आवाज में ये लोकगीत, और अगला लोकगीत हमें किसकी आवाज में सुनवाना है?
1: अगला लोकगीत सुनवाते हैं राजवाला की आवाज में।
0: जी।

0: लोकेंद्र भाई, अभी हमारे भाई सुन रहे थे
1: राजबाला
0: की आवाज में प्यारा सा लोकगीत, और आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं राखी नागर की आवाज में ये लोकगीत।

0: तो वंदा बहन
1: जी,
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे राखी नागर की आवाज़ में लोकगीत। और देखिए लोकगीत जो है हमारी पहचान है, क्योंकि इसमें नोक झोंक होती है, हर तरह के किस्से होते हैं और उतार चढ़ाव होते हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए लोकगीतों से जब हमारे घर परिवार में लोकगीत गाते हैं तो एक नई खुशियाँ सी इसमें महसूस होती हैं, और कोई किसी की बात का बुरा भी नहीं मानता जब हम घर परिवार में बिहार शादी विवाह पर ये इस लोकगीतों का गाते हैं।
0: देखिए हर, जैसे कि आपने सही कहा कि हर मौके के लोकगीत होते हैं, जच्चा बच्चा के होते हैं या बच्चा पैदा होता है, और जैसे कि ब्याह शादी के भी होते हैं, तो उसमें जो मिठास होती है तो वो हमारी संस्कृति को भी पहचान मिलती है उससे, और बताया जाता है कि हाँ, और हर मौके के लोकगीत होते हैं।
1: बिल्कुल, और इस आज के लोकगीत हम इतने ही हैं, और इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को
0: नमस्कार।
1: इस
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल
1: जी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मेरे साथ हैं प्रतीक आनंद।
3: नमस्कार
2: श्रोताओं, फीफा विश्व कप चल रहा है। फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो सितारे जमीन पर उतर आए हैं। दरअसल कल रात और आज सुबह हुए मुकाबलों में ये विश्व कप सितारों के प्रदर्शन की चकाचौंध से जगमगा उठा।
3: अर्जेंटीना ने मेसी की दमदार हैट्रिक की मदद से अल्जीरिया को 3-0 से हराया, तो फ्रांस की सेनेगल पर 3-1 की जीत में किलियन एम्बापे ने 2 गोल दागे। इसी तरह नॉर्वे की इराक पर 4-1 की जीत में अर्लिंग हालैंड के खाते में 2 गोल आए। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से पराजित किया।
2: इन फीफा विश्व कप के मैचों में रोमांच, एक्शन और थ्रिल सब कुछ तो था, जिसके लिए फुटबॉल प्रेमी 4 साल तक इंतजार करते हैं और रात रात भर जाकर मैचों का लुत्फ लेते हैं।
3: फीफा विश्व कप के अलावा चर्चा आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की, जहां इंग्लैंड ने आयरलैंड को 4 विकेट से और श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से पराजित किया। भारतीय टीम का आज नीदरलैंड से मुकाबला होना है।
2: बात विश्व बॉक्सिंग कप स्टेज 2 की भी होगी। इसके अलावा हॉकी में FIH नेशंस कप में, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना कल उरुग्वे से होगा, और FIH प्रो लीग पे भी चर्चा करेंगे, जहां भारतीय पुरुष टीम के सामने होगी जर्मनी की चुनौती। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम का सामना अफगानिस्तान से लखनऊ में चल रहा है, जहां भारतीय टीम ने 403 रन की एक बड़ी चुनौती दी है। 3 मैचों की सीरीज है, भारतीय टीम 1-0 से आगे चल रही है, जबकि ICC महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम नीदरलैंड से शाम 7 बजे से खेलेगी। प्रतीक चुनाव अंक की शुरुआत फीफा विश्व कप से मैचेस से करें, जहां मेसी की धूम मची है। इस सुपरस्टार ने अर्जेंटीना के कल अल्जीरिया के खिलाफ एक शानदार हैट्रिक की, पहली विश्व कप की पहली हैट्रिक है। 39 साल के मेसी हैं, क्या कमाल किया है। पूरा इस रिपोर्ट में जो कल मैच खेले गए।

अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी फुटबॉल के जादूगर हैं। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना के लिए इस विश्व कप में पहला ही मैच मेसी मैजिक का मंच बन गया। जिस खिलाड़ी का एक गोल देखने के लिए फैंस बेताब रहते हों, वो अगर एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन गोल कर दे तो आप दर्शकों की खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते।

पर हां, स्टेडियम में बैठे दर्शकों के शोर का लगभग 118 डेसिबल से ऊपर का पैमाना एक इशारा जरूर कर देता है कि मैसी की खेल को लेकर दर्शकों में कितनी दीवानगी है। कोई नाच रहा है, किसी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। ये तो मैसी के दीवानों के लिए मंच

0: ही मुराद पूरे होने जैसा है। खुशी के इन्हीं लम्हों के लिए तो दर्शक सरहद को पार करके सैकड़ों हजारों मील का सफर तय कर स्टेडियम में इतिहास का साक्षी बनने पहुंचते हैं। मैसी यूं ही फिनोमेनन यानी फुटबॉल के करिश्माई खिलाड़ी हो भी नहीं गए। लगभग 39 साल की उम्र में विश्व कप में अपनी पहली हैट्रिक करना, छठा विश्व कप खेलते हुए जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के सर्वाधिक 16 गोलों के रिकॉर्ड की बराबरी करना एक दिन का खेल है भी नहीं। लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत जारी रखते हैं, अपने कौशल में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो एक न एक दिन ऐसा होता जरूर है। मैसी ने अल्जीरिया के खिलाफ 17वें, 60वें और 76वें मिनट में गोल किए।
1: Back to Messi. Messi! One of one, never to be replicated. Lionel Messi stands alone.
0: पहले हाफ में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया के खिलाफ 1-0 की बढ़त ले ली थी। उसके बाद दूसरे हाफ में मैसी ही मैसी नजर आए। यूं तो टीम के साथी खिलाड़ी मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल, एंजो फर्नांडेज, एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया, लेकिन मैसी की चमक के आगे इनका प्रदर्शन छुपना स्वाभाविक है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना शेष पर पहुंच गया है। अल्जीरिया की ओर से मैच के 8वें मिनट में फारिस शाइबी का गोल ऑफसाइड करार दिया गया था। अगर ये गोल होता तो मैच की तस्वीर अलग हो सकती थी, लेकिन ये मैच तो मैसी के नाम ही होना था। मैसी ने विश्व कप में अपना पहला गोल 16 जून 2006 को किया था, और दिलचस्प तो ये है कि अपना 16वां गोल उन्होंने 16 जून 2026 को पूरा कर एक रिकॉर्ड भरा प्रदर्शन किया। अपना अंतिम विश्व कप खेल रहे मैसी का खेल उम्र के साथ तो और निखरता जा रहा है। 35 की उम्र से पहले उन्होंने विश्व कप में केवल 6 गोल किए थे। 35 की उम्र के बाद वे 10 और गोल कर चुके हैं और विश्व कप में अपने गोलों की संख्या 16 तक पहुंचा दी है। सर्वाधिक गोल के विश्व कीर्तिमान से महज एक कदम दूर हैं। बात फ्रांस के मुकाबले की करें तो काइलिन एम्बापे की गिनती दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकरों में होती है। फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस के अपने पहले ही मैच में 27 साल के इस फुटबॉलर ने 2 गोल कर न केवल सेनेगल के खिलाफ 3-1 की जीत दिलाई, बल्कि देश के लिए अपना 58वां गोल करके फ्रांस के टॉप स्कोरर बन गए। उन्होंने इस मैच में पहले ओलिवर गिरोड के 57 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर उसे तोड़ भी दिया। पिछले 8-9 वर्षों में रियल मैड्रिड के इस फुटबॉलर की धूम मची है। अम्बापे का विश्व कप में कुल 14वां गोल है। फ्रांस के पास पहले भी माइकल प्लाटिनी, जिनेडिन जिटान, थेरे हेनरी, पेपिन जैसे स्टार फुटबॉलर रहे हैं, लेकिन एम्बापे अलग ही दर्जे के फुटबॉलर साबित हो रहे हैं। एम्बापे ने 18 साल की उम्र में फ्रांस को 2018 में विश्व कप दिलाने में मदद की, उसके बाद 2022 में टीम को फाइनल में पहुंचाया और शानदार हैट्रिक की थी। अब 27 साल के एम्बापे के पास फ्रांस को लगातार तीसरे विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में कप्तान एम्बापे ने 66वें मिनट में फ्रांस को बढ़त दिलाई। उसके बाद स्थानापन्न खिलाड़ी ब्रैडले बारकोला ने फ्रांस की बढ़त 2-0 कर दी। स्टॉपेज टाइम में सेनेगल के इब्राहिम ने एक गोल उतारा, लेकिन एम्बापे ने तुरंत 30 गज की दूरी से दनदनाती किक लगाते हुए मैच में अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल कर दिया। इस मैच से पहले अफ्रीकी टीम सेनेगल के आक्रामक खेल की बड़ी चर्चा हो रही थी। यह वही सेनेगल की टीम है जिसने 2002 के विश्व कप के पहले ही मैच में फ्रांस को हराया था, लेकिन इस बार कोई उलटफेर नहीं हुआ। हालांकि पहले हाफ में सेनेगल के खिलाड़ियों ने फ्रांस को ज्यादा मौके नहीं दिए, लेकिन दूसरे हाफ में मैच की तस्वीर बदल गई। दोनों टीमों के 4 गोल इसी हाफ में हुए और 2 गोल तो 8 मिनट के स्टॉपेज टाइम में हुए। बात अन्य मुकाबलों की करें तो नॉर्वे ने इराक को 4-1 से और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 3-1 से पराजित किया। नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड विश्व कप के अपने पहले ही मैच में 2 गोल करने में सफल रहे हैं। उन्होंने ग्रुप आई के मैच के 29वें और 43वें मिनट में 2 गोल किए। नॉर्वे 28 साल बाद विश्व कप में खेल रहा है और उसने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। एक समय मैच एक एक से बराबरी पर था। हॉलैंड के गोल के बाद आयमन हुसैन ने इराक को बराबरी दिला दी थी, लेकिन हॉलैंड ने फिर नॉर्वे को 2-1 से आगे कर दिया। उनके 51 मैचों में 57 गोल हो गए हैं। नॉर्वे का तीसरा गोल लियो ऑस्टीगार्ड ने किया, जबकि स्टॉपेज टाइम में हुसैन के आत्मघाती गोल से नॉर्वे 4-1 से जीतने में सफल रहा। फुटबॉल के पुराने दर्शकों को अर्जेंटीना के माराडोना का 1986 के विश्व कप

0: में हैंड ऑफ गॉड गोल जरूर याद होगा, जब इंग्लैंड के खिलाफ उनके हाथ से लगकर गेंद गोल पोस्ट में चली गई थी और रेफरी इसे देख नहीं सके थे। लेकिन अब तो तकनीक का जमाना है। ऑस्ट्रिया के स्टीफन पॉज के हाथ से गेंद टच करके मार्को अर्नाटोविच के पास चली गई थी, जिन्होंने गोल कर दिया था। लेकिन वीडियो समीक्षा तकनीक यानी वार की मदद से रेफरी ने गोल अमान्य कर दिया। दिलचस्प तो यह है, अंतिम मिनट में अर्नाटोविच ने टीम का तीसरा गोल किया, तब जॉर्डन के खिलाड़ी के हाथ पर गेंद लगने के बाद वार तकनीक की मदद से ही पेनल्टी दी गई थी। ऑस्ट्रिया के लिए श्रिड ने 21वें में, अर्नाटोविच ने इंजरी टाइम में गोल किए। 76वें मिनट में जॉर्डन के यजान अल अरब से आत्मघाती गोल हुआ। जॉर्डन का एकमात्र गोल अली ओलवन ने 50वें मिनट में किया था। छठे दिन चार मैचों में 16 गोल हुए, जबकि एक दिन पहले चार मैच बराबरी पर छूटे थे। लगता है फीफा विश्व कप में गोलों का मानसून शुरू हो गया है। बिल्कुल, और आज जो मुकाबले खेले जाने हैं प्रतीक, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि पुर्तगाल के CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को के मैदान में उतरने का भी फुटबॉल प्रेमियों को बड़ा इंतजार है।
1: बात करते हैं आज के मुकाबलों की। ग्रुप के में पुर्तगाल और DR कांगो की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला ह्यूस्टन के स्टेडियम में खेला जाएगा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और टीम के मुख्य कोच रॉबर्टो मार्टिनेज हैं। वहीं दूसरी ओर DR कांगो के कप्तान चांसेल एबाम्बा हैं और उनके कोच सेबेस्टियन डिसाब्रे हैं। DR कांगो 52 वर्षों बाद विश्व कप में वापसी कर रही है। वर्ष 1974 में जायर के नाम से खेलने के बाद यह उनका पहला विश्व कप है। टीम के कोच सेबेस्टियन डिसाब्रे ने कहा है कि उनकी टीम रोनाल्डो की अगुवाई वाली पुर्तगाल से बिना किसी डर के मुकाबला करेगी। वहीं 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने छठे विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बनने के ऐतिहासिक अवसर के करीब हैं। श्रोताओं, आपको याद दिलाऊं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम विश्व कप में 8 गोल्स हैं, जिन्हें वो आज बढ़ाना चाहेंगे। इसलिए यह मुकाबला विश्व फुटबॉल प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। ग्रुप एल में इंग्लैंड और क्रोएशिया की भिड़ंत होगी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन हैं और कोच थॉमस टुखेल, जबकि क्रोएशिया की कप्तानी लुका मॉड्रिच कर रहे होंगे। इसी ग्रुप में घाना का मुकाबला पनामा से होगा। घाना के कप्तान जॉर्डन आयु हैं, पनामा की कप्तानी अनिबल गोदोए करते दिखेंगे। दिन के अंतिम मुकाबले में ग्रुप के की टीमें उज्बेकिस्तान और कोलंबिया आमने सामने होंगी। उज्बेकिस्तान के कप्तान एल्डोर शोमुरोदोव हैं, जबकि कोलंबिया के कप्तान जेम्स रॉड्रिगेज। श्रोताओं, विश्व कप 2026 में लगातार रोमांच बढ़ता जा रहा है। नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, दिग्गज खिलाड़ी इतिहास रचने की तैयारी में हैं और हर दिन फुटबॉल प्रेमियों को यादगार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं।

0: फुटबॉल के मैदान से चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर और बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच जो दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है और इसमें भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है और 402 रन का स्कोर बनाया है जो कि अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है जो कि पहले ही सीरीज में एक मुकाबला हार चुकी है। 3 मैचों की श्रृंखला है, सीरीज दांव पर है और भारतीय टीम की निगाहें सीरीज जीत पर हैं और जितना बड़ा स्कोर बनाया है उससे लग रहा है कि भारतीय टीम ये मुकाबला जीतने में सफल हो सकती है क्योंकि कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन की पारी खेली है 110 गेंदों पर जिसमें 22 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 125 रन बनाए हैं 89 गेंदों पर जिसमें 14 चौके और 7 छक्के शामिल हैं और दोनों के बीच 224 रन की एक मजबूत साझेदारी हुई है। बात अफगानिस्तान की करें तो उनके जो गेंदबाज हैं नंगोलिया करोटे उन्होंने 76 रन देकर 4 विकेट लिए हैं जबकि राशिद खान 48 रन देकर 3 विकेट लेने में सफल रहे हैं। क्रिकेट की बात को जारी रखते हैं और चलते हैं प्रतीक के पास जो कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप पर जो कल मुकाबले खेले गए उन पर खास रिपोर्ट दे रहे हैं।
1: जी हाँ, कल का पहला मुकाबला साउथहैम्पटन के ऐतिहासिक यूटिलिटी बाउल मैदान पर खेला गया। यह मैच ग्रुप 2 की 2 ऐसी टीमों के बीच था जो टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में थी। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 150 रनों की एक चुनौती

स्कोर खड़ा किया। उनकी तरफ से स्टार ऑलराउंडर अमेलिया कर ने 36 गेंदों में 45 रनों की सदी हुई पारी खेली। कप्तान सोफी डिवाइन ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 30 गेंदों में 45 रन कूट डाले। श्रीलंका की गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रही कविशा दिलहारी, जिन्होंने 4 ओवरों में 35 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। बात करें श्रीलंका के जवाबी बल्लेबाजी की तो 151 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी रही। कप्तान चमारी अथापट्टू ने 27 रन बनाए, लेकिन मध्यक्रम में थोड़े लड़खड़ाने के बाद नीलाक्षी डिसिल्वा ने मोर्चा संभाला। नीलाक्षी ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में नाबाद 54 रनों की जिताऊ अर्धशतकीय पारी खेली। श्रीलंका ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड को मात देकर एक नया इतिहास रच दिया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद नीलाक्षी डिसिल्वा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बात करें कल के दूसरे मुकाबले की तो साउथहैम्पटन के यूटिलिटी बाउल में ही खेला गया यह दूसरा मुकाबला। खराब मौसम और बारिश के कारण थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन रोमांच इसमें कमी नहीं थी। मेजबान इंग्लैंड के कप्तान नेट स्काइवर ब्रंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इंग्लैंड की अनुशासित गेंदबाजी के आक्रमण के सामने आयरलैंड की युवा टीम टिक नहीं पाई। पूरी पारी में इंग्लिश गेंदबाजों ने 7 डॉट बॉलें डाली। आयरलैंड की तरफ से ओरला प्रेंडरगास ने संघर्ष करते हुए 18 गेंदों में 26 रन बनाए। निचले क्रम की लुइस लिटिल ने आखिरी ओवरों में लॉरेन बेल को 4 चौके लगाकर 15 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए और टीम को 118 रन तक पहुंचाया। इंग्लैंड की गेंदबाजी दुनिया की नंबर 1 स्पिनर सोफी एकलस्टेन ने फिर कमाल किया। 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट झटके। ऑफ स्पिनर चार्ली डीन ने भी कलाई का जादू दिखाते हुए 4 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट लिए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करें तो 119 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआती झटका लगा। आयरलैंड की एमी मैगवायर ने पावर प्ले में ही इंग्लैंड का स्कोर 35-3 कर दिया, लेकिन कप्तान नेट स्काइवर ब्रंट और अनुभवी हैदर नाइट के बीच हुई 64 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की झोली में जीत डाल दी। कप्तान स्काइवर ब्रंट अर्धशतक के करीब रिटायर हर्ट हो गई, लेकिन इंग्लैंड ने 17.3 ओवरों में 6 विकेट खोकर मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। शानदार गेंदबाजी के लिए सोफी एकलस्टन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला।

0: और अब बात करते हैं भारत और जो नीदरलैंड के बीच मुकाबला होना है उस पर खास रिपोर्ट।
1: आइए बात करते हैं आज के दूसरे मुकाबले की। दूसरा मुकाबला भारत बनाम नीदरलैंड्स लीड्स मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधना की जोड़ी मुख्य कोच आमुल मजुमदार के मार्गदर्शन में मैदान पर उतरेगी। पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम आज पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए खेलती नजर आएगी। वहीं डच टीम की कमान हेदर सीगर्स के हाथों में है, जबकि उनके मुख्य कोच नियाल ओब्रायन टीम को पहली ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। भारतीय टीम के पास अपनी मजबूत बल्लेबाजी के दम पर नेट रन रेट को आसमान पर ले जाने का यह बेहतरीन मौका होगा। इसके बाद आज का तीसरा मैच पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका बर्मिंघम में रात 11 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान की युवा कप्तान फातिमा सना की अगुवाई में टीम को मुख्य कोच मोहम्मद वसीम गाइड कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम की कमान स्टार बल्लेबाज लॉरा वुलवार्ड संभाल रही हैं, जबकि मुख्य कोच डिलन डी प्रियूस उनके थिंक टैंक हैं। पहले मैचों की हार को भुलाकर दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर जान लड़ाएंगी।
0: बिल्कुल, और जो आज मुकाबला खेला गया पहला मुकाबला, वहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार जीत हासिल की है, 9 विकेट से बांग्लादेश को हराया है, जबकि 63 गेंदें शेष थी। बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर महज 77 रन बना सकी थी और 9.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर विजय लक्ष्य हासिल कर लिया। जहाँ तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सवाल है तो शानदार प्रदर्शन किया, किम गैरेट ने 2 विकेट लिए, इसी तरह सोफी मोलिनेक्स भी 2 विकेट लेने में सफल रही, 2 ही विकेट एलिस पेरी को मिले जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी रही, एनाबेल सदरलैंड ने 1 विकेट लिया और इसी तरह

के विकेट जॉर्जिया वार्शम को मिला 6 रन देकर। और जो बात ऑस्ट्रेलिया चेज की करें तो उन्होंने 10वें ओवर में 9.3 ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। जॉर्जिया वॉली 45 रन बनाकर नाबाद रही। एक विकेट जो गिरा वो बेथ मूनी का था, विकेट कीपर बल्लेबाज, जो 10 रन बना सकी। इसके अलावा एलिसा पेरी नाबाद रही 19 रन बनाकर, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। और बहरहाल

0: रहा है भारत और नीदरलैंड के बीच, उस पर भारतीय जो आक्रामक बल्लेबाज ऋचा घोष क्या कहती हैं, आइए जानते हैं।
1: Focus on my game because I know I'm not getting that time run, but I'm just what I can do. I'm thinking on that, like practice. I can work on my more on my drills and all, and I'm just focused on. It's okay if I'm not getting run, but I'm in a good touch that time. But I'm not getting runs, so it's happened. And I spoke to Harry D and all the seniors, Smithy D and sir too. Ki, what should I do? And they said like, don't worry, just play your game and just focus, that's it. And that helped me also. Yes, that inning helped me to come back and get in the form. And I think that games only give me more confident before the Pakistan game. And yes, because that situation is different, like already wickets down and I have so many overs. So I can stay there and play my own game. So that's why like I get the confidence there. I saw them before the our Pakistan match. I saw their games. They have a good bowlers, and for them is the first time, right? So they are doing really well, and every team is like they can do well, and I think they done really well. That's why they are here, and we are not taking any team easily, and we are just looking forward. We really know each other really well. Depend on the coaches what they want me, because my role is like. Completely to finish the match. So whenever they need, I will go there, and I think that's I'm looking forward to. Whenever they need me, I will go there and I will score runs. I think in this thing, Heidi helped me a lot, because when I and Heidi batted, and that time she told me to take your time. There was no hurry to go and strike the ball from the first ball. You take your time, and if you stay in the crease, you can score lots of runs. So I think.
0: जी हाँ, बिल्कुल। ऋचा घोष का कहना है कि जब वो फॉर्म में नहीं थी तो उन्होंने उन्हें कप्तान हरमनप्रीत कौर ने काफ़ी मदद की, उनकी सलाह काम आई। उन्होंने कहा कि फोकस कीजिए और ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने अपने गेम पे फोकस किया और अपनी फॉर्म में वापसी की है। और उन्होंने कहा वो जैसा टीम मैनेजमेंट तय करता है वो उस क्रम पे खेलने को तैयार हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है ये टीम प्रबंधन और कप्तान का फैसला होता है। बहरहाल क्रिकेट की बात को जारी रखते हैं और बात करते हैं डांबुला में चल रही इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच जो मैच था, वहाँ इंडिया ए ने 101 रन से शानदार जीत हासिल कर ली है। इंडिया ए ने 9 विकेट पर 319 रन बनाए थे, जिसमें प्रियांश आर्य के 58, इसके अलावा तिलक वर्मा जो कि कप्तान है उनके 59 और कुमार कुशाग्र के 58 रन शामिल थे, और 9 विकेट पर 319 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने जो अफगानिस्तान ए की टीम है उसको 218 रन पर आउट कर दिया 36.5 ओवर में, और ये 4 विकेट भारत की ओर से निशांत सिंधु ने लिए। इसके अलावा यश ठाकुर ने 2 विकेट लिए, 1 विकेट अंशुल कंबोज को मिला। इसी तरह एक एक विकेट विपराज निगम, सूर्यांश शेगड़े और अंकुल राय के खाते में भी गया। तो इस तरह शानदार प्रदर्शन चल रहा है इंडिया ए का भी, और अफगानिस्तान के खिलाफ उसने 101 रन से ये शानदार जीत हासिल की है।

अब चलते हैं मुक्केबाजी रिंग की ओर। तो चीन के गुयांग में मुक्केबाजी विश्व कप स्टेज टू चल रहा है, जहां महिला वर्ग के 57 भाग वर्ग में प्राची ने अमेरिका की डेबरा ग्रांट को जजों के सर्वसम्मत निर्णय से एक तरफा 5-0 से मात की, जबकि 48 भार वर्ग में ज्योति ने मंगोलिया की अमगलेन नोमुंद्री को पराजित किया। ज्योति के पंच इतने दमदार थे कि रेफरी को मुकाबला बीच में रोकना पड़ा। इसके अलावा जो अन्य ताज़ा अपडेट है, वहाँ 70 भार वर्ग पुरुष वर्ग में दीपक ने एशियाई खेलों के चैंपियन जापान के सिवोन ओकोजावा को 5-0 से एक तरफा अप्रत्याशित ढंग से पराजित कर दिया। एक शानदार उलटफेर भरी जीत अपने खाते में दर्ज की। इसके अलावा महिला वर्ग में माही लामा को हालांकि हार का सामना करना पड़ा, 60 किलो भार वर्ग में मंगोलिया की मोनखोर नामुन ने उन्हें पराजित कर दिया। तो अभी जो मुकाबले और खेले जाने, अन्य नतीजों की बात करें तो भारत की महिला वर्ग में 54 भार वर्ग में पूनम को चीनी ताइपे की बेन हुयांग ने 3-2 से हराया। 70 भार में गिटी मोनी को फ्रांस की मिलेज रिचॉल ने 5-0 से हराया। पुरुष वर्ग में निखिल ने 55 भार वर्ग में फ्रांस के क्रिस्टोफर को 3-2 से पराजित किया। आकाश को 75 भार वर्ग में

की मैतुसाज उर्बान ने 3-2 से हराया। अब जो मुकाबले खेले जाने हैं वहाँ 55 बार वर्ग में निखिल का सामना ब्राजील के केल्वी ट्रिनडेड से होगा, जबकि माल साम लूंगा का 80 किलो भार वर्ग में जॉर्डन के एस सहेश हुसैन से होगा। महिलाओं में 65 बार वर्ग में स्नेह की टक्कर दक्षिण कोरिया की सियोन डिजिन के साथ होगी।

0: प्रतीक, क्यों ना बात मकाऊ ओपन बैडमिंटन की करें।
1: जी हाँ बिल्कुल, बात करते हैं मकाऊ में चल रहे मकाऊ ओपन 2026 की, जिसका आज दूसरा दिन है। अब तक भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन साधारण रहा है। आज राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां पुरुष एकल में भारत के एस सुब्रमणियन ने ताइवान के पी हुआंग से 21-11, 18-21, 16-21 से हार गए। वहीं भारत के आर चौहान ताइवान के वू जियांग से पहला सेट 18-21 से हार गए हैं। बात करें महिला एकल की, तो भारत की श्रेया लेले चीन की क्यू हान से 12-21, 15-21 से हार गईं। वहीं भारत की आकर्षि कश्यप को दक्षिण कोरिया की एम किम से 17-21, 21-18, 17-21 एक कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एक अन्य मैच में भारत की आर रामराज ने मलेशिया की के सेल्वादोरे को 21-16, 24-22 से हराया। साथ ही एस वलीशेट्टी ने अपनी हमवतन ती मीर को 21-18, 19-21, 21-15 से हराया।
0: बात शतरंज की करते हैं तो फिडे वर्ल्ड टीम रैपिड ब्लिट्ज चैंपियनशिप हांगकांग में शुरू हो गई है। इसमें रैपिड टीम चैंपियनशिप 19 जून तक चलेगी, जबकि ब्लिट्स के मुकाबले 20-21 जून को खेले जाएंगे। रैपिड में 12 राउंड का स्विस सिस्टम होगा, जिसमें 15 मिनट की बाजी होगी और हर चाल के लिए 10 सेकेंड मिलेंगे। जीत पर 2 और ड्रॉ पर 1 अंक दिया जाएगा। सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली टीम चैंपियन बनेगी। ब्लिट्स में 3 मिनट की बाजी होगी, हर चाल के लिए 2 सेकेंड मिलेंगे। पहले ग्रुप चरण होगा, फिर प्री क्वार्टर से नॉकआउट दौर शुरू होगा। प्रतीक, आज के जो ताज़ा रिजल्ट हैं हमारे पास, वो क्या बताना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: जी हाँ, पहले राउंड में डब्ल्यू आर चेस ने डुओवेनिया जान कोस्टा कलीडा को 5-1 से हराया, जिसमें फेबियानो करुआना ने जिमिनेज जोसे फर्नांडे को शिकस्त दी। साथ ही एलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना ने रोड्रिगेज अधारा को हराया। वहीं एक अन्य मुकाबले में ड्रैगन चिलिंग ने द मंगोल्स को 4.5 से हराया। वहीं एक और अन्य मुकाबले में चेस यूनाइटेड, जो कि भारत की टीम है, भारत के प्रतिनिधि इसमें भी खेल रहे हैं, उन्होंने मे विंस न्यूबीस के बीच 3-3 से ड्रॉ खेला, जहां 12 साल के ओरो फोस्टिना ने यान तियांकी को शिकस्त दी। कुनेरू हम्पी और वांग यूकिन के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। आखिर मुकाबले में चेस गुरुकुल ने चेस अकेडमी हांगकॉन्ग को टीम ए को 4-2 से हराया।
0: भारत की ओर से भी इसमें जो स्टार खिलाड़ी, जैसा प्रतीक ने बताया, हिस्सा ले रहे हैं। हर टीम में 6 खिलाड़ी हैं, जिसमें एक महिला, एक जूनियर और एक अमेच्योर खिलाड़ी हैं। भारत की ओर से जो भाग ले रहे हैं उनमें दिग्गज विश्वनाथन आनंद के अलावा आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, हरिका द्रोणावल्ली और आर वैशाली और अन्य ग्रैंड मास्टर इन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। बात हॉकी की करते हैं तो महिला हॉकी टीम न्यूजीलैंड में नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अंतिम लीग मैच में उसे कल उरुग्वे के साथ खेलना है। भारतीय टीम के 2 मैचों में 6 अंक हैं और वो शीर्ष पर चल रही है। उसने अमेरिका को 3-2 से और जापान को 2-1 से हराया है। FIH प्रो लीग में जगह बनाने के लिए उसे हर हाल में नेशंस कप जीतना है। पुरुष हॉकी की अगर बात करें तो भारतीय टीम को प्रो लीग में जर्मनी से मुकाबला खेलना है। पिछले साल प्रो लीग में दोनों टीमों ने आपसी भिड़ंत में 1-1 मैच जीता था। पहले मैच में जर्मनी 4-1 से जीतने में सफल रहा था, दूसरे मुकाबले को भारत ने 2-1 से जीता था। भारतीय टीम के लिए सत्र उतार चढ़ाव भरा रहा है। अभी तक भारत ने 8 मैच खेले हैं और 4 अंक के साथ अंक तालिका के निचले हिस्से में है। यूरोपीय चरण में नीदरलैंड ने 1-2 करीबी हार मिली थी उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत को प्रमुख भूमिका अदा करनी होगी। इसके अलावा जर्मन की मजबूत रक्षा पंक्ति को तोड़ने के लिए अभिषेक सुखजीत और मनदीप की तिकड़ी को भी जोर लगाना होगा। चलते चलते बात एशियाई खेलों के लिए घुड़सवारी की टीम घोषित कर दी है। भारतीय घुड़सवारों में ड्रेसेस स्पर्धा में श्रुति वर्वा, गौरव पुंडरी, जय हृदय शामिल अपने अपने अश्वों के साथ उतरेंगे। तैराकी में श्रीहरि नटराजन ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में 25.21 के साथ सेकंड के साथ न केवल नया मीट रिकॉर्ड बनाया, बल्कि राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। बिल्कुल, अब बात सुहेल जर्मनी में चल रहे ISF जूनियर विश्व कप पर निशानेबाजी की करें, जिसमें अंडर 20 वर्ग के निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। इन निशानेबाजों को भविष्य के ओलंपिक स्टार के रूप में देखा जाता है। प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल, 50 मीटर एयर राइफल, ट्रैप और स्केट की स्पर्धाएं होंगी। तो घड़ी की सुइयां हमें ज्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे नवीन कुमार शर्मा और साथी
1: प्रतीक आनंद
0: को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
3: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है।

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज की भेंट वार्ता का हमारा विषय है योग कर्मसु कौशलम, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी, भेंट करता हैं संतोष द्विवेदी मनोज।
1: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 21 जून को योग दिवस है और इस योग दिवस के आलोक में हम जुड़ रहे हैं योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ। गोस्वामी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: गोस्वामी जी, योगा कर्मसु कौशलम, इसका वास्तविक अर्थ क्या है और आज के युवाओं के जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
2: योगः कर्मसु कौशलम गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को योग की परिभाषा बता रहे हैं। अस्तित्व में गीता में योग की तीन परिभाषाएं आती हैं कि योग क्या है। तो जो कर्म योगी होते हैं, जो काम में विश्वास करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी खाली रह सके। कर्म कैसे किया जाए उसकी आर्ट को, उसकी टेक्निक को भगवान ने गीता बताया है। वो कह रहे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कि जो योग है वो कर्मों की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम का मतलब है कि कर्म जब आप कर रहे हो तो आप कर्म कर रहे हो और पूरी तरह से अवेयर होकर कर्म कर रहे हो। उसमें फल की इच्छा ना हो, उसमें अहंकार ना हो, आसक्ति ना हो, बस कर्म में पूरी निष्ठा के साथ पूरा स्किलफुल होकर आप उस काम को करते जाएं।
1: जी बिल्कुल। आज हमारी सरकार हो या कोई संगठन हो, सभी इस बात पर एक मत है कि युवा शक्ति भारत को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। राष्ट्र निर्माण में हर कोई अपने अपने तरह से योगदान देता है। अगर युवा शक्ति की बात करें और साथ में इसमें योग को हम जोड़ते हुए देखें, तो योग के माध्यम से राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है, आप क्या कहेंगे?
2: देखो, मन बहुत बिखर रहा है, मन में एक दौड़ है, मन में एक हलचल है, मन में एक चंचलता है। बिखरा हुआ मन किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन सधा हुआ मन किसी भी कार्य को बड़े बेहतर तरीके से कुशलतापूर्वक कर सकता है। आज यदि हम देखें, व्यक्ति इंस्टा पर जब रील में होता है तो कितने देर तक एक रील में वो टिकता है, वो कुछ सेकंड में दूसरी रील की तरफ भागना चाहता है। हमारा मन और बिखरा है और चंचल हो रहा है। ऐसे में योग उस बिखरे हुए मन को साधने में हमारी मदद करता है। हर व्यक्ति एक राष्ट्र निर्माण में सहयोगी होता है जब वो अपना कर्म पूरी तरह से, अच्छी तरह से, निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ उसको कर्तव्य मानकर करता है। यदि वो योग का अभ्यास करेगा, योग के आसन और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेगा, तो उसका शरीर स्वस्थ होगा, उसका मन स्वस्थ होगा, मानसिक शांति उसको प्राप्त होगी, भीतर एक हल्कापन होगा और तन में भी एक हल्कापन होगा। जब स्वस्थ तन और मन के साथ व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो वह कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से होगा, सफल तरीके से होगा। और जब हर व्यक्ति इसी भाव के साथ में काम करेंगे, यानी कि योग के अभ्यास से अपने को तैयार होकर जब हम काम करेंगे, तो वह एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सहयोगी हो जाएंगे। योग भूमिका बांधता है, योग एक आधार है, एक फाउंडेशन है, आपको निर्माण करता है। योग हमें बल देता है, हमें स्वास्थ्य को बेहतर करता है, हमारे मन को बेहतर करता है, बुद्धि के निर्णयों को बेहतर करता है, हमारी इच्छाओं को, हमारी वासनाओं को, हमारे संस्कारों को एक व्यवस्था देता है, एक संतुलितता देता है। और हम जब संतुलित होते हैं और संतुलन के साथ जब काम करते हैं तो हम राष्ट्र निर्माण में सहयोगी हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और उनके भीतर सकारात्मक सोच को लाने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भूमिका ही आगे राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। सुरक्षित जी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल युग में हर किसी की तरह युवा भी आजकल तनाव का शिकार है, कई बार अवसाद का भी शिकार हो जा रहा है, तो ऐसे में योग कितना बड़ा माध्यम बन सकता है इससे निजात पाने में?
2: देखो, अवसाद जो डिप्रेशन है वो एनर्जी का स्टक हो जाना है, एनर्जी का कहीं रुक जाना है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो एक एनर्जी है, यहाँ सब कुछ एनर्जी है, शरीर के सारे ऑर्गन एक एनर्जी है। एनर्जी जब पूरे शरीर में व्यवस्थित तरीके से कार्य करती है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब एनर्जी अव्यवस्थित हो जाती है, बिखर जाती है, कहीं इकट्ठा हो जाती है, उसकी नोट्स बन जाती, ग्रंथियां बन जाती हैं, तो शरीर में बीमारी आती है। ऐसे ही मन जब किसी एक विचार को पकड़ लेता है, किसी पास्ट के दुख को पकड़ लेता है और वहां से वो निकल नहीं पाता, तो वो अवसाद का रूप ले लेता है। योग के अभ्यास उसी एनर्जी को फ्री फ्लो करने में मदद करते हैं। इसलिए योग के आसन अलग अलग शरीर की मुद्राएं, अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, जिससे एनर्जी का फ्लो फ्री हो जाए और जहां भी कोई रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाए। इसी के साथ साथ जब आसन के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो प्राणायाम के जो अभ्यास है वो एनर्जी को फिर बैलेंस करते हैं। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर से बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास तन और मन के केवल अवसाद ही नहीं, अनेक साध्य और असाध्य रोगों को दूर करने में बहुत ही सहयोगी हो जाते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन पर काम करते हैं।
1: जी बिल्कुल, नशे की आदत से बचना हो या फिर पढ़ाई लिखाई में भटकन से बचना हो, उसमें भी योग की एक बड़ी भूमिका होती है।
2: बिल्कुल, व्यक्तित्व निर्माण में ये सहायक है, यानी कि दिनचर्या को एक व्यवस्था देता है, हमारे कर्मों के प्रति एक अवेयरनेस पैदा करता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, कब सोना है, कैसे व्यवहार करना है, कौन से शब्द रखने हैं, संबंधों में है तो वहां कैसे व्यवहार करना है, ऑफिस में है तो वहां कैसे व्यवहार हो। एक बुद्धिमत्ता डेवलप हो जाती है, एक अवेयरनेस और एक विवेक पैदा हो जाता है योग के अभ्यास से। फिर ऐसे ही है कि जैसे आपके हाथ में टॉर्च हो और आप किसी जंगल में रात जा रहे हैं और टॉर्च के साथ आप चल रहे हैं, तो फिर आपको कितना दूर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास रोशनी है।
1: सुरक्षित जी, जैसे हम देखते हैं कि 2014 के बाद से योग को लेकर के भारत और विश्व में काफी सजगता आई है, योग के महत्व को स्वीकार किया गया है, योग अब लोगों की जीवनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के इस बढ़ते प्रभाव को आप भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में कैसे देखते हैं?
2: भारत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर योग है, अध्यात्म है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ रहना सिखाया है, यहाँ जीना सिखाया है, यहाँ सांस लेना सिखाया है, यहाँ बैठना सिखाया है, यहाँ मन को एकाग्र करना सिखाया है। ये सारी विधाएं योग की विधाएं हैं। तो ये योग की विधा पूरे विश्व को, मानव जाति को सिखाती है कि जीवन जीना कैसे है। जैसे आप कोई भी एक मिक्सी खरीद के लाते हैं तो उसकी एक मैनुअल बुक साथ में आती है, वो बताती है कि इस मिक्सी को कैसे चलाएं। ये शरीर है, हमें मिला है माता पिता से, लेकिन इसको चलाना कैसे, इंद्रियों का प्रयोग कैसे, मन का प्रयोग कैसे, प्राणों का प्रयोग कैसे, बैठाएं कैसे, कैसे इस जीवन की यात्रा को लेकर चले, वो कौन सिखाता है? योग ने वो सिखाया है। और जब योग ये सिखाता है कि जीवन को कैसे लेकर चले तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। तो ये भारतीय संस्कृति का एक आधारभूत स्तंभ है। और 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योग को विश्व पटल पर बहुत ही पुरजोर तरीके से रखा और योगा डे के रूप में यूएनओ ने इसको मोहर लगा दी, तब इसका जो महत्ता है वो घर घर पहुंची है, विश्व के कोने कोने पहुंची है। भारत की पुरातन विद्या है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे विश्व पटल पर रखा गया, और इसी कारण से ये योग ही है जो भारत को विश्व गुरु बनाता है। ये योग ही है जो पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि स्वास्थ्य की बात हो तो भारत, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो तो भारत, और अध्यात्म की बात हो तो भारत, और मुक्त हो जाना चाहते हैं तो भारत में जो योग विद्या है वही आधार है मुक्ति का भी।
1: सुरक्षित जी, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: पहली बात, भोजन पर ध्यान दें। दूसरी बात, अपनी नींद पर ध्यान दें, अच्छा सोएं, क्योंकि आज व्यक्तियों की नींद कम होती जा रही है क्योंकि मन बिखर रहा है, इसलिए नींद पर ध्यान दें। और तीसरी बात है, रोज योग का अभ्यास करें, आधा घंटा योग के आसन करें, 15 मिनट प्राणायाम का ध्यान का अभ्यास करें और 10-15 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठ जाएं, यानी कि एक घंटा अपने लिए दे दें, 23 घंटे जगत के लिए दे दें, आप पाएंगे वो एक घंटा ही सिर का ताज बन जाएगा।
1: सुरक्षित गोस्वामी जी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था योग कर्मसु कौशलम, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार थे सुरक्षित गोस्वामी योगाचार्य और भेंट करता थे संतोष द्विवेदी मनोज। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था आदर्श का और कार्यक्रम प्रस्तुत करता थे संतोष द्विवेदी मनोज। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्।
3: प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। G7 इत्यस्य नेतारः वैश्विक स्थिरतां सुरक्षा सहकारं बहुराष्ट्रीय संघटित अपराधस्य प्रतिकार प्रयत्नांच केन्द्रीयमानाः घोषणानां श्रृंखलाः स्वीकृतवन्तः। फ्रांस देशस्य इवियान नगरे G7 इति शिखर सम्मेलनेन समं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह मेलनं करिष्यति। सः फ्रांस देशस्य भ्रमणं भागत्वेन अद्य सायंकाले पेरिस नगरं प्राप्स्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः भारतस्य सार्वभौमता निर्विवाद्यमिति कथयन् आतंकवादं विरुध्य सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर इत्येतानि च निर्णायकानि कार्याणि इति उदघोषयत्। भारतस्य रक्षोत्पादनं निवर्तमान वित्तीय वर्षे 0.78 लक्षं कोटि रूप्यकाणि अभिलेख्यं यावत् वर्धितं। 2021 वर्षात् 10.1% वर्धितमस्ति। विद्रोह प्रतिरोध कार्याणि अभिलक्ष्य रक्षाबलानि सम्पूर्णे मणिपुरे सजगाः सक्रियाश्च सन्ति। 3 आतंकवादिनः गृहीताः, 26 अवैध अन्तः भूमियानि गुहास्थानानि नष्टानि। अपि च क्रीडावार्तासु, पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान देशयोर्मध्ये त्रिक्रीडा श्रृंखलायाः द्वितीया एकदिवसीया क्रीडा लखनऊ नगरे प्रचलति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। सहैव होर्मुज जलसन्धौ सुरक्षित समुद्रीय परिवहनस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्, क्षेत्रीय सुरक्षा संवर्धनाय च समर्थनं प्रदत्तम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील, दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ अवैध मार्गान् रोद्धुं G7+ Ports Network इति नवमञ्चस्य प्रस्तावः दत्तः। फ्रांस देशस्य इवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। अत्रावधेयं यत् अद्य सायं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अमेरिका राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण सह बहुप्रतीक्षिता द्विपक्षीय वार्ता भविष्यति। 25th-2000 फरवरी मासात् परं द्वयोः नेत्रोः इदं प्रथमं प्रत्यक्षतया सम्भाषणमस्ति। अमेरिका ईरान युद्ध विरामस्य अथ होर्मुज जलसन्धेः पुनः उद्घाटनस्य पृष्ठभूमौ एषः संवादः अतीव महत्वपूर्णो वर्तते। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय व्यापार सन्धिं समेत्य अतिरिक्तं वैश्विक समाह्वानानां समाधानाय चर्चां करिष्यतः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्री कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः सुरक्षित प्रभावी उपयोगः इति विषयमधिकृत्य कार्यमध्याह्न भोजे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र प्रमुख AI विपणीनां मुख्याधिकारिणः समुपस्थिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देश प्रवासस्य भागत्वेन अद्य सायं पेरिस नगरं प्रतियेति। तत्रत्यः भारतीय समुदायः तदीय स्वागतार्थं महदुत्साहेन सज्जो वर्तते। श्वः प्रातः प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति, या मध्याह्न पर्यन्तं प्रचलिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक् शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अवोचत् यत् भयोत्पादनं विरुध्य शून्य सहिष्णुतायाः नीतिमनुसृत्य सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट, ऑपरेशन सिन्दूर इत्यादीनि निर्णायक कार्याणि यावत् भारतदेशः स्पष्टं सन्देशं प्रेषितवान् यत् तस्य संप्रभुता निर्विवाद्या अस्तीति। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री सिंहः उल्लिखितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः योग्य नेतृत्वे भारते राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनायाम् ऐतिहासिक परिवर्तनम् अभवदिति। सः इत्यपि अवोचत् यत् रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः विषये देशस्य संकल्पेन स्वदेशीय क्षमता सुदृढा, सशस्त्रबलानाम् आधुनिकीकरणं, भूमि समुद्र वायु साइबर अंतरिक्ष क्षेत्रेषु सज्जता च वर्धिता। रक्षामंत्री अधोरेखितवान् यत् गत द्वादश वर्षाणां यात्रा दृढ़तरां, सुरक्षितां, आत्मनिर्भरां, आधिक्येन आत्मविश्वासयुतांच भारतमातरं प्रतिबिंबयति इति। रक्षामंत्री राजनाथसिंहः अस्मिन् आर्थिक वर्षे भारतस्य वार्षिक रक्षा उत्पादनं सार्वकालिकं 0.78 लक्षं कोटि रूप्यकाणि यावत् औन्नत्यं प्राप्नोदिति अवोचत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री सिंहः अकथयत् यत् एषा उल्लेखनीया उपलब्धिः पूर्वतनस्य वित्तीय वर्षस्य 0.54 लक्षकोटिरूप्यकाणाम् उत्पादनस्य अपेक्षया 0.65% यावत् प्रभावोत्पादिका वृद्धिः 2021 वित्तीय वर्षाच्च 10.1% अस्ति। मणिपुरे सुरक्षाबलैः उदग्रवाद विरोधाभियानानि तीव्रीकृत्य 3 उदग्रवादिनः निगडिताः। सहैव 26 अवैध भूमियानि गुहास्थानानि विनष्टानि। आरक्षिबलानुगुणं निगृहिताः उदग्रवादिनः प्रतिबन्धित संघटनस्य पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA इत्यस्य सक्रिय सदस्याः सन्ति। ये पश्चिम इम्फाल मण्डलात् गृहीताः। एते अनेकेषु हिंसाचार अपराधेषु संलिप्ताः आसन्। अपरपक्षे कामजोंग उख्लोल मण्डलयोः सशस्त्र समूहैः उपयुज्यमानाः 26 अवैध गुहास्थानानि ध्वस्तीकृतानि। क्रिकेट क्रीडायां लखनऊ नगरे स्पर्धा त्रयाणां श्रृंखलायाः द्वितीयायां एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायां अफगानिस्तान देशं विरुध्य 1-0 अग्रस्थं भारतं 3-400 धावनांकानां लक्ष्यं अददात्, यत्र दलनायकेन शुभमन गिलेन 1.5 शताधिकानि, ईशान किशनेन च 15 धावनांकानि रचितानि। इतः प्राग अफगानिस्तान देशः पणकं विजित्य प्रथमतया क्षेत्ररक्षणं अचिनोत्। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। G7 इत्यस्य नेतारः वैश्विक स्थिरतां, सुरक्षा सहकारं, बहुराष्ट्रिय संघटित अपराधस्य प्रतिकार प्रयत्नांच केन्द्रीय मानाः घोषणानां श्रृंखलाः स्वीकृतवन्तः। फ्रांस देशस्य एवियान नगरे G7 इति शिखर सम्मेलनेन समं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह मेलनं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथसिंहः भारतस्य सार्वभौमता निर्विवाद्यमिति कथयन् आतंकवादं विरुध्य सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट, ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतानि च निर्णायकानि कार्याणि इति उदघोषयत्। भारतस्य रक्षोत्पादनं निवर्तमान वित्तीय वर्षे 0.78 लक्षं कोटि रूप्यकाणि अभिलेख्यं यावत् वर्धितम् इति वार्ताः।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडवे 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। देखिए लोकेंद्र भाई, हम अपने भाइयों से बातचीत करेंगे, कुछ हमारे पास चर्चा का विषय भी है और बातचीत करवाएंगे किसानों की और मनोरंजन भी होगा साथ साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेयरी व्यवसाय के बारे में।
1: हाँ।
0: जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे पुरुष हैं जो डेयरी व्यवसाय चलाते हैं, उनके लिए कि भाई उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे व्यवसाय शुरू करना चाहिए, इन सब बातों का हम उनसे जिक्र करेंगे।
1: बिल्कुल वृंदावन, देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और इस उपलब्धि में महिलाओं का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृंदावन ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी उद्योग महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक प्रभाव भी और मध्यम वर्ग का भी उपयोग होता है और पशुओं की देखभाल, चारा पानी की व्यवस्था, दुग्ध दोहन, दूध का संग्रहण और दूध उत्पादन में निर्माण में अधिकांश कार्य महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है।
0: बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि डेयरी व्यवसाय में महिलाओं की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है।
1: बिल्कुल,
0: वे दूध उत्पादन से लेकर प्रबंधन, पशुपालन और विपणन जैसे लगभग 70% कार्य संभालती हैं।
1: हाँ।
0: यह क्षेत्र ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार में बेहतर निर्णय लेने की आत्मशक्ति और आत्मनिर्भर तो बनाता ही है, साथ ही साथ उनको ये भी महसूस कराता है कि भाई हम किसी से कम नहीं।
1: बिल्कुल, देखिए वंदना, इसके साथ साथ सरकार भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा अन्य, इसके साथ साथ अन्य संस्थाएं महिलाओं को आधुनिक पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और उद्यमिता का प्रशिक्षण देती है। इससे उनकी आय में वृद्धि और उन्हीं के साथ साथ परिवार के पोषण स्तर और बच्चों की शिक्षा में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल, और देखिए पशुओं को दैनिक देखभाल और प्रबंधन के लिए चारा और पोषण की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारी जो महिलाएं हैं उनका विशेष योगदान होता है। वे पूरा दिन अपने पशुओं को, अपने घर में पालतू जानवरों का पूरा ध्यान रखती हैं, जैसे घर में अपने बुजुर्गों का रखती हैं, अपने बच्चों का रखती हैं, ऐसे अपने पशुओं का रखती हैं और समय समय पर उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो देती भी हैं और उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखती हैं, नियमित निगरानी और साफ सफाई। आप देखिए सुबह 5 बजे उठ जाती हैं हमारी महिलाएं और अपनी गाय भैंसों के नीचे सफाई करना, गोबर उठाना, चारा देना, ये सब काम वो अकेले ही कर करती
1: हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: और देखिए इसके साथ साथ डेयरी उद्योग महिलाओं को रोजगार, सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक सशक्त माध्यम है। डेयरी इसलिए डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, ये तो थी बातें हमारी महिलाओं के लिए कि अगर वो डेयरी व्यवसाय शुरू करें तो उनको क्या क्या करना चाहिए। देखिए पूरा ध्यान रखना अपने पशुओं का पड़ता है उनको।
1: हाँ।
0: और

0: अगर वो पशुओं को खरीदना चाहती हैं तो हमारी सरकार लोन भी मुहैया करवाती है, तो वो आप अपने क्षेत्रीय बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं, तो आपको वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी।
1: बिल्कुल बंदा मैंने, आप अपने भाइयों का कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं रागनी, कलाकार हैं यशपाल और किसाए कीचक बद से
0: जी।

0: लोकेंद्र भाई, अभी हमारे भाई सुन रहे थे रागनी यशपाल की आवाज में, और किस्सा था कीचक वध का।
1: बिल्कुल वंदना बहन, देखिए हमारे जैसे कि हमने कहा था कि अपने कार्यक्रम में हम जानकारी भी देते हैं हमारे भाई बहनों को, तो आज हम अपने उनके लिए जानकारी लेके आए हैं। जानकारी का विषय है किसानों के लिए IFFDC की भूमिका, और जानकारी दे रही हैं डॉक्टर माधवी एम विप्रदास, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IFFDC, और इनसे बातचीत कर रहे हैं PS भाटी। तो सुनते हैं ये जानकारी।
0: जी,
2: किसान बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं IFFCO किसानों की संस्था है, और किसानों के साथ साथ IFFCO की बहुत सह संस्था हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव लिमिटेड, ये संस्था है जो किसानों के लिए भी काम कर रही है, महिलाओं के लिए भी काम कर रही है, और जो जानकारी देंगी हमारे साथ हैं श्रीमती माधवी एम विप्रदास, जो IFFDC की प्रबंध निदेशक हैं। माधवी जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आप किसानों के लिए भी काम कर रही हैं और महिलाओं के विकास के लिए भी काम कर रही हैं। तो सबसे पहले बीज के बारे में बताएं किसानों के लिए।
3: नमस्कार, आपको मुझे बताते हुए बहुत हर्ष की बात है कि IFFDC जो है ये IFFCO की एक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए IFFDC का निर्माण हुआ। ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो IFFCO द्वारा निर्मित की गई है, और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि बंजर जमीन को हरा भरा बनाना, उसको विकसित करके उसे हरित बनाने का काम किया गया। अब तक 29,000 हेक्टर से ज्यादा बंजर भूमि को हम जंगल में विकसित कर चुके हैं। उसके साथ साथ किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज मिले, इसलिए बीज का कार्य भी IFFDC करती है। तो रबी और खरीफ दोनों तरह के क्रॉप्स में करते हैं, ज़्यादातर हमारा काम रबी के फसलों में होता है। गेहूं एक मुख्य फसल है, और लगभग 3,60,000 क्विंटल का पिछली वर्ष हमने व्यवसाय किया। गुणवत्ता के लिए IFFDC का बीज बहुत ही पॉपुलर है, और अभी भी इस साल भी हमारा बहुत अच्छा इंटेक हुआ है। जो रॉ सीड का इंटेक हुआ, रबी सीजन अभी अभी ख़त्म हुआ, तो रबी सीजन में हमारा हाईएस्ट इनटेक अभी इस बार हुआ है। मुझे खुशी है कि अलग अलग तरह का चैलेंजेस आए इस बार, पर्यावरण के बेटाइम बारिश होना, जब हार्वेस्टिंग का सीजन आया तब बारिश होना, उसके बावजूद भी हमारा इनटेक बहुत अच्छा रहा है, और इस बार हमने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी 25-26 में हमने अर्जित किया है।
2: माधवी जी, आपने सही बात की, और किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई समय पर बीज उपलब्ध आप करा रही हैं, और आपकी संस्था IFFDC भी आगे बढ़ रही है। तो माधवी जी, क्या ये सभी राज्यों में आप बीज वितरण का काम करते हैं?
3: हमारे मुख्य जो राज्य है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और राजस्थान है। इन राज्यों में हमारा प्रमुखता से काम है, और यही हमारा जो फार्मर से जुड़ाव है, और वहीं हम उनको फाउंडेशन सीड्स हम देते हैं, और फिर फाउंडेशन सीड से बने हुए उसकी गुणवत्ता के मापदंडों को देखते हुए फिर हम उनसे वो बनी हुई फसल को रॉ सीड इनटेक की तरह हम लेते हैं।
2: आप बीज के अलावा बहुत सारी महिलाओं को रोजगार के एक तरह के प्लेटफॉर्म देती हैं, एक स्थान देती हैं, वो खुद स्वावलंबी बने, इसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं?
3: जिस भी राज्य में हम लोग काम करते हैं, तो हम बीजों के साथ और फॉरेस्ट के साथ साथ हम वाटरशेड का भी काम करते हैं, और जिस भी राज्य में हम लोग काम करते हैं तो महिलाओं का विकास करना ये हमारी प्राथमिकता होती है। तो उसमें हम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अलग अलग विषयों पे ट्रेनिंग देते हैं, उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलप करने के लिए उनको अलग तरह का प्रशिक्षण देते हैं। अलग अलग पहले है जिसपे हम उनको लगभग 51 तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग जो बोलते हैं वो उनको हम देते हैं, जिसमें अगरबत्ती का मशीन उनको देना, मधुमक्खी पालन करना, या चूड़ी बनाने का काम करना, जो वो अपना घर का काम करके जो काम कर सकती है, तो घर का आमदनी बढ़ाने में भी उनको मदद होती है, और घर को छोड़ के भी उनको जाना नहीं पड़ता। तो इस तरह का माइक्रो एंटरप्राइजेस उनके लिए, और फिर उनका बनाया हुआ जो सामान होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो सामान बनाया जाता है, उसको हम मार्केट प्रोवाइड करने के लिए भी उनको मदद करते हैं। हम IFFCO की एनुअल जनरल मीटिंग में हो, या हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उनके स्टॉल्स लगाना, उनको ऑनलाइन कैसे ट्रेडिंग कर पाएंगे वो अपना सामान, उसके लिए हम उनको अलग अलग तरह से प्रशिक्षित करते हैं।
2: माधवी जी, भविष्य की आपकी क्या योजना है, और हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: योजना ये है कि हम वाटरशेड में अभी भी और काम करें। मेरा ये कहना है कि किसान भाई हमसे, हमारे फील्ड स्टाफ उनसे मिलते हैं, उनसे जुड़ाव हमारा है, काम करने वाले जो हमारे साथी है वो उनसे मिलते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन सीट्स हम उनके वितरित करेंगे तो वो हमसे जुड़ सकते हैं उन राज्यों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में भी हम काम कर रहे हैं।
2: माधवी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे किसान भाई भी इस संस्था से जुड़ सकते हैं और भाई बीज जो बनता है उसके पैसे भी बाजार से अधिक मिलते हैं। और इसके अलावा माधवी जी, आपने बताया कि महिलाओं के विकास के लिए भी काम करती हैं और उनको बाजार देने का भी आप एक कदम उठाती हैं। माधवी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी हमारे भाई ये सुन रहे थे बातचीत किसानों के लिए IFFDC की भूमिका, माधवी एम बिप्रदास जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IFPDC में, और इनसे बातचीत कर रहे थे PS बाटी।
1: बिल्कुल वंदना बहन, देखिए हम अपने भाइयों को बता दें कि हमारे सरकार ने हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से एक योजना है डेयरी उद्यमिता विकास योजना।
0: जी
1: देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर को बढ़ावा देना है।
0: बिल्कुल, और देखिए जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, इसे हम नबार्ड के सहयोग से चलाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य डेयरी फार्म स्थापित करना या दूध की गुणवत्ता सुधारना या किसानों को रोजगार देना तो है ही, साथ ही साथ जो हमारे सामान्य या आरक्षित वर्ग के

0: योजना विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होती है। इसके माध्यम से आधुनिक पशुपालक पालन तकनीकों को अपनाने, पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार और दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर भी जोर देती है।
1: बिल्कुल, और साथ साथ वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुई खाद की यूनिट लगाने के लिए भी सरकार सहायता करती है। और जैसे बछड़ा पालन या संकर गायें, अच्छी नस्ल की भैंस गायें, इन सब के लिए हमारी सरकार अपने किसान भाइयों का पूरा ध्यान रखती है।
0: हाँ, और इसके साथ साथ अपने भाइयों को ये भी बताते चलें, वंदना बहन, के डेयरी उद्यमिता विकास योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। यह योजना दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की पूरी श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने और श्वेत क्रांति को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल, और अगर आप इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने कमर्शियल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक में आवेदन कर सकते हैं, और या इसकी अधिकारी नाबार्ड की अधिकारी वेबसाइट पर भी जाकर पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
0: तो ये तो रही योजना, और अपने भाइयों का कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं योगेंद्र कुमार और साथी के आवाज में ये रागनी
1: जी।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे रागनी योगेश नागर और साथियों की आवाज
1: योगेश
0: में,
1: कुमार और
0: जी
1: साथ में।
0: और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी का दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और 7 बजने को है। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। श्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित कार्य सत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसी बीच श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
3: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेटबेलो जहाज में हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इधर लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। लोकेंद्र भाई देखिए हम फिर से उपस्थित हैं अपने भाइयों के लिए जानकारी और मनोरंजन लेकर। हाँ? और देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO योजना के बारे में।
1: देखिए बिल्कुल हमारी भारत सरकार ने किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजना चलाई है जिस में से एक योजना है किसान उत्पादक संगठन। देखो इस योजना किसानों द्वारा गठित एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को संगठित करके उनकी आय बढ़ाना तथा अन्य कृषि क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने किसानों की को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी बाजार तक पहुंच मजबूत करने के लिए 1000 नए FPO के गठन और संवर्धन की योजना शुरू की है।
0: बिल्कुल। और देखिए कृषि लागत कम करने और उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी।
1: हाँ हाँ।
0: और देखिए इस योजना का बहुत सारे लाभ हैं, जैसे सामूहिक सौदेबाजी आप कर सकते हैं। हमारे किसान भाई एक समूह बना लें, उसमें कम से कम 10 सदस्य हों और इस समूह में आप बीज खाद और कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उसे थोक में खरीद सकते हैं।
1: अच्छा।
0: थोक में सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं और अपनी फसल में डाल सकते हैं या सीधे बाजार में बेहतर कीमत पर बेच भी सकते हैं।
1: बिल्कुल। देखिए इस योजना के अंतर्गत हम अपने भाइयों को ये भी बताते हैं FPO के वो प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधा संबंधी सुविधा प्रदान भी की जाती है वंदा बहन। और सरकार FPO को प्रारंभिक वर्षों में वित्तीय सहायता की भी उपलब्ध कराती है जिससे संगठनों को मजबूत आधार मिले और इसके अलावा बैंक ऋण और अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और सरकारी जो अनुदान है इसमें सब्सिडी जो है वो FPO के गठन, पंजीकरण और शुरुआती 5 वर्षों के संचालन के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और प्रशिक्षण के लिए अगर बात करें तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी उन्नत खेती और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर या विदेश में भी जाकर उनका भ्रमण के अवसर मिलता है।
1: बिल्कुल वन्ना बहन, ये तो रही हमारे भाइयों के लिए योजना जिसका नाम था किसान उत्पादक संगठन
0: जी।
1: योजना। और अपने भाइयों को कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत सुनवाते हैं ये जानकारी सरकार के 12 साल के कार्यकाल और जानकारी दे रही हैं संध्या गुप्ता
0: जी।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आइए बात करते हैं उन लाभार्थियों से जो सरकार की जनकल्याणकारी, कृषि कल्याणकारी, रोजगार उन्मुखी और नवाचार से प्रेरित योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
3: जितेंद्र मलिक, ग्राम प्रधान फोना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से हूं। मैं एक समाज सेवी होने के साथ साथ एक किसान भी हूं। मैं पिछले 2 योजनाओं से अपने ग्राम प्रधान होगड़ा में प्रधान पद पर रहते हुए गांव की सेवा कर रहा हूं। मैंने सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी ग्रामवासियों को दिलवाया है। जैसे गाँव में जिला पंचायत द्वारा करीब 50 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है। अमृत सरोवर के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधों का रोपण कराया गया है। चारों ओर पैदल पथ का निर्माण कर उस पर सौर ऊर्जा वाली लाइटें, बेंच बैठने के लिए का निर्माण भी कराया गया है। तालाब में बत्तखों, अन्य जल जीव भी छोड़े गए हैं। पेड़ों की सुरक्षा हेतु चारों ओर तार भी लगाई गई है जिस पर सुबह शाम गाँव व पास के गाँव वाले भी घूमने के लिए अच्छी स्वच्छ वातावरण, खुली हवा का आनंद लेते हैं। हमारे गांव सरकारी योजनाओं से 100% सीसी युक्त बन गया है और जल निकासी का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। और हमारे गांव में लगभग 1500 परिवार रहते हैं

0: और हर घर जल योजना के तहत 100% घरों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, और हर घर से कूड़ा कलेक्शन कराकर आरसीसी सेंटर पर भिजवाया जाता है, और आरसीसी सेंटर पर केचुआ द्वारा जैविक खाद भी तैयार करा जाता है जो किसानों को उपलब्ध करा दिया जाता है। उसे खेती में उर्वरक जो है जैसे यूरिया डाई उसका इस्तेमाल कम कराया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे गांव को 3 बार प्रधानमंत्री पुरस्कार, 1 बार मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मान प्राप्त हुआ है। सम्मान के रूप में मिली धनराशि से गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा का लाभ मिल सके। हमारे गांव में सभी सरकारी योजनाओं का 100% लाभ दिलाया जाता है। हमारे गांव में किसानों से संबंधित सरकारी योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्र, खेतों में पाइपलाइन का लाभ भी किसानों को दिलाया गया है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलाया गया है। सोलर पंप भी हमारे गांव में काफी किसानों द्वारा लगाए गए हैं। हमारे गांव में किसान द्वारा जैविक खेती भी की जा रही है, और तालाब के चारों ओर 16 लाइटें लगाई गई है, और गांव में भी करीब 20-25 सोलर लाइटें लगाई गई है, जिसमें अगर गांव में रात को बिजली गुल हो जाती है तो उसके बाद भी पूरा गांव जगमगाता रहता है। जी, मैं अपनी तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार ने जो भी सरकारी योजना इतनी चलाई है उसका लाभ मैं तो कहता हूँ हर ग्रामवासियों को, हर गांव वालों को, हर जिम्मेदार आदमी को इसका उपयोग सही मात्रा में करते हुए हर आदमी को जागरूक करना चाहिए, और सरकार की जितनी भी सरकारी योजना है उनका लाभ मिलता रहे। और इसके मैं एक बार पुनः सरकार का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
1: हमारा नाम गंगाराम चौहान है, गोरखपुर के रहने वाले हैं। अटल इनोवेशन मिशन यानी नीति आयोग का एक विभाग है, उसमें अटल इनोवेशन मिशन ECIC अटल नवाचार सामुदायिक केंद्र में नवाचारी के पद पर कार्यरत हैं। ये मोदी जी जो अपने कार्यकाल में ये विभाग लाए थे, उसके तहत हम नवाचारी जो भी आइडिया आता है उसको बनाते हैं, खास तौर से कृषि यंत्र बनाते हैं और आजीविका के लिए भी कृषि यंत्र बनाए हैं, नवाचार करते हैं। सुविधाएं में ये है, नवाचारी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है जो पहले से सोच रहे थे, और मानदेय भी मिलता है, आइडिया को डेवलप करने के लिए संसाधन मिलता है, और हमको रहने खाने पीने की सुविधा दी गई है और आने जाने की सुविधा दी गई है। हमारा केवल आइडिया और शारीरिक श्रम लगता है, उसको बनाने के लिए संसाधन सरकार से मिलता है, रहने खाने पीने की सुविधा सरकार से मिलती है, तो एक पैसा नहीं लगाना है, केवल संसाधन का उपयोग करना है। ये योजना जो केंद्र सरकार का योजना है कि हम जैसे नवाचारियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और मिला भी, वो धन्यवाद के पात्र हैं।
2: नमस्कार, मैं निशा निरंजन, फाउंडर एंड सीईओ वीएन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी मशरूम पे काम करती है और हम मशरूम से कई सारे उत्पाद बनाते हैं। किसानों को मशरूम की खेती के लिए ट्रेन करते हैं। 2022 में मुझे RKVY रफ्तार की एक ग्रांट मिली थी, जिससे हमें काफी हेल्प मिली। जो फंड हमें मिला था उसको हमने डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स बनाने में, मशीन लगाने में और किसानों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया, और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हम काफी अच्छे से अपने किसानों के साथ ऑनबोर्डिंग कर पाए, उनको चीजों को समझा पाए और उनके लिए बेसिक रॉ मटेरियल अपनी फैसिलिटी में तैयार कर पाए। और उसकी वजह से आज हमारे पास लगभग 10,000 किसान हैं पूरे इंडिया में जो हमसे कनेक्टेड हैं, जो हमारे लिए मशरूम उगाने के लिए तत्पर हैं, और हम अब धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं। रिसेंटली अभी 2026 में ही मुझे RKVY का एक दूसरा ग्रांट मिला है जो एक्सपेंशन ग्रांट है। पहले हमें सीड ग्रांट मिला था, अब हमें एक्सपेंशन ग्रांट मिला हुआ है। तो उस ग्रांट का अभी हमारा टारगेट ये है कि हम जो अब बेहतरीन उपकरण को लेके आएंगे और उनसे हम जो प्रोसेसिंग का काम है और जो मार्केटिंग का काम है, ये सब हम प्लान कर रहे हैं। तो मशरूम एक कह सकते हैं भविष्य की खेती है, क्योंकि इसका कार्बन एमिशन इंडेक्स काफी कम है। दूसरा, इसको उगाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, और ये फार्मर और लैंडलेस फार्मर्स जो हैं, जो घरों में रह रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन व्यवसाय है। सरकार से बस

0: चीजें हैं कि जिस तरीके के सपोर्ट हमें मिलते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट हमारे लिए डेडिकेटेड मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाए, तो मैं चाहती हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुछ इस टाइप के इनिशिएटिव रन किए जाएं जो इनको इन्फॉर्मेशन दें कि क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है और क्या क्या वो उस चीज का फायदा ले सकते हैं। जैसे मैंने निधि प्रयास जो है DST की स्कीम है उसके अंडर भी मुझे ग्रांट्स मिला हुआ है। वो डेडिकेटेडली ग्रांट हमें मिला था प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो ये 10 लाख का एक स्कीम होता है उनका, वो डेडिकेटेडली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ही रन करते हैं। तो वो एक स्कीम भी मुझे मिला हुआ है। और क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है तो किसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट RKVY और इस टाइप की जो स्कीम्स हैं उसमें किसान आराम से अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए डेडिकेटेड स्पेस भी बनाई गई है इन स्कीम्स में। जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मशरूम सीखने के लिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं और उनको प्रोजेक्ट बनाना ये सब बहुत मुश्किल नहीं होता, तो उनको हम डेडिकेटेडली बैठा के ट्रेन करते हैं कि ये स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की एंड आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो बेनिफिट लिए हैं। सरकार हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि मैंने बाहर भी काम किया है देश के, एंड जिस टाइप का इकोसिस्टम हमारे देश में है, मुझे गर्व है कि हमारे पास हर पॉइंट पे सपोर्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम बिल्ड किया गया है। और वहां पे जो इनेबलर्स हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो काफी कीन होते हैं हमको सिखाने और समझाने के लिए। मतलब गवर्नमेंट से जो हम सीख कर सकते हैं एक बहुत बड़ी हेल्प है।
1: मैं अशोक मनवानी, इंडियन पर्ल कल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। हमें भारत सरकार के RKVY रफ्तार, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सहयोग से हमें 25 लाख रुपए की ग्रांट 2020-21 में प्राप्त हुई, जिससे हम भारत सरकार का ये ग्रांट जो है वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसके सहयोग से मोती उत्पादन यहीं कर रहे हैं। इसमें हमने ऑर्गेनिक पर्ल डेवलप किए हैं, नेचुरल पर्ल फार्मिंग डेवलप किए हैं, जिसे भारत के कई किसान और स्टूडेंट इसको लाभ लेते हैं। हमारे इस फंड से हमने टूल्स बनाए और नए नए रिसर्च किए, 10 पेटेंट प्राप्त किए और अन्य अन्य विभागों की सीपियों से हमने बहुत सुंदर सुंदर मोती बनाए हैं। हम लोग भारत के पहले स्टार्टअप हैं। हम पिछले 28 सालों से इसी कार्य को कर रहे हैं और भारत सरकार की ऐसी योजनाओं से जो नवाचारी किसान हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। हम ऐसी योजनाएं जो इनोवेटर्स के लिए, ग्रास रूट के लिए बनाई जा रही हैं, बहुत लाभप्रद है और इसका मैं जीता जाता सबूत हूँ। तो मैं किसानों से कहूंगा कि ऐसी योजनाओं पर ध्यान दें और अपने नवाचार को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।
2: मेरा नाम मनोज है, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, छोले कुलचे पराठे लगाता हूँ। मैंने PM स्वनिधि का लाभ लिया था और 10,000 लिए थे पहले, फिर उसके बाद 20,000 लिए थे, दोनों लोन चुका दिए। उसके तहत मेरा काम ठीक चलने लगा है। मैं इसके लिए सरकार के लिए धन्यवाद करता हूँ।
3: नमस्कार जी, मैं दिनेश बोल रहा हूँ, मैं PM स्वनिधि का लाभार्थी हूँ। मुझे PM स्वनिधि से 50,000 रुपए मिले थे और मैंने अपना स्टोर लगाया है दिल्ली में, व्यापार सही हुआ है और मैं इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ।
4: मेरा नाम पवन कुमार है, मेरा गांव गौरोट है, जनपद है वो अलीगढ़ है। PMEGP मैंने लाभ ले लिया है मधुमक्खी पालन का, बस सब्सिडी मिली थी मेरे को 35%। मैंने मधुमक्खी की पहले ट्रेनिंग दी है, जो है हमें इस योजना से लाभ मिला और हम इस काम को और बढ़ावा देना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं जी हम सरकार का।
5: मैं अंकुर चौधरी, विलेज राजगढ़, पोस्ट गढ़ी बुक, डिस्ट्रिक्ट शामली। मैं PMEGP के अंतर्गत मधुमक्खी पालन से अनुदान लिया है और मैं पिछले 2 साल से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग ली, कार्य शुरू किया, 50 बक्से से मैंने कार्य किया था। वर्तमान में मेरे पे 200 बॉक्स है। मुझे केवल प्रशिक्षण प्राप्त करना था, मैं PMEGP के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। जो वर्तमान में मैम कोई आती है तो योजना का लाभ लेना चाहेगी, भारत सरकार का बहुत सराहनीय कार्य है, हम बहुत खुश है, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
6: नमस्कार, मेरा नाम ध्वज बालियान है, मैं जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मैं मधुमक्खी का प्रशिक्षण देता हूँ और इसके साथ साथ ही किसानों को जागरूकता का भी काम करते हैं, KVK से हमें कैसे प्रशिक्षण लेकर अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए, हॉर्टिकल्चर से हमें क्या अनुदान मिलता है जिससे हम अपना व्यवसाय आगे बढ़ाए, और खादी ग्राम योजना के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं किसानों को मिलती है और

0: किस तरीके से वे अपने काम की अच्छे से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा नौजवान बेरोजगार के ना रहे और आने वाले समय में वे उससे अच्छा लाभ कमाए। इस प्रकार भारत सरकार की निम्न योजनाएं हैं जिससे हम जनता से सीधा संवाद करते हैं और उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, जिससे बहुत किसान भारतवर्ष के योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे किसान मधुमक्खी पालन से शहद और जिससे किसानों की फसल की पैदावार भी बढ़ती है और किसान इस पर सब्सिडी देती है, जिस योजना के तहत किसान बड़े खुश है और इस योजना का लाभ उठाते हुए वे अपना कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो किसानों के खाते में सीधा अनुदान देते हैं, जिससे बीच में बिचौलिया भी नहीं होता और जिससे किसान पैसा लेकर अपना अच्छे तरीके से अपना काम और व्यवसाय आगे चला पाता।
1: नमस्कार, मैं नीलम यादव, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, मेरे गांव का नाम ढाणी चितर से है ना, और मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हूँ, स्वयं सहायता समूह, जो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हूँ। सन 2017 में मैंने अपने ग्रुप की स्थापना की थी और जिसका नाम था देव महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। जब मैंने सन 2017 में इसकी स्थापना की तो मैं मतलब कि एनआरएलएम से जुड़ गई, और उसके जुड़ने के बाद मुझे भारत सरकार से रिवॉल्विंग फंड मिला 10,000 का, जिससे महिलाओं की काफी मदद हुई। और उसके बाद हमें 6 महीने बाद सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से 50,000 सरकार की तरफ से हमें लोन मिला, जो कि हमें किस्तों में चुकाना पड़ रहा था। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसमें हम अपनी 100 रुपये 200 रुपये की हम बचत करते हैं, और जिसमें हम सभी महिलाएं, जो 10 महिलाएं होती है वो जमा करती है। कि सरकार ने हम महिलाओं के लिए जैसे कि जियो खुले हुए है, जैसे कि रूट सेट सेंटर हो गया, उससे हमें ट्रेनिंग ली अचार पापड़ मसाले की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। हमारे यहाँ पे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, जिससे भी वहाँ महिलाओं को ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आर्य प्रोजेक्ट से मतलब कि महिलाओं को जोड़ते हैं। आर्य प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि महिलाओं जब 21 दिन की वहाँ ट्रेनिंग लेती है 10 महिलाएं, तो उनको अपना काम चलाने के लिए कि हो गई ओवन हो गई सीलिंग मशीन हो गई, इस तरह का सामान दिया जाता है, जिससे महिलाएं जो गांव की गरीब महिलाएं जब सामान नहीं खरीद सकती, उनको कम से कम 1 लाख रुपए का सामान दिया जाता है और वो अपना मतलब कि कार्य उसे शुरू कर सकती है। दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र पे होता है कि महिलाएं अपना खुद की जो घर की साग सब्जियां है, जो किचन गार्डन करना चाहती है, उनको भी सरकार की तरफ से बीज दिए जाते हैं, पेड़ पौधे दिए जाते हैं। और जो महिलाएं जो पशु रखती है, पशु रखने के बाद जैसे कि गोबर हो गया, तो उसको भी सरकार की तरफ से काफी सहायता मिलती है। मेरे को उस टाइम 10,000 रुपये मिले थे, जिससे मैंने मतलब कि केचवे मिले थे और टीन सेट का खर्चा मिला था, और जिससे मैंने अपना वर्मिंग कंपोस्ट का काम शुरू किया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, जिन्होंने महिलाओं को इतना सपोर्ट किया और आज महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है। धन्यवाद।
2: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: अभी हमारे भाई सुन रहे थे कृषि समाचार दर्शन संध्या गुप्ता के साथ। सरकार के 12 साल के कार्यकाल का समय, इसमें संध्या गुप्ता ने हमारे किसान भाइयों से बातचीत की थी और योजनाओं का उन्होंने किसानों ने बताया कि उनको कौन सी योजना से क्या लाभ हुआ।
4: बिल्कुल, ये तो रही कृषि समाचार दर्शन की अंतर्गत जानकारी, और अपने भाइयों को कराते हैं, मनोरंजन सुनवाते हैं उदयपाल से ये उपदेश।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे उदय पाल की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। समय हुआ है 7:30। आइए सुनते हैं

0: कार्यक्रम गजल यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। शाम के 7:45 होने को है। अब कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना।
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा ट्री प्लांटेशन अभियान 2026 की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान तेज, सफाई अभियान में कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। और दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महीने की 22 तारीख से एक पेड़ मां के नाम दिल्ली विशाल वृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत की घोषणा की। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 70 लाख पौधे लगाने के साथ इस पहल का लक्ष्य दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार द्वारा पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे ग्रीन वॉरियर्स के रूप में इस पहल से जुड़े और हरित दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक नई गौरव गाथा लिखी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि विश्वास, विकास और जन कल्याण के संकल्प ने देश को तेजी से विकसित भारत की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ नियंत्रण और जल जमाव को रोकने की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बाढ़ नियंत्रण आदेश 2026 जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉनसून के दौरान दिल्ली के निवासियों को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि जलजमाव वाले इलाकों में पंपों की संख्या बढ़ा दी गई है और जलजमाव की आशंका वाले हर चिन्हित स्थान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नालियों की समय पर सफाई, मोबाइल पंपिंग सिस्टम की उपलब्धता और सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे सातों दिन निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और JJ क्लस्टर पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 JJ क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के भी निर्देश दिए। इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह नीति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
5: दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम, जहां कोई भी नागरिक नारकीय जीवन नहीं जिएगा झुग्गियों में। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में वो पॉलिसी तय कर दी है, जहां झुग्गी में रहने वाले मेरे बहन भाई अपने बच्चों को सुंदर मकान में रहते हुए बढ़ते हुए देखेंगे और हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित

0: और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: दिल्ली में कल से इस महीने की 20 तारीख तक शहर भर में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। शिविरों में नागरिकों को केंद्र और दिल्ली सरकार की योजनाओं की जानकारी, सेवाएं तथा सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान तेज किया गया है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज मॉडल टाउन क्षेत्र में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। श्री सिरसा ने लोगों के साथ मिलकर पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता जरूरी है और इसे जन आंदोलन का रूप दिया गया है। श्री सिरसा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
2: जब से प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस सेवा को संभाला है तब से स्वच्छता के ऊपर उनका बहुत जोर, जन कल्याण के कामों के साथ साथ स्वच्छता पे बड़ा फोकस है इस सरकार। तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार आज पूरी दिल्ली में स्वच्छता अभियान चल रहा है। हमारी सारी पार्टी के संगठन के लोग और हम सब ने मिलकर, निगम पार्षद, MLA सभी लोगों ने मिलकर एक बड़े स्वच्छता अभियान को यहाँ पे किया।
1: वहीं दिल्ली में विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी के साथ कालकाजी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ भारत का संकल्प आज जन आंदोलन बन चुका है और इसी दिशा में दिल्ली भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की।
3: भारत को महाशक्ति बनाने का जो दौर था प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, वो संभव होना शुरू हुआ और उसमें जो उन्होंने एक संदेश दिया स्वच्छता का, उसी संदेश पे अमल लाते हुए आज पूरी दिल्ली भर में, देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी गण, संगठन के लोग, सरकार के लोग सब मिलके ये स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और हम यहाँ पर आए हुए हैं।
1: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आज राजधानी के सभी 256 मंडलों में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान श्री मल्होत्रा ने कहा कि राजधानी को स्वच्छ रखने के लिए सभी नागरिकों को कूड़ा इधर उधर न फेंकने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने नगर निगम के सफाई कर्मियों के कार्य की सराहना की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने अभियान के माध्यम से सेवा ही संगठन के संदेश को दोहराते हुए नागरिकों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील की। अभियान में विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिदुड़ी सहित अन्य सांसद और मंत्री शामिल हुए। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज नजफगढ़ स्थित साईं बाबा मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। श्री सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन आज जन आंदोलन बन चुका है और जो नागरिकों को स्वच्छता और जन भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की पहचान मजबूत की है। श्री सिंह ने दिल्लीवासियों से अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान देने की अपील की।
4: स्वच्छता तो प्रधानमंत्री जी का एक टिक है कि सुंदर भारत, साफ भारत, स्वच्छ भारत रहे, उसी के प्रयास, उसी के मार्गदर्शन में हम प्रधानमंत्री जी के आज इस मंदिर के प्रांगण में आके स्वच्छता का काम कर।
1: केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कल नई दिल्ली में खाद्य प्रबंधन के लिए स्मार्ट भंडारण प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। तकनीक आधारित इस प्रणाली का उद्देश्य भंडारण प्रबंधन पद्धतियों और कार्य प्रणालियों को मजबूत करना है। इस प्रणाली के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया, भारत AI मिशन, PM गतिशक्ति और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।

0: दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े 8 सदस्यों वाले एक अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 के दौरान इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने, पोस्टर के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स का महिमामंडन करने और आईएसआई समर्थित संगठन तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान का प्रचार प्रसार करने का काम सौंपा गया था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क के सदस्यों से जुड़े पोस्टर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए शहजाद भट्टी नेटवर्क के सदस्यों के सीधे संपर्क में थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव तथा शिक्षा निदेशक शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक में दिल्ली के सभी स्कूलों का व्यापक ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। श्री संधू ने शिक्षा विभाग के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापन। यह विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की और संकेत करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
1: लैंड रेस्टोरेशन इतना इम्पोर्टेंट काम है कि लोगों के जीवन में नई आशा, समृद्धि और जीवन की नई संभावनाएं लेकर के आता है और इसलिए आज इस समय की आवश्यकता है कि हम विकास और इन चीजों को, जैव विविधता के संरक्षण को, पशुधन आधारित आजीविकाओं को, जल चक्र के विनियमन को, कार्बन के संचयन को और जलवायु में फ्लेक्सिबिलिटी को लाकर हम एक भूमिका को निभाएं।
0: राजधानी में आज धूप रही और हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा धूप रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा ट्री प्लांटेशन अभियान 2026 की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान तेज, सफाई अभियान में कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया और दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डर फिल्म के ऐसे गाने के साथ कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइट न्यूज 24/7 चैनल है और अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: तब तक के लिए मुझे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपये की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172

0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न

0: राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयीय समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts

0: IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबराह इजलास 2026 के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम दोतरफा मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने मगरबी एशिया में अमन के कयाम की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि भारत हमेशा समंदरी रास्तों पर जहाजों की आमदोरफ्त की आजादी की अहमियत पर जोर देता रहा है और तमाम मुल्कों को इसके तहफ्फुज के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में बहरी तजारत के शोबे से वाबस्ता लाखों भारतीय मल्लाह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी सलामती भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मसनूई जहानत AI के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर मुनक्दा वर्किंग लंच में शिरकत की। इस इजलास में G7 के रुकन मुल्कों, शराकत दार ममालिक और मसनूई जहानत की मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक हुए, जहां डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर ख्यालात का तबादला किया गया। वजीर आजम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाज़ा भी शामिल था। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में चांसलर मर्स के भारत के कामयाब दौरे और रवां साल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के मुजाकरात की तकमील का भी जिक्र किया गया। चांसलर मर्स ने वजीर आजम मोदी को इस साल जर्मनी में मुनक्किद होने वाली 8वीं भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने सरबराह इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लैन और यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो द कोस्टा के साथ भी मीटिंग की। पेरिस में जारी विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर भारत और फ्रांस ने इख्तराम मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तावुन के अपने अहद को दोहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और फ्रांस की मसनूई जहानत और डिजिटल उमूर से मुतालिक वजीर एनेली हेनाम्फ ने दोनों ममालिक के माबैन कलीदी शराकतदारी की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इख्तराकारों और स्टार्टअप से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मीखों के जरिए भारत फ्रांस इख्तरा के साल 2026 के ऐलान के जरिए भारत और फ्रांस की शराकतदारी मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मसनूई जहानत AI के दौर में भारत को कई नुमाया फवायद हासिल हैं, जिनमें नौजवान आबादी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी स्टेम के माहिरीन की बड़ी तादाद, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी शामिल हैं। उन्होंने भारत फ्रांस इख्तरा के साल का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों के जरिए बढ़ता हुआ तआवुन नई राहों और मौके को जन्म दे रहा है। काबिले जिक्र है कि विवाटेक 2026 में कायम इंडिया पवेलियन कौमी सतह के सबसे बड़े पवेलियन में शुमार होता है, जहां भारत के तेजी से फरोग पाते हुए स्टार्टअप्स और इख्तराई माहौलियाती निज़ाम की भरपूर नुमाइश की जा रही है। पेरिस से महेश चोबड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय बिरादरी के अफराद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके खैर मकदम के लिए तैयारियां जारी हैं। कल सुबह वजीर आजम मोदी सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंगें करेंगे और तवक्को है कि यह तबादला ख्याल दोपहर तक जारी रहेगा। इसके बाद वजीर आजम मोदी

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी।

0: लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद। जय हिंद।
0: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कल पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
2: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर्स का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाइयां है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर, सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना, ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इससे बनाया है, तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो 15.6%, वो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा, और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 crore, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 crore है, प्राइवेट प्रोडक्शन, यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 crore में प्राइवेट का contribution है, that's almost about the same as what was the total defense production of 2014.
0: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
1: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की, जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो

0: यह है जो तुर्की के आसपास है, पहले तो ग्रीस है, आर्मीनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे, 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, हम इंपोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है, यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
2: देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसका फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, L&T हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 178,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इट इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो, और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो, तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर 1। नंबर 2, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने Mark 1 बनाया है, हमने बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको Mark 2 बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस, सप्लाई, स्पेयर, उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें DRDO की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीने हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IITs है, वहां के बच्चे बड़े होशियार हैं, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो आगे आते हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम यहाँ, जैसे आप कह रहे हैं, वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी, ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा 2 साल हो गए, 2 इंजन नहीं आ पाए, 2 साल हो गए, क्यों उनके भरोसे, उन्होंने कहा नहीं हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे इसलिए। अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर एफसीए प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं।

0: देगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत, उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है। तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज ड्रोन यानी UAV, बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है, उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17, एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है, वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, 8-10 साल हमें ये पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी, तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहाँ खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
0: देखिए ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करते, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इस तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें, जरूर चाहे स्टार्टअप्स के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल सिस्टम हो या उसके सीकर्स हो या उसके पास फोटोग्राफिक देते, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप्स के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे, कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम

0: हमारे लिए है, इस आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है। और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी आप सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे हैं। और वो उस मापे का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो। उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है, +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशंस है। तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं, इसमें रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, UAVs को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस है, नेविगेशनल है, जो जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिलकर के अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके। जो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है क्योंकि तो डिफेंस कॉरिडोर बने हैं, उसमें बहुत जरूरी है। या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर है। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी। फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी। और सबसे बड़ी बात, अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे। जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं, R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। जब आप ग्रो करेंगे तो जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूँ बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए। और वो ट्रेंड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI हैं वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा वो, जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
0: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब रहे, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रुक रहना है, उससे और आगे बढ़ना है, अगर नंबर वन जीडीपी वाला अगर 22 ट्रिलियन डॉलर का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 ट्रिलियन डॉलर का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15

ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है, यह हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए। लड़ाई अगर होगी तो जिससे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली मारी है और अब वो

0: पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3 से 5 साल में बदली हो जाती है। आज देखेगा कौन सा है वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फटाफट कौन सा जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने, रफेल इम्पोर्ट किया, 4.5 जनरेशन, 5th 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब अब भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस तरह, जो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने एक बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने यूएवी है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक यूएस के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है, जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब वेन यू ट्रेंड वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है, और देश जिस मकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची हैं जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट, फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया, जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवार्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्ध पोते मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मीनिया को आर्म कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ, और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाइप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन की, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यहीं इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई है उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है, और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करने, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहाँ कि आपने ये बनाना है, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे, 20 साल लगे, लगते हैं इतने, जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे, अब जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे, जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D, वेरी स्ट्रांग R&D, अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हैं, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
0: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना

0: बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये भरना करना पड़ेगा, ये हमारा है और हमने इसको आले दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर अगले 5 साल के अंदर। एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3 लाख करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू।
0: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष

0: उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोम ताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। स्मृति मांदना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump in Avignon, France, on the sidelines of the G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India. Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. On the margins of the G7 summit in Avignon, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission Ursula von der Leyen and President of the European Council Antonio Costa on the sidelines of the summit. The G7 leaders adopted three key declarations aimed at promoting balanced, durable and resilient growth, securing critical mineral supply chains and creating a safer digital space for miners, with several partner countries extending support to the initiatives. During the G7 summit in Avignon, France, the leaders issued a statement on balanced and resilient growth, stressing the need for stable energy markets, secure supply chains, and reforms in global economic institutions. They emphasized the importance of restoring safe navigation through the Strait of Hormuz, avoiding arbitrary export restrictions, and addressing widening global economic imbalances. The leaders also called for greater preparedness to tackle the emerging risks and opportunities arising from artificial intelligence and quantum technologies. The leaders also adopted a declaration focused on creating a safer digital space for miners. India joined Brazil, Egypt, Kenya and South Korea in backing the call. India and the United Kingdom today announced that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will enter into force on 15 July this year. The Ministry of Commerce and Industries informed that the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will come into effect on the same day. The ministry also noted that the period of exemption under DCC has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers. Hailing the agreement as a triumph of economic statecraft, Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the simultaneous enforcement of the CETA and the Double Contribution Convention will open up significant new opportunities for India's exports. Prime Minister Narendra Modi has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, which will enter into force on 15 July this year, will significantly boost the bilateral trade and investment between India and the United Kingdom. In a social media post, Mr. Modi said the agreement will also unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators and contribute meaningfully to the realization of Viksit Bharat 2047. In cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series in Lucknow to take an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, India posted a massive 402 runs in 49.4 overs before being bowled out, powered by Shubman Gill's 154 and Ishan Kishan's 125. For Afghanistan, Karoti picked up 4 wickets, while Rashid Khan claimed 3. Earlier, Afghanistan won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वे 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं कलाकार कुबेर कोटियाल की आवाज में गढ़वाली गीत। संगत कलाकार है बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना, हारमोनियम पर जाकिर धोलपुरी, ढोलक पर मदन कुमार।

कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार कुबेर कोडियाल की आवाज में गढ़वाली गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद साकिब का राग बिहाग में गायन। तबले पर संगत कर रहे हैं समीर खान।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे थे मोहम्मद साकिब का राग बिहाग में गायन। तबले पर संगत कर रहे थे समीर खान। ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। अब कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और

0: ट्रांसलेंट नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, दोस्ती में नाराजगी भी चलती है, टकरार भी चलती है, मगर सबसे कठिन वो पल है जब मिलने का इंतजार लंबा चलता है।
1: तो अपने श्रोताओं का इंतजार भी लंबा नहीं करते और पढ़ देते हैं उनकी मेल। तो सबसे पहला मेल जो हमारे पास आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवान का आया है।
0: साथ ही दिल्ली से फरमाइश आई है मनीष, सपना, तनिष्कार, रणवीर, एसपी सिंह, प्रियाशी और बेबी वेदांशी की।
1: और दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, नन्हे मुन्ने अवंतिका, तनुश्री गुप्ता। साथ ही नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा से जुड़ रहे हैं और बीड शहर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं। तो अगली फरमाइश के लिए चलते हैं आगे, सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम का।

0: जी हाँ दोस्तों, चोरी चोरी का उसका ख्याल आना, बेवजह चेहरे पर मुस्कान आना, प्यार का ये एहसास कुछ ऐसा है कि हर दिन एक नया सपना दिखता है अपने प्यार को।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही सपने हमारे श्रोता भी देखते होंगे कि उनकी पसंद का गाना भी उनको सुनवा दिया जाए, तो उनके सपनों को तो पूरा किया ही जा सकता है। तो फरमाइश इस गीत की हमारे पास आई थी मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे की। और इस गीत की फरमाइश चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने भी की थी। और मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्ष मलिक और माही मलिक की फरमाइश थी। तो चलिए बढ़ लेते हैं अगले गीत की तरफ, और अगला गीत है

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहे, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, यूं ही दिल की बातें कम ना रहे। खामोशियों में भी जो समझ आ जाए, ऐसे रिश्ते उम्र भर संग रहे।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही हमारा रिश्ता हमारे श्रोताओं के साथ उम्र भर रहे, ऐसी हमारी कामना है। तो अगला संदेश जसपुर उत्तराखंड से है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर का। अगले संदेश के साथ जुड़ रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। साथ ही जलालाबाद वेस्ट से हमारे श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित अहूजा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ, जो है हमारे श्रोताओं की फरमाइश।

0: दोस्तों, जब गीतों में प्यार की खुशबू घुल जाती है ना, तो हर धुन दिल के करीब आ जाती है। कुछ नगमे यादों में छू जाते हैं, तो कुछ किसी को खास का एहसास दिला देती है।
1: बिल्कुल, और हमारे लिए खास हैं हमारे सभी श्रोता और उनके आए हुए संदेश। तो पढ़ देते हैं अगला संदेश। गुरमीत सिंह मीता जी का संदेश है, साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अगले संदेश के साथ एस एम जावेद शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से, और उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर भी जुड़ रहे हैं। तो कार्यक्रम में अब वक्त एक और प्यारे से गीत का, जिसकी फरमाइश की है हमारे श्रोताओं ने।

0: उसने बस इतना कहा कि आ जाओ, उसने बस इतना कहा कि आ जाओ, और हम सारे काम छोड़कर चल पड़े। मोहब्बत में हुक्म नहीं चलता जनाब, बस एक पुकार पर कदम खुद चल पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे कदम भी बढ़ जाते हैं हमारे श्रोताओं के संदेशों की तरफ। तो ये संदेश आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा को, लिखते हैं, नमस्कार विजेता और प्रिया बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जी आपका भी कार्यक्रम में अभिनंदन है। और अगला संदेश आदर्श नगर

और पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ, शायना और मेंडी शर्मा का है। साथ ही राहुल नगर अमरावती से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामणि शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। तो हम बढ़ देते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: तो दोस्तों, दिल्ली का मौसम का भी अलग ही बात है। कभी बादलों का महफिल तो कभी धूप, पल भर में बदल जाए अपना अंदाज, यही तो इसकी सबसे अलग ही बात है दिल्ली के मौसम की।
1: और बिल्कुल ऐसे ही गीत की फरमाइश हमारे श्रोताओं ने की थी, जहाँ चाहे बारिश हो या ना हो, लेकिन उसका एहसास रिमझिम वाला ज़रूर हमारे श्रोताओं को हो गया होगा। और इसी के साथ बरसात हमारे श्रोताओं के संदेशों की भी हो रही है। अगला संदेश हमारे पास आया पटियाला पंजाब से, सोमदत्त, कैरब, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। और अगले संदेश के साथ हैं हमारे श्रोता पटेल नगर मलौट से, डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप, आरजू और गुड्डू, किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल जुल रहे हैं शास्त्री नगर बीट शहर से और कर रहे हैं इस गीत की फरमाइश।

0: जी हाँ दोस्तों, हर लड़की का एक सपना है कि चांदी रातों में एक ख्वाब सजोए बैठी है। दिल में अपने लिए राजकुमार सोचा है, उम्मीद की डोरी थामे बैठी हूँ कि किसी दिन मैं भी बनूंगी राजा की रानी।
1: बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं की भी उम्मीद है कि उनका ईमेल जो है शामिल हो जाए कार्यक्रम में। तो ये आखिरी ईमेल है जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, क्योंकि समय कम है। तो ये संदेश है अस्तुपुर जिला मऊ से मजहर अली अंसारी का, राजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, और बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रिजवान परवीन का। तो आपकी फरमाइश पर सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया और विजेता आपसे विदा लेते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, GRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं सुबह 4:50 पर। आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे AIR लाइव न्यूज 24/7 पर। हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियाओं में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। भारत ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल से जुड़ी घोषणा का समर्थन किया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनाफ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशन

0: स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए एआई और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump in Evian, France, on the sidelines of G7 summit. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi condemned President Donald Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance of India. On the margins of the G7 summit in Evian, Prime Minister Modi and the German Chancellor Friedrich Merz exchanged the views on regional and global development, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. PM Modi also held a meeting with President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Antonio Costa, on the sidelines of the summit. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not on the power of machines, but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life. However, he underlined that the technology must be guided by values, responsible design and effective governance. Highlighting the need to protect children in the digital age, the PM Modi cautioned that while AI can enhance learning and creativity, it can also expose young users to misinformation, deep fakes and exploitation if proper safeguards are not put in place. The G7 leaders adopted 3 key declarations aimed at promoting balanced, durable and resilient growth, securing critical mineral supply chains and creating a safer digital space for miners, with several partner countries extending support to the initiatives. During the G7 summit in Evian, France, the leaders issued a statement on balanced and resilient growth, stressing the need for stable energy markets, secure supply chains and reforms in global economic institutions. They emphasized the importance

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुरों का सफरनामा कार्यक्रम।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की शाम बेहद खास है, क्योंकि आज हमारा कारवां रुकने जा रहा है एक ऐसे शख्स के दर पर जिसने अपने कलम से जज्बातों को वो जुबां दी जो सीधे दिल के पार उतर गई। एक ऐसा नाम जो पत्रकारिता के गलियारों से निकला और बॉलीवुड के सुनहरे पन्नों पर अपना नाम अमर कर गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर शायर, बेबाक पत्रकार और बेमिसाल गीतकार हसन कमाल साहब की। 1 जनवरी 1943 को नवाबों के शहर लखनऊ में जन्मे हसन साहब ने अपनी पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरी की। उनके शब्दों में लखनऊ की वो तहजीब और नफासत हमेशा झलकती रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो एक जाने माने पत्रकार थे? जी हाँ, साल 1965 में उन्होंने मशहूर ब्लिट्ज वीकली से अपनी पत्रकारिता के सफ़र की शुरुआत की थी और बाद में उर्दू ब्लिट्ज के एडिटर भी बने। उनके इस सफ़र पर बातें चलती रहेंगी, लेकिन पहले रुख करते हैं उस दौर की तरफ जब उनके लिखे गीत ने हर आशिक के दिल को छू लिया था। फिल्म निकाह से ये बेहद खूबसूरत नगमा आ रहा है।

इन शब्दों में हसन कमाल साहब की यही खूबी थी, वो पेचीदा जज्बातों को भी बेहद आसान लफ्जों में बयां कर देते थे। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म निकाह, जो कि 1982 में हसन कमाल साहब के फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट थी। संगीतकार रवि साहब ने हसन जी को इस फिल्म के गाने लिखने के लिए अप्रोच किया था, और जब ये फिल्म आई तो इसके गानों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। अब आपको सुनवाते हैं एक गजल जो साल 1985 में आई फिल्म एतबार में इन्होंने लिखी, वो आज भी संगीत प्रेमियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आइए सुनते हैं आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की मखमली आवाजों में ये एवरग्रीन गजल।

स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म एतबार से गज़ल। दोस्तों, फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला था हसन कमाल साहब को दो दो गीतों के लिए। फिल्म ने कहा कि हालांकि उस साल वो अवार्ड नहीं जीत पाए, लेकिन जनता का दिल उन्होंने पूरी तरह जीत दिया था। लेकिन कमाल साहब का असली कमाल अभी बाकी था। साल 1984 में आई फिल्म आज की आवाज, जिसमें राज बब्बर और स्मिता पाटिल मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक हसन साहब ने लिखा था और एक ऐसा गाना जो समाज को झकझोर कर रख देता था। इस गाने ने देश की सोई हुई अंतरात्मा को जगाया था और इसी गाने के लिए हसन कमाल साहब को साल 1985 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। आइए आपको सुनवाते हैं इन्हीं का लिखा एक और गीत फिल्म मजदूर से।

दोस्तों, हसन कमाल साहब सिर्फ हुस्न और इश्क के शायर नहीं थे, वो समाज के हालातों पर तीखा प्रहार करना भी जानते थे। उनकी पत्रकारिता का असर उनके गानों में साफ दिखता था। अभी आप सुन रहे थे फिल्म मजदूर से ये गीत। चलिए अब एक और इनका लिखा गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म दहलीज से।

दोस्तों, हसन कमाल साहब की अलमारी सिर्फ फिल्म फेयर से नहीं सजी है, बल्कि उनके अदबी यानी साहित्यिक और पत्रकारिता के योगदान के लिए उन्हें अनगिनत पुरस्कारों से नवाजा गया था। उन्हें 1983, 1987 और 1992 में सुर सिंगार डॉक्टर वी डी अरोड़ा अवार्ड मिला। साल 1986 में प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार आशीर्वाद अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1996 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड दिया गया था। और हाँ, उनकी बेबाक पत्रकारिता के लिए साल 2012 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उन्हें सम्मानित किया। उनकी कलम का जादू सिर्फ बी आर चोपड़ा या रवि साहब के साथ ही नहीं चला, बल्कि उन्होंने शिवहरि, आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे महान संगीतकारों के साथ भी काम किया।

दोस्तों, हसन कमाल साहब ने 80 और 90 के दशक में मजदूर, दहलीज, अवाम, बीवी हो तो ऐसी और बंटवारा जैसी कई फिल्मों में अपने कलम का लोहा मनवाया। वक्त बदला, संगीत का दौर बदला, लेकिन हसन साहब की कलम की धार कम नहीं हुई। साल 2007 में एक फिल्म आई थी अनवर। इस फिल्म में संगीतकार मिथुन ने एक सूफियाना और रूहानी गीत तैयार किया था। इस नए दौर के युवाओं के लिए जब हसन कमाल साहब ने लफ्ज लिखे तो वो गाना उस साल का सबसे बड़ा एंथम बन गया। शिल्पा राव और क्षितिज तारे की आवाज में जावेदा जिंदगी, जिसे हम सब तोसे नैना लागे के नाम से भी जानते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गीतकार उनका आखिरी सबसे बड़ा हिट गाना साबित हुआ। आइए सुनते हैं रूह को सुकून देने वाला ये मुकम्मल नगमा।

मुझे पता है ये गीत आप सभी के दिल को छू रहा होगा और बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन आवाज़ों में इतना खूबसूरत लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। तो दोस्तों, आज का ये सफ़रनामा अब यहीं थमता है, लेकिन उनकी लिखी गज़लें, उनके लिखे गीत हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। एक पत्रकार के रूप में समाज को आईना दिखाना और एक शायर के रूप में दिलों को जोड़ना, ये हुनर सिर्फ हसन कमाल साहब के पास ही था। आज उनके लिखे इनकलाबी और रोमानी गानों के साथ वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, छोड़े जा रही हूं इस आखिरी गीत के साथ। सुनते रहिए हमारे अन्य कार्यक्रम और अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत सुरों का सफरनामा कार्यक्रम से।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव शांति के पक्ष में रहा है और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ मुलाकात की। पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं के बारे में भी चर्चा की। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी बैठक की। G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सुरक्षित, समावेशी और मानव हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि AI शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बच्चों को गलत सूचना, डीप फेक और साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इस बीच G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई हैं। इन घोषणाओं में संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 रेलवे स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन पर आउट हो गई। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज द आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with US President Donald Trump on the sidelines of the G7 summit in Avignon, France. The two leaders reviewed the progress made under the India-US Compact initiative, including cooperation in defense, trade, energy, and people-to-people ties. Both sides reaffirmed their commitment to strengthening the India-US comprehensive global strategic partnership and promoting peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister reiterated his appreciation for President Trump's efforts in ensuring the restoration of peace and stability in West Asia. Mr. Modi also reiterated the importance of ensuring the safety and security of civilians, including seafarers. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measures of AI lies not in the power of machines, but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the session on ensuring a safe, rapid and efficient rollout of AI during the G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said, "Artificial intelligence has the potential to transform every aspect of human life." However, he underlined that the technology must be guided by values, responsible design and effective governance. Highlighting the need to protect children in the digital age, the Prime Minister cautioned that while AI can enhance learning and creativity, it can also expose young users to misinformation, deepfakes and exploitation if proper safeguards are not put in place. The G7 leaders adopted three key declarations aimed at promoting balanced, durable and resilient growth, securing critical mineral supply chains and creating a safer digital space for miners, with several partner countries extending support to the initiatives. During the G7 summit in Avignon, France, the leaders issued a statement on balanced and resilient growth, stressing the need for stable energy markets, secure supply chains and reforms in global economic institutions. They emphasized the importance of restoring safe navigation through the Strait of Hormuz, avoiding arbitrary export restrictions and addressing widening global economic imbalances. The leaders also adopted a declaration focused on creating a safer digital space for miners. India and United Kingdom have announced that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will enter into force on 15th of July this year. Ministry of Commerce and Industries informed that the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will come into effect on the same day. The ministry also noted that the period of exemption under DCC has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers. Union Home Minister Amit Shah has reviewed the National Cyber Crime Helpline 1930 at a high-level meeting in New Delhi and directed the officials to revamp the system. The meeting also reviewed various citizen-centric mechanisms established to provide immediate relief to citizens from cyber crimes, especially cyber financial frauds. Mr. Shah directed to comprehensively modernize and upgrade the helpline system through the adoption of advanced technologies, including artificial intelligence. He said that the upgraded system should facilitate faster complaint registration, intelligent call routing and effective management of citizens' grievances. He directed that the 1930 call centers operating across states and union territories should be further strengthened in terms of technology and infrastructure. Polling for 11 Maharashtra Legislative Council seats from local authorities' constituencies will be held today from 9 a.m. to 4 p.m. with counting of votes scheduled for 22nd of this month. 31 candidates are in the fray for the 11 seats, while 6 constituencies have already been decided unopposed. A total of 7,043 electors comprising members of municipal corporations, municipal councils and Zilla Parishads are eligible to vote. And President Draupadi Murmu will embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. The President's Secretariat said that on the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh. And that is the end of this news bulletin.

यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 1:10 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति। कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर हाजिर हूँ। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे, जी हाँ, ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। तो शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसमें शायद गायक ये कहना चाह रहे हैं कि तुम आज मिले हो। जी, हम तो अधिकतर मिलते रहते हैं, पर ठीक है, इस गीत के जरिए हम आज मिलते हैं।

इस गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं 1970 की क्लासिक हिंदी फिल्म गोपी का एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार भजन। इस गाने में भगवान राम और सीता माता के माध्यम से कलयुग में समय का वर्णन किया गया है और आवाज आप सुनेंगे महेंद्र कपूर की। इसमें संगीत जो पिरोया है वो है कल्याण जी आनंद जी ने। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखा गया ये भजन।

अगला गीत आपके लिए आ रहा है, फिल्म है महबूब की मेहंदी, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत से पिरोया है। आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत जो लिखा है आनंद बख्शी ने।

क्या जुगलबंदी है इस गीत में. जी हाँ, आशा भोसले, माफ कीजिएगा, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत. फिल्म शान से आनंद बख्शी के लिखे बोल और आरडी बर्मन का दिया संगीत. अब अगले दौर में चलते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म शोर से ये गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और अन्य आवाज़ों में.

अब आपको ऐसा गीत सुनवा रहे हैं जिसमें आप बयां करेंगे किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कि आप हमारे दिल के पास रहते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए हैं, फिल्म ब्लैकमेल से ये अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ है।

अब गीत सुनहरे में समय है आखिरी गीत का, और मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले इस गीत के ज़रिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ जो आपकी दिल की बातें हैं। जी हाँ, आप यही कहना चाहते हैं ना कि हम अभी ना जाएं छोड़कर।

0: अब समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में वीवा टेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास दिए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल और DR कांगो के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। पुर्तगाल के लिए जोआओ नेवेस ने 6ठे मिनट में गोल किया, जबकि DR कांगो ने योआने विस्सा ने पहले हाफ के अंतिम मिनट में बराबरी का गोल दागा।

0: and equaling Germany's Miroslav Klose as a joint highest scorer. In another Group 1 fixture, Norway defeated Iraq 4-1 in their opening match. And in the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Netherlands by 95 runs in a Group A match at Headingley in Leeds. Batting first, India posted a formidable 209 for 5 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। मध्य रात्रि के 2:10 मैं हूं आपके साथ कीर्ति। कार्यक्रम गीत बहार लेकर हाजिर हूं और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। तो बिल्कुल हर बार की तरह आपके लिए गीतों की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली है मैंने और बहुत खूबसूरत गीत आपके दिल तक पहुँचेंगे रेडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो क्रोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवाटेक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड क्रोएशिया से 3-2 से आगे है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के में पुर्तगाल और DR कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। इस मैच में मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलकर भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। चीन के गुयांग में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप में भारत के निखिल, दीपक और स्नेह ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला T20 विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has reached Paris after successfully concluding his highly significant two-day visit to Evian, France, where he attended various sessions of the G7 summit and held bilateral meetings with several world leaders on the sidelines. In a social media post, Mr. Modi described his

0: दोस्तों इसी के साथ फिल्म गीतों का जो कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप म्यूजिक आप सुन रहे थे यही समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। फिलहाल रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया और कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में

ध्यान आता है मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह जी का। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में दिल को छू लेने वाली ये दो प्यारी सी गजलें।

वाकई मैं श्रोता हूँ, जगजीत सिंह साहब का गज़ल गायकी में तो कोई जवाब ही नहीं था, ना ही गज़ल गायकी में उनका कोई सानी था। शायद यही वजह है कि उन्हें गज़लों का बेताज बादशाह कहा जाता था। और वाकई में आज भी गज़लों के मामले में उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। ऐसे ही एक गायक थे गज़ल गायकी में, जिन्होंने गज़ल गायकी में अपना एक अलग मुकाम बनाया था और गज़लों की दुनिया में उन्होंने भी अपना नाम सदा के लिए अमर कर लिया था, और वो थे हम सब के प्यारे पंकज उधास साहब। आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये दो मशहूर गज़लें।

वाकई में श्रोता हूँ, पंकज उदास साहब की गज़ल गायकी में एक अलग ही अदा थी। आइए सुनते हैं अगली गज़ल।

श्रोताओं, ये गज़ल अभी आपने सुनी आवाज़ के जादूगर हरिहरन की मधुर आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगली गज़ल चित्रा सिंह की मधुर आवाज़ में। श्रोताओं, चित्रा सिंह ने भी गज़ल गायकी में अपना एक अलग मुकाम बनाया था, एक अलग पहचान बनाई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मशहूर गज़ल गायक जगजीत सिंह जी की पत्नी थी। आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये दो मधुर गज़लें।

0: इसी के साथ श्रोताओं, आज का गज़लों और गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

देशी देशी गोपियां रे जावे वेण नंबाजे कान

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन। 5:20 पर समय होगा देशभक्ति गीत का और 5:30 पर आप सुन सकेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चिंतन। 6:45 पर आप सुन पाएंगे रामचरितमानस बालकांड का भाग 90 और 6:55 पर आप सुन सकते हैं संस्कृत में समाचार। 7 बजे का समय होगा हिंदी समाचारों का। सात बजकर 5 मिनट पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं और 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम संगीतिका का। 7:30 पर आप गीतों भरी कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे और 8 बजे का समय होगा हिंदी समाचारों का। 8:15 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी समाचार मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं। 8:45 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा का और 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज पेरिस में वीवा टेक शिखर सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में

0: भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सीलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि पहले दिन राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। वे कल मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। बाद में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करेंगी। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। वहीं ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from members of the Indian community gathered at his hotel. Enthusiastic supporters greeted the Prime Minister with cheers and expressions of support as he began his engagements in Paris. In Paris, PM Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. India will have the largest national pavilion at this edition of VivaTech Summit, a fitting symbol of the enormous potential for partnership between the Indian and European innovation ecosystem. The Prime Minister is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. Prime Minister Narendra Modi has called for a safe, inclusive and human-centric approach to artificial intelligence, stressing that the true measure of AI lies not in power of machines, but in how effectively it empowers ordinary people. Addressing the

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा।

इसमें हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी सांस लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। सुबह के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।